अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे थे आराधना कार्यक्रम में नॉनस्टॉप भजन, और अब इस कार्यक्रम का ये समापन भजन, और फिर सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें रविंद्र सिंह आपके साथ होंगे। सुबह 7:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप अपने शहर से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही गीत संगीत तो होगा ही। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी सोनू भट्ट और सुबह 8:00 एक बार फिर से रविंद्र सिंह आपके साथ होंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। सुबह 9:00 का समय रहेगा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने में सोनू भट्ट के साथ। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर हिमानी दत्ता के साथ। सुबह 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, जिसमें बॉलीवुड जगत की सभी जानकारियां आप सुनेंगे और साथ ही फिल्मी गीत होंगे। इस कार्यक्रम में प्रियंका मामगेन आपके साथ रहेंगी। दोपहर 12:05 पर

वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल का समय रहेगा हिमानी दत्ता के साथ। दोपहर 1:05 पर प्रियंका मामगेन आपके साथ रहेंगी रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम में, जिसमें आज विषय रहेगा द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। दोपहर 2:02 का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का, जिसमें स्वाति गुप्ता आपके साथ रहेंगी। दोपहर 3:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सृजन राजपूत के साथ, जिसमें आज विषय रहेगा स्किन केयर इन समर्स। एक्सपर्ट होंगी डॉक्टर पूनम पुरी। शाम 4:05 का समय रहेगा कार्यक्रम अल्फा जैन का, जिसमें स्वाति गुप्ता और ऋचा वर्मा आपके साथ होंगी। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिटी लाइट से, जिसमें सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगी। दिल्ली शहर से संबंधित सभी जानकारियां आप इसमें सुन पाएंगे।

0: शाम 6:05 का समय रहेगा कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स का, जिसमें नीरज चतुर्वेदी आपके साथ रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्रोता जो हैं संदेश भेजकर अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट यूज बेस्ड प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी हरप्रीत कौर। रात्रि 8 का समय रहेगा म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का, जिसमें नीरजा चतुर्वेदी आपके साथ होंगी। रात्रि 9 आपकी याद आती रही रेखा चौधरी के साथ। रात्रि 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक रेनबो क्लासिक। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी हरप्रीत कौर। और रात्रि 11:05 पर गजलों का कार्यक्रम होगा रंगे महफिल, जिसमें रेखा चौधरी आपके साथ रहेंगे। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9:00।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल

भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक S कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, एफएम रेनबो के सभी प्यारे श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह और आज सुबह सुबह हम छेड़ेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे बेहद काम की हो जाती हैं और यहां से हमारा सफर होगा शुरू। और चूंकि आज का दौर है आधुनिक दौर है भैया, तो एआई का जमाना है, तो एआई से आज इंसान की तुलना हो जाए तो कैसा कि हम भाई कहाँ ठहरते हैं और एआई कहाँ ठहरता है और एआई हमसे कहाँ पर मात खाता है या हम एआई से कहाँ पीछे रहते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं या ये सोचते हैं कि भाई क्या कुछ खास है यहाँ पर जो हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। भाई साहब, साइंस का विषय है लेकिन भावनाओं को व्यक्त करते हुए बोलूँ तो दिमाग बनाम दिल की बात ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तो अलग अलग बातें होती हैं, यानी जितने मुँह उतनी बातें, ये ठीक वैसी हैं जैसे कंप्यूटर के आने पर हुआ करती थी। अब आप ही बताओ भाई, किसकी बात माने, लोगों की या अपने दिलों की। चलो आज इस विषय पर करते हैं बात, दिल की बात माने या दिमाग की। लेकिन विषय कोई भी हो, समझना तो पड़ता ही है। जैसे ये विषय ना अंग्रेजी सीखने का, बड़ा पीछे पड़ गया भाई, सीखिए

तो सीखा हमने भाई, सीखा और बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं चलते चलते उसका इस्तेमाल करना या फिर क्या चीजें। और कहते हैं किसी को जानना हो तो हमें उसे जानने के लिए उसके करीब तो जाना ही पड़ता है। है कभी ऐसा हुआ है आप? अच्छा एक बात और ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप संगणक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको चलाता है आप उसको चलाते हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोला है, संगणक क्या होता है? हम बात करें कंप्यूटर की। जैसे टीच करे तो टीचर, स्पीक करे तो स्पीकर, ठीक वैसे ही जो कंप्यूट करे यानी गणना करे वो कंप्यूटर। और कंप्यूटर के युग से एआई के युग तक आने में भैया 2 दशक से ज्यादा का समय लगा। लेकिन जो इसका इस्तेमाल नहीं जानते थे वो शॉक्ड इस बात से हैं कि हमारा क्या होगा जब वो आया था। और जो इसका इस्तेमाल करना जान गए वो इस बात से शॉक्ड हैं कि अरे भाई ये तो गजब की चीज है। वो कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज को जानोगे नहीं तब तक उसका इस्तेमाल करना कैसे सीखोगे, तब तक तो मन में परसेप्शन ही रहेगा बस। ये जबरदस्त है, कमाल का है। और कमाल से धमाल तक का सफर बहुत आनंदित करता है। और जब चीजें हमें समझ में आने लगती है ना तो फिर बोरियत नहीं, बवाल होता है बवाल, क्योंकि हमें हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो अगर प्यारा सा गीत बन जाए ना, बज जाए, दिल के तार झंझना जाए तो सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो सुहाना हो जाता है।

हाँ जी हाँ, ये गीतों का सफर चलता रहेगा, बातचीत हमारी आपकी होती रही, क्योंकि कार्यक्रम है सुप्रभात और मैं हूँ आपका दोस्त रविंद्र सिंह, लेकर चल रहा हूँ आपको तालमेल के साथ कि आधुनिक युग में हमें किस तरह से किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। क्या हमें लगने लगता है कि अरे वाह, इससे बेहतर तो कोई दोस्त है नहीं है, काश ये पहले मिल जाते तो अच्छा होता, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ता भाई साहब, सुबह सुबह प्रोग्राम सुनना पड़ता है, और आज का दिन कल से बेहतर बनाने का मौका भी होता है। सपनों को सच करने के लिए तो भैया जागना पड़ता है और हर सुबह एक नई शुरुआत के लिए भागना पड़ता है और जानना पड़ता है क्या नया आया है ना, और उसी नए के साथ हम फिर एक रिश्ता जोड़ देते हैं। इसीलिए तो बात की हमने यही कि अगर बात मोटिवेशन की हो तो उसके साथ साथ आधुनिक युग में वो चीजें जो हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, क्या उससे जुड़ने के लिए भी हमें कोई मोटिवेशन लेना पड़ता है, समझना होता है। सोचिए, किताबें, कागज, कंप्यूटर और अब कमाल का AI। अब ये AI जो है ना, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये हमारा काम तो कर सकती है, लेकिन कहाँ पे डिफरेंट हो जाती है? क्या ये हमारी जगह ले सकती है? क्या हमारी भावनाओं को, हमारे एहसासों को खुद समझ कर हमें अपनेपन का एहसास करा सकती है? अब आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल नहीं, तो फिर जो लोग डरते हैं कि ये कुछ खा जाएगी हमारी नौकरी, वो क्यों सोचते हैं? पहले इसका इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी सीखिए तो इसके बाद पता चलता है यह भला क्या चीज है। ऐसे ही इंसान होते हैं, हम उन्हें समझते नहीं हैं। किसी इंसान का किसी के द्वारा उसके लिए कही गई बात, उस पर परसेप्शन बनाते हैं और फिर उससे दूरी बना लेते हैं। अरे कम से कम उस इंसान को समझने की कोशिश तो कीजिए। ऐसी जो चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं, उनको समझने की कोशिश तो कीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। वरना तो विचारों के दंगल में हम उलझते रहते हैं, झुलसते रहते हैं और यूं ही सुलगते रहते हैं।

तो इस दंगल से अगर जीत हासिल करनी है तो बस सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, और जो नया मिले उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा।

तो भैया इस दंगल में क्या उलझे रहना, और विचारों का दंगल जब होता है तो हमें पता क्या करना चाहिए, हमें एकदम शांत रहना चाहिए, जो उथल पुथल मनमस्तिष्क में है उसको चलते रहने देना चाहिए। देखिए आप एक दो दिन में या शाम तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। वक्त लगता है क्योंकि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी में संघर्ष सब कुछ होता है क्योंकि वो हमें तराशता है। लेकिन जब जिंदगी कई सवाल खड़े करती है तो उनके जवाब हमें जब नहीं मिलते तो हम बड़ा परेशान होते हैं, और उसके लिए जब हम किसी दोस्त से, किसी जान पहचान की व्यक्ति से वो सवाल करते हैं तो हमारे अंदर की किताब खुल जाती है कि हम कमजोर कहां पर हैं। और कभी कभी वो कमजोरी हमारे लिए बड़ी घातक हो जाती है, परेशानी का सबब बन जाती है क्योंकि सामने वाला जान जाता। अब एक ऐसा दौर है जहां मशीन आपके सारे सवालों का जवाब देती है, जहां वो सवाल भी आप उससे पूछ सकते हैं जो आप किसी से नहीं पूछना चाहते। आपको लगता है कि वो बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, जो सिर्फ आपसे जुड़ा है, आपके एहसासों से जुड़ा है, आपके जज्बातों से जुड़ा, और जिसे आप नहीं चाहते उजागर करना, फिर भी उस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो मिलता है आज के युग में, है ना। सब कुछ एक चुटकी में, एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जब घर के कोने से रिश्ता बनता है, किसी रंग से रिश्ता बनता है, जिंदगी के किसी पल से रिश्ता बनता है, तो जो चीजें हमारे साथ जिंदगी में जुड़ती जाती हैं उनके सांस भी हमारे जज्बातों का एक रिश्ता बन जाता है। और ये जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उससे भी हमारा धीरे धीरे करके एक रिश्ता बन जाएगा जब हम इसको ठीक से समझ जाएंगे। वैसे संघर्ष करते समय जब भी कोई ऐसा पड़ाव हो जिसमें हमको लगे कि हाँ अब हम अटक रहे हैं, तो तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली, आपका एम क्या था, क्या है, उस पर आपको टिके रहना है। दूसरा है कि असंभव कुछ भी नहीं इस दुनिया में। और तीसरा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपका दिल जिद्दी होगा और कुछ पाने के लिए बेताब होगा। क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा

0: डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पूरा करना चाहते हैं। तो याद रखिए कि जितना बड़ा सपना है उतनी बड़ी समस्याएं हैं, और उतनी ही बड़ी समस्याएं हैं तो उतनी ही बड़ी सफलता भी मिलेगी। इसलिए जीना जो सिखा दे वही तो सच्चा दोस्त है, और वो जीना जो सिखाता है वो है ठोकर। किसी गीत के अल्फाज सिखा जाते हैं, कोई शख्स हमें कुछ सिखा देता है, कोई लम्हा कुछ बता देता है, और अब तो हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने का नाम ही जिंदगी है।

और कई बार ये भी गीत बने भैया गोल गोल चांद सा रुपया। तो ये पैसा ही है ना जो सब कुछ देता है, यानी संसाधनों का इस्तेमाल अगर हम कर सकते हैं इस पैसे के जरिए, और जिंदगी में जीने के लिए हमें तो थोड़ा कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं, और जुटाने के लिए हमें चीज़ों को समझना पड़ता है कि हवा किस तरफ बह रही है, और तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब अगर सीखना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, जो भी नई चीज़ है। इसीलिए हमने आज यही विषय रखा, AI वर्सेस हम, यानी एक इंसान। तो आप एक बात और याद रखिए कि एक इंसान के जीवन में दो चीजें उसे पीछे धकेलती हैं, एक है डर और दूसरा है मिथक। एक डर ने जन्म लिया और इंसान के मन में कि हमारी ये नौकरियां खा जाएगा। तो सोचकर देखो जरा, कंप्यूटर आया तो टाइपराइटर वाले डर गए, लेकिन आज सबके पास लैपटॉप है, बल्कि टाइपराइटर से ज्यादा तो आसानी है से काम कंप्यूटर कर देता है। और जब पता लगा कि हमारे लिए ये कितना फायदेमंद है, तो हम सब इसके फैन

तो भाई साहब एक बात याद रखिए, चीज़ें नई नई आती रहेंगी। जैसे एक वक्त था जब चूल्हा जलता था, फिर अंगीठी, फिर स्टोव, फिर हीटर, फिर आज हम कहाँ पर है, अंदाज़ा लगा लिया। यानी वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं और हमारे लिए ये सुविधाएं होती हैं, और हम धीरे धीरे करके जब उसके आदि हो जाते हैं तो उसके फ़ैन भी हो जाते हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में कब एकदम क्लोज आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, साधन कभी भी साधना का स्थान नहीं ले सकता। ये साधन है और इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल जीवन को सुगम बना देता है, यानी और आसान कर देता है, बोझिल नहीं बनाता। इसलिए घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी से घबराहट हो तो उसके करीब जाने की ज़रूरत होती है, जानना होता है आखिर है कौन, वरना दिल तो यूं ही धड़कता रहेगा, धक धक धक धक करता रहेगा। इसका काम धड़कना, इसकी धड़कन से क्या डरना।

तो आपसे दिल धड़कना बंद हो जाना चाहिए भाई, मतलब दिल नहीं बंद होना चाहिए, ये जो धक धक का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी से घबराहट हो रही है आपको, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और जब कोई चीज़, कोई बात, कोई व्यक्ति समझ में आ जाता है ना, तो बस सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए, है ना। और देखिए ना, अब दौर ऐसा है कि हम आजकल अपनी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या किसी के द्वारा दिया गया कोई तोहफा हो, है ना, कितना आराम से संभाल के रखते हैं। लेकिन भाई साहब, एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे व्यक्ति को भी हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको तीन चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर दी हैं, और वो है साथ, समय और समर्पण, है ना। तो जितना आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सहेज कर रखते हैं, उतना ही ऐसे इंसान को भी सहेज कर समझ कर रखिए। यही फर्क है हमें और एआई में। एआई डेटा समझती है, लेकिन इंसान दर्द और मोहब्बत समझता है। एआई कितना भी डेटा इकट्ठा क्यों ना कर ले, इंसानी दिमाग की जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि एक इंसान के पास होता है कुछ करने का जुनून, जो एआई के पास नहीं होता। वो तो बस हमारे असिस्टेंट की तरह काम करता है, और असिस्टेंट मालिक एकदम से नहीं बनता। इसलिए इस्तेमाल कीजिए, समझिए, जब भी कोई नई चीज़ आए और उसे अपने उससे एक रिश्ता बनाइए, जीवन बहुत सुखद हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप मशीनी चीज़ों से रिश्ता बनाते हैं, तो इंसानों से जो रिश्ते हैं उससे दूर ना हो जाना। और यही कुछ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमें दूर कर रही हैं हमारे अपनों से। उसके लिए भी वक्त निकालिए और इनके लिए भी वक्त निकालिए, तभी फील गुड करेंगे आप। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि ये सोनू भट्ट लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आपके लिए अब से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने

रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल वेंसडे मॉर्निंग. स्वागत आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के मॉर्निंग मैगजीन शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में. मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट. एक लंबे समय बाद फिर से हम साथ में हैं एंटरटेनमेंट के इस खजाने

के साथ इस स्पेशल से आकाशवाणी के साथ। दिल्ली में गर्मी का मौसम जो है वो जोर पकड़ने लगा है। सुबह के लगभग 7:09 होने को आए हैं, लेकिन बाहर जो तापमान है वो अभी से 29 से 30 डिग्री के बीच में है। मैक्सिमम तो आपको पता है 38 डिग्री तक जाने की संभावना है, यानी कि दिन चढ़ते चढ़ते गर्मी और भी तेज होने लगेगी। तो बाहर निकलिएगा जब तो अपने साथ अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी रखना ज़रूर रखिएगा, और बिल्कुल भूलिएगा मत इस चीज़ को। अपने को कवर करने के लिए आप छतरी ले सकते हैं धूप से कवर करने के लिए, या स्कार्फ जो है लड़कियां आप देखते ही हैं बहुत ही रंग बिरंगे और बहुत खूबसूरत से स्कार्फ दिखाई देते हैं उनके चेहरों पर और सर ढके हुए, तो वो भी आप कैरी कीजिए ज़रूर। और मौसम के जो उतार चढ़ाव है ना ये तो लगे ही रहेंगे, लेकिन तैयारी अगर आप पूरी रखेंगे तो अपनी रफ्तार को कम नहीं होने देंगे। और रफ्तार वैसे भी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी की हो या फिर रेनबो के एंटरटेनमेंट की, जो आप तक पहुँच रहा है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के जरिए दिल्ली एनसीआर में, भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए, न्यूज ऑन एआईआर के जरिए भी आप हमें सुन रहे हैं। हमारा ऐप है मोबाइल ऐप, और साथ ही साथ प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं दिल से दिल तक। बने रहिए हमारे साथ, यूं ही जुड़े रहिए, बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में।

0: रेनबो पर, और इस समय जो घड़ी की सुइयां है वो बस बता रही है कि अब समय हो चला है लगभग 7:15। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और मैं बनी हुई हूँ आपके साथ, सोनू भट्ट। बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह जुड़े रहिए दिल से दिल तक।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज के अंक में हम जानेंगे ऑल इंडिया रेडियो का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में समावेश। भारतीय प्रसारण व्यवस्था को मजबूत और व्यापक बनाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1941 को ऑल इंडिया रेडियो को सूचना एवं प्रसारण विभाग के अंतर्गत लाया गया। इस कदम के साथ प्रसारण पर सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में रेडियो को एक अधिक प्रभावी और सशक्त माध्यम बनाना आवश्यक हो गया था। इस पुनर्गठन के बाद रेडियो न केवल सूचना का प्रमुख स्रोत बना बल्कि देश तक सटीक और समयबद्ध जानकारी पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, जहां जहां आप जाएंगे हमें ही पाएंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो, दैट इज गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट, और अब बात करते हैं हम कि 13 मई जो है आज का दिन बेहद खूबसूरत लेकिन इतिहास में क्या मायने रखता था और क्या कुछ कहता है आज का इतिहास जब हम पलट कर देखते हैं पीछे बीते गए सालों की ओर। 13 मई भारत के इतिहास में एक बेहद ही खास मकाम रखता है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये दिन जो है एक मील का पत्थर है। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 को ही आयोजित किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का गठन किया गया, लेकिन इसका जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। और इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया, लेकिन इसका भी जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को ही आयोजित किया गया था। तो आज का दिन खास है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में। और आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1962 को अपना कार्यकाल संभाला था, जो कि 13 मई 1967 तक इनका रहा था। और 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। एक छोटे से शहर में जन्मे आंध्र प्रदेश के डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित विद्वान रहे, दार्शनिक और राजनेता थे, जिनका प्रभाव आज भी बहुत ही गहरा है और हर पीढ़ी पर है और बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इनको याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप

बताती हूँ मैं आपको एक बहुत ही ख़ास इंसान के बारे में, जिनका नाम है रोनाल्ड रॉस। और ये रहे एक मेडिकल ऑफिसर और नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ वो आज ही के दिन हुआ, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और इनकी जो उपलब्धि रही वो ये रही कि इन्होंने मलेरिया के जो परजीवी थे उसके जीवन चक्र को इन्होंने खोजा और बताया कि किस तरह से ये जो मॉस्किटो बाइट है यानी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और बहुत ही ख़ास और अहम भूमिका निभाई इसके जीवन चक्र को समझने में, समझाने में और इसके इलाज को ढूंढने में अपनी भूमिका निभाई। इसीलिए इन्हें ये अवार्ड भी दिया गया और इसके लिए हम इनके हमेशा ही ऋणी भी रहेंगे। और आगे चलते हैं, इसी तरह से बात करते हैं हम वीर भान भाटिया की। और ये भी एक बहुत ही जाने माने भारतीय चिकित्सक रहे और इनको, इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो इस तरह बहुत से लोग रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने अच्छे अच्छे काम किए और इतना अच्छा मकाम हासिल किया और कुछ ना कुछ अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के चले गए, ताकि हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते भी रहें। और उन्होंने हमें बहुत कुछ बदले में दिया भी। वो भले ही आज इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो काम है वो बोलता है और उनका नाम हमेशा याद रहता है हमें। जैसे कि हेमलता गुप्ता की हम बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर हेमलता गुप्ता, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर भी रही और बाद में डायरेक्टर भी बनी। और इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे काम किए लोगों की सेवा के लिए और एक चिकित्सक के रूप में अपना मकाम हासिल किया। और इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं इला रमेश भट्ट की, जिन्हें 13 मई यानी कि आज के दिन साल 2010 में जापान के सबसे प्रतिष्ठित निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वरोजगार महिला संघ की संस्थापक रही। तो इसी तरह से इतिहास में इन लोगों का नाम अमर हो गया इनके कामों के जरिए, और कुछ घटनाएं भी जुड़ गई जिन्होंने इतिहास को आज कहने लायक बनाया और आप तक पहुंचने लायक। तो चलिए, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन द वे, इसे भी पहुंचाती हूँ मैं आप तक, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसी और खास हस्ती के विषय में। सुनते रहिए आप इस तरह से। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: म्यूजिकली और आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और अब हम बात करने जा रहे हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब की। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नारा जो कि उस लड़ाई की जान हुआ करता था, और वो जहाँ भी नारा बुलंद होता था जोश का तूफान बिल्कुल भर देता था, और वो था इंकलाब जिंदाबाद। और ये नारा देने वाले थे यही साहब मौलाना हसरत मोहानी, जिनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1875 में। आज इनके बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज इनकी पुण्यतिथि है। 13 मई 1951 में कानपुर में इन्होंने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन अपने पीछे अपनी एक लेगेसी छोड़ गए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के सच्चे सिपाही होने के साथ साथ एक बहुत ही मशहूर शायर, पत्रकार और राजनीतिज्ञ रहे। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के मोहान गांव में पैदा हुए थे, इसीलिए मौलाना हजरत मोहानी के नाम से मशहूर हुए। और मोहानी जिनका उपनाम था उससे ये और भी ज़्यादा फेमस हुए, और कॉलेज के ज़माने से ही ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। आज़ाद जैसे कॉलेज से निकले उसके बाद इन्होंने एक उर्दू मैगज़ीन उर्दू मोहल्ला निकालनी शुरू की, जिसमें वो जंग आज़ादी की हिमायत में जितने भी लेख हुआ करते थे वो लिखा करते थे। 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हुए, और उसके सूरत के सत्र में जो कि 1907 में हुआ था एक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित भी रहे। कांग्रेस के अधिवेशनों और सत्रों की रिपोर्ट और समाचार अपनी मैगजीन उर्दू मोहल्ला में ये प्रकाशित करते रहते थे। उन्नतशील गज़लों का प्रवर्तक इन्हें कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हजरत साहब ने अपना सारा जीवन जो है वो कविता करने और स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रयत्न करने और उसी दिशा में काम करने और लोगों के हित में काम करने में गुजार दिया। 13 मई 1951 जैसे कि मैंने आपको बताया कानपुर में इन्होंने आखिरी सांस ली, और साथ ही साथ इस दुनिया को विदा देते हुए अपने पीछे अपनी एक बहुत ही खूबसूरत लेगेसी, जिसमें उनकी शायरी, उनका राजनीतिक ज्ञान और साथ ही साथ एक स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी शामिल है। उन्हें याद करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुनते रहिए आप इसी तरह से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है साथ ही साथ ये एंटरटेनमेंट भी, बहुत सारे सॉन्ग्स भी आप तक पहुंच रहे हैं, आपके बहुत सारे मैसेजेस भी गुड मॉर्निंग के मुझ तक पहुंच रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनसे हमारा बचपन जो है वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी की, जिन्हें हम सभी आर के नारायण के नाम से जानते हैं। जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1906 को, आज इनकी पुण्यतिथि है 13 मई 2001 को इन्होंने इस दुनिया से विदा ली। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार रहे और अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में जो 3 सबसे बड़े नाम गिने जाते हैं, उन महान उपन्यासकारों में से एक नाम इनका है। आर के नारायण भारत के महान साहित्यकार रहे, जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय जीवन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। शुरुआती दौर में वो कुछ समय के लिए शिक्षक रहे, फिर वो पूरी तरह से लेखन में आ गए। उनका पहला उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त 1935 में प्रकाशित हुआ था, स्वामी एंड हिट्स फ्रेंड्स। और इस पुस्तक के बाद नारायण ने जो लगभग सभी उनकी कृतियां थी, उनकी जो पृष्ठभूमि थी, वो दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर रहा जिसका नाम था मालगुडी, जिसका हम सभी याद करते हैं मालगुडी डेज की वजह से। नारायण आमतौर पर मानवीय संबंधों में जो खासियत हुआ करती है और जो भारत के रोज़मर्रा के जीवन की जितनी भी विडंबनाएं हैं, जिन्हें हम आयरनीज कहते हैं, उन सभी का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण करते थे। आधुनिक शहरी जीवन भी दिखाते थे, पुरानी परंपराएं भी दिखाते थे, उनके बीच के टकराव को भी दिखाते थे कि किस तरह से एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। उनकी जो लेखन शैली थी बहुत ही शालीन थी, जिसमें हास्य भी था, लालित्य भी था, बहुत ही सहजता थी, सरलता थी, इन सभी को शामिल किए हुए जो वो लिखते थे तो वो बहुत ही अनोखा लेखन हो जाता था। द इंग्लिश टीचर 1945 में जो उन्होंने लिखी, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुडी, जैसी बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी और कई पुरस्कारों के विजेता भी ये रहे। उन्हें भारत सरकार ने 1964 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया, और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी रचना द गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और ये वही फिल्म, इनका जो उपन्यास है इस पर फिल्म बनी आगे चलकर 1965 में गाइड, जो कि हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही कल्ट क्लासिक, एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा माना जाता है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए। आर के नारायण ने जितना भी लेखन जो हमें सौंपा है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी धरोहर है, और इनको आज हम याद कर रहे हैं इनकी पुण्यतिथि पर। इसी तरह से ये लोग जो चले गए अपने पीछे, अपना इतना साहित्य का संसार छोड़,

गए, अपनी खास बातें, अपने खास लेखन को छोड़ गए, हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो ज़रूर इनके जो रचनाएं हैं उन्हें पढ़िए आप और समझिए जीवन के बारे में।

यार, दिल को बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों से आप खुश कर सकते हैं। कोई अच्छी सी बात कह के, कोई तारीफ करके, कोई एक और फैसिलिटी अवेल करवा के दिल बहुत जल्दी खुश हो जाता है। और इसी तरह से कुछ दिल्ली मेट्रो भी करने जा रहे हैं। DMRC ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर एक रुपए ऑन द कार्ड जो है, ऑन द गो कार्ड वो शुरू किया है। और इस कार्ड की मदद से आप देश भर में बिना किसी लाइन और रोक टोक के किसी भी मेट्रो में, बस में सफर कर सकते हैं। DMRC का एक नया रुपए ऑन द गो कार्ड जो है, वो जो पहले वाला वन दिल्ली वन राइड कार्ड था ना, उससे बहुत ही ज्यादा एडवांस कार्ड है। जहां पे वो जो कार्ड था सिर्फ दिल्ली NCR में ही आपको परिवहन सेवाओं तक सीमित किया हुआ था कि आप एक कार्ड से मेट्रो में, दिल्ली NCR में और साथ ही साथ बसेस में सफर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कार्ड है ना, इसकी मदद से आप पूरे देश भर में किसी भी मेट्रो में, किसी भी बस में सफर कर सकते हैं। पूरे किसी भी परिवहन जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर सफर कर सकते हैं। वन कार्ड, देखिए क्या बात है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो टेक्निक है उस पर आधारित है ये, और इसका इस्तेमाल पूरे भारत में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेट्रो, बसेस, टोल पार्किंग सभी के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक कार्ड और सफर पूरे के पूरे देश का। इस कार्ड की वजह से क्या होगा, बार बार टिकट लेने में, लाइन में लगने में, रोज़ रोज़ की परेशानियां जो हमारे सामने आती हैं, और कुछ हमारे जो समय है थोड़ा सा बर्बाद होता है, या फिर हम कहते हैं कि हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता है, लेट हो जाती है, तो ये इस तरह की सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। रिचार्ज करना भी बहुत आसान होगा इसे। आप इसे DMRC के ऐप से या फिर एयरटेल ऐप के माध्यम से अपने डिजिटल रूप में रिचार्ज कर सकते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की तकनीक से लेस ये कार्ड जो है वो अगले 10 दिन में सभी मेट्रो स्टेशंस पर उपलब्ध होगा, ऐसा कहना है DMRC का। और इससे जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो इस तरह एक कार्ड जो होगा हमारे बहुत से समय की बचत कर लेगा, और हमारा समय वहाँ वेस्ट नहीं होगा। अब आपको सोचना ये है कि आपको अपना समय कहाँ कहाँ बचाना है। एक आइडिया मैंने आपको दिया, एक आइडिया ये गाना आपको दे रहा है। इसके अलावा समय का सदुपयोग करें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और अब हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब की, जो कि भारत के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक कार्यभार संभालते रहे। 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके में जन्मे अहमद साहब ने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से भारतीय राजनीति पर एक अमित छाप छोड़ी थी। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी से। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के अंतर्गत जो हो रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया। वो 1952 में राज्यसभा और बाद में 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने खाद्य एवं कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे विभागों में भी कार्यभार संभाला था। 1974 में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उनके कार्यकाल में संविधान को बनाए रखने के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी वो बखूबी देखी जा सकती है। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बहुत ही गहरी रुचि थी और अपने शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों से वो जुड़े हुए थे, अनेक संस्थानों से जुड़े हुए थे। उन्हें खेलों का भी बहुत शौक था और भारतीय ओलंपिक संघ से भी वे जुड़े रहे। 11 फरवरी 1977 को अपने पद पर आसीन रहते हुए उनका निधन हुआ और पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले भारतीय ये राष्ट्रपति वही रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और आज उनकी जो जयंती है उस पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनकी ये जो राजनीतिक लेगेसी है इसको याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। सुनते रहिए आप इस तरह से आकाशवाणी दिल्ली।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

ब्यूटिफुल सॉन्ग चांदनिया तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग देने। बहुत ही प्यारा से गाना, बहुत ही डीप मीनिंग के साथ है, तो आराम से आप सोचते रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक पर, यानी कि लगभग एक घंटे बाद आपकी मेरी फिर से मुलाकात होगी 9 से 10 के बीच में, दिल के तराने, गाने नए पुराने में। तब तक गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे हिस्से में आपको लेके जाने वाले हैं रविंद्र, जो कि आ गए हैं स्टूडियो में, तो मैं चलती हूँ इनके साथ। आप इंजॉय कीजिए ये सेकेंड हाफ ऑफ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरी आपकी मुलाकात रेट्रो म्यूजिक को समेटे हुए प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने में 9 से 10।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: भाई टेंशन को दूर करो, हमारे साथ जुड़ जाओ 102.6 एफएम रेनबो पर। रविंद्र आपका दोस्त आपके साथ हाजिर है, क्योंकि सोनू भट्ट ने बहुत बढ़िया बढ़िया से समाज बांधा है और बेहतरीन जानकारियों के साथ बेहतरीन से गीत आपको सुनाए हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि भाई आगे एक कदम कैसे बढ़ाया जाए, तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी हालचाल लेते हुए आपके बढ़ते हैं एक कदम आगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ, मतलब कार्यक्रम का नाम है, और हम तो आपको सुबह सुप्रभात कह ही चुके हैं, अब बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

हाँ तो आप मजे में बने रहिए, हम भी तो यही चाहते हैं। बिंदास रहिए, आप जहाँ भी सफर में जा रहे हैं, अपने वाहन में सवार हैं, और अगर अपने घर के किसी कोने में भी बैठे हैं, या बस मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मौसम का हाल हम आपको बता देते हैं। अधिकतम तापमान रहने वाला है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने वाला है 27 डिग्री सेल्सियस। और मौसम जिस तरह से बदलाव ले रहा है ना भाई साहब, थोड़ा सा अपना ध्यान आपको रखना है, वरना आप भी लोगों से पूछते रहोगे या लोग आपसे पूछेंगे केम छो केम छो जो है ना, हम लोग को करते रहना चाहिए, एक दूसरे का हाल लेते रहना चाहिए। दिल से दिल की बातें होती हैं तो बस करार मिलता है हमको, है ना। और यूं ही सफर जारी रहेगा। मौसम का हाल आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे पास, जुड़े रहिए। ट्रैफिक का हाल भी बताते हैं कुछ ही देर में भाई साहब, है ना। तब तक मन को ज़रा समझाइए, और ये गीत आपके लिए है, के और चित्रा की आवाज़ में।

जी द्वारे द्वारे, और यूं ही चलते रहिए द्वारे द्वारे। गीत भी बहुत पसंद आया था मुझे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, है ना। और वो गीत आज भी हमारे दिल में बसा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं हम, चूंकि बात कर रहे हैं सफ़र की, अभी हमने बात की मौसम की, और मौसम का हाल बताने के बाद हम आपका हाल भी लेते ही रहते हैं। तो अब बता देते हैं कि भाई ट्रैफिक क्या कहता है। अगर आप किन्हीं रास्तों पर होकर गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है अपने गंतव्य तक, तो उन रास्तों का आपको ध्यान रखना है और ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है उससे अपडेट लेते रहना है। फिलहाल तो सरता विहार क्षेत्र में जो है, आज मथुरा रोड पर बदरपुर से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाला जो कैरिज वे है उस पर यातायात प्रभावित होने की पूरी संभावना है, और थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि COET, यहाँ पर जो है इसके चलते भीड़ ज़्यादा रहने की संभावना है, इसलिए जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी भी जारी की है जिससे आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आप जो है कैरिज वे की ओर से अगर आगे गुजर रहे हैं तो उससे बचने की सलाह दी कि यहाँ से थोड़ा सा कभी दूसरा रूट ले सकते हैं तो आप चलिए, या फिर समय से पहले निकलिए। परीक्षा जो है यहाँ पर 2 पालियों में सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में जो मुंबई एक्सप्रेसवे से रोड नंबर 13 और MB रोड होकर जाने वाले जो कैरिज वे का उसका आप उपयोग कर सकते हैं, इन रास्तों से गुजर सकते हैं, ताकि आपका जो रास्ता है, जो आपका जाने वाला जो जगह है वहाँ पर आप समय से पहुँच सकें। और 2 स्लिप रोड, मतलब एक अच्छी खबर भी आपको दे देते हैं कि जल्द ही 2 स्लिप रोड खुल जाएंगे। कोंडली पुल पर जो जाम से राहत है उसके लिए 2 स्लिप रोड का काम पूरा हो गया, और अब जो है थोड़ा सा उसको टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि चीज़ें सही हैं, तो उसके बाद इनको रास्तों को खोल दिया जाएगा। और खुलने के बाद आप नोएडा, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर गांव की ओर जो आने वाले वाहन हैं वो बिना रुके, बिना किसी बाधा के गाज़ीपुर जाने के लिए अलग रास्ता आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से गाज़ीपुर की ओर से जो लोग आ रहे हैं बिना रुके, कोंडली, मयूर विहार फेज 3 और दल्लूपुरा की तरफ आप आराम से जा सकेंगे। तो यहाँ पर जो है निर्माण के दौरान डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन किया गया है जिससे काम रुका हुआ था, अब इसे फिर से खोला जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके लिए अब और सुविधाएं हो जाएंगी, रास्ते बेहतर होते जा रहे हैं, सुविधाएं मिलती जा रही हैं, सब कुछ आसान ज़िंदगी में हो रहा है। हमको भी बस बेहतर नागरिक के तौर पर खुद को स्थायित्व प्रदान करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो देश से करते हैं प्यार वो उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं जो आपको मिलते हैं। फिलहाल ट्रैफिक का लुत्फ उठाइए, अगर आप पर निकल रहे हैं समय से थोड़ा पहले निकलिए ताकि आप समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और कहीं पर थोड़ा सा भी अटक रहे हैं तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं, हम एक से खूबसूरत नगमे आपके सामने लाते रहेंगे। अब देखिए यही गीत है ऐश किंग की आवाज में, ऐश कीजिए।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र, और आपको ये जानकारी जरूर देता हूँ, चूंकि आई लव यू की बात हुई है तो हम अपने श्रोताओं से प्रेम करते हैं तभी हमारी बातें होती हैं दिल से दिल तक। और जब हम आपसे प्रेम करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हर वो जानकारी आप तक पहुँचाएं जो आपसे जुड़ी हुई है ना, ताकि आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कुछ गड़बड़ हो। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप रास्तों से तो गुजरते हैं लेकिन क्या वहाँ के नियमों का ध्यान रखते हैं? अब जो है, चूंकि डिजिटल वर्ल्ड हो चुका भाई साहब, नई नई तकनीक आ चुकी है, तो जरा सी भी चूक ना सीधे चालान घर पे पहुंचा देती है। और अब तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, सीधे आपके मेल आईडी पर आपका चालान आएगा। इसलिए आप अगर जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर जो है अब स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू कर दिया गया है। और ये जो स्मार्ट सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम, इसके जरिए जो है सेंट्रल स्पैन रोड, कार्गो टर्मिनल क्षेत्र, गौरी सेंटर होटल जंक्शन, एरो सिटी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन और टर्मिनल वन जैसे जो मार्ग हैं उन पर चालू हो गया। इसलिए अगर आप वहां पर गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वाहन को पूरे नियमन

अनुसार चलाइएगा, नहीं तो सीधे चालान आपके घर तक आएगा। अब जो नई व्यवस्था लागू हुई है उसमें ई चालान सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया और ANPR जो है वो कैमरे नियम तोड़ने वाले वाहन की फोटो और जो जरूरी जानकारी है रिकॉर्ड करेगा, डेटा सीधे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सर्वर पहुंचेगा और उसके बाद पूरी चीज का सत्यापन किया जाएगा और बस चालान आपके घर पर। इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो ये वाले इलाके हैं यहाँ पर बिल्कुल भी तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं, जो स्पीड दी गई उसके अकॉर्डिंग चलाएं, गलत दिशा में ड्राइविंग ना करें, अवैध पार्किंग पर अपने वाहन ना खड़ा करें, रेड लाइट जंप तो बिल्कुल मत करिएगा, स्टॉप लाइन पार मत कीजिएगा, बिना हेलमेट के वाहन भी नहीं चलाना और सीट बेल्ट जरूर लगाए रखनी है। इनमें से कोई भी अगर आप किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो फिर भाई साहब ध्यान रखिए, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमारा काम था आपको बता देना, क्योंकि ये जो ANPR है यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, यहां पर कैमरे लगा दिए गए हैं और 14 हाई डेफिनेशन कैमरे सक्रिय हो चुके हैं, तो आप भी सक्रिय हो जाए, हम तो ये कहें खुदाया खैर करें, कोई नियम ना टूटे, नियम मत तोड़िएगा, बस आराम से पहुंचिएगा घर तक।

0: हाँ जी, तो खैर तो करना ही है और खैर रखनी भी है, और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत आपको सुनने को मिलते रहेंगे। बस आपको करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस लौट के आते हैं आपके पास।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बस यही तो करना है आपको, जहां भी हैं जहां बैठे हैं वहीं बस सुनना है आपको, इसलिए हम कह रहे हैं भाई सुन ले जरा, सुन ले जरा। अब बातें सुनेंगे तो काम के निकलेंगी। अगर आपने ये मन बनाया है कि इन्हीं रास्तों से होकर आप गुजर रहे हैं और उन रास्तों से होकर आपको अपने परिवार के साथ जाना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से हो बागपत होते हुए आपको गुजरना है, तो भाई थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि अब तक आपने इन रास्तों का मुफ्त में सफ़र उठाया, अब इस रास्ते पर टोल कटना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये बात चालू हो गई, क्योंकि मंगलवार को काठा और टटोरी पर जो चीज़ें हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया, और दिल्ली से देहरादून तक के सफ़र के लिए हल्के वाहन जो अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो 600 से ऊपर का टोल जो यहाँ पर कटना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर इस रास्ते का अब तक जिसका 14 अप्रैल को उद्घाटन हुआ था आनंद लेते रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जेब ढीली होगी। और इसके साथ साथ फिर बता दें, आपको नियमों का आपको उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटोमेटिक चालान इस रास्ते से भी होकर जो गुजरेगा उस पर कटेगा। और कारों के लिए जो अधिकतम सीमा इस रास्ते पर रखी गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो बसें हैं उसके लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा निर्धारित की गई है, और भारी वाहन जो है उसके लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की समय सीमा है। तो आप ध्यान रखिए कि समय सीमा का ध्यान रखना और बाकी नियमों का भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, ताकि आपकी जेब टोल के साथ साथ फिर से ना ढीली हो जाए, और आप जिन रास्तों से गुजर रहे हैं उसके जो नज़ारे हैं खूबसूरत उसका भी आप लुत्फ उठाते रहें, उन्हें अपनी आँखों में बसा सकें।

तो अद्भुत नजारे हों तो कहने क्या ही, आंखों में बसाने का मन तो करता ही है। और जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, कहते हैं कि भारत का हर कोना इतना खूबसूरत है कि बस मन करता है कि उन्हें नज़रों में बसाएं और देखते रहें बहुत देर तक। ऐसा ही तो होता है, जब छुट्टी के दिन होते हैं तो बस पहुंचिए वहाँ पर और मस्त मस्त हो जाइए। फिर चलिए कुछ और छोटी लेकिन काम की बातें यहाँ पर कर लेते हैं। अब जामिया आरसीए में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, तो आप ध्यान रखिए। जामिया की जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, आरसीए कोचिंग और करियर योजना केंद्र सिविल सेवा कोचिंग कार्यक्रम में जो भी प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है और इसकी आखिरी तारीख है आवेदन की 26 मई। तो जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं इसमें आवेदन करने के लिए वो इसकी वेबसाइट पर जाएँ admission.jmi.ac.in पर, और इसके माध्यम से आप जो भी जानकारी है विस्तृत वो आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आप फटाफट जाइए और जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए उस पर आवेदन कर दीजिए। और इसके साथ ही जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसने भी पैरामेडिकल कोर्स में आवेदन शुरू कर दिए हैं, तो इसका भी आप प्रक्रिया शुरू हो गई, इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो आखिरी तारीख यहाँ पर है पैरामेडिकल के लिए वो है 31 मई। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए क्योंकि ये सब काम की बातें हैं और समय रहते अगर इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर सब कुछ बिंदास रहता है। हम तो यही कहते हैं कि जानकारी मिल गई तो यही कहते हैं भाई तू मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया। गीतों का सफर यूं जारी है, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

भाई साहब कुछ गीत सुन के पैर रुकते ही नहीं है और बस ऐसा लगता है कि ना चल लें, जितना चाहे उछल कूद मचा लें जब कमरे में कोई ना हो तो। और यही हमारे शो करने का मजा है कि भाई साहब आप उधर हैं, हम इधर हैं, हम आपको नहीं दिख रहे, आप हमें नहीं दिख रहे, हम तो खूब थिरक लेते हैं।

और जो ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है उसमें हम सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को फिट बनाए रखते हैं। आप भी फिट बने रहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी, है ना, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं, वो जब हम आप तक पहुँचाते हैं तो आप पब्लिकली भी हिट एंड फिट और फाइन बने रहते हैं। तो चलिए बता देते हैं कुछ और जानकारी। ये जो जानकारी, ये हमारे जो ई रिक्शा वाले भैया हैं ना, उनके लिए है। आप सुन लीजिए भाई साहब ध्यान से, क्योंकि जो ई रिक्शा चालक हैं उनका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने का जो पोर्टल था वो कुछ समय से बंद था, जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी। अब फिर से उनके लिए खुशखबरी है कि इस ऑनलाइन पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है और 15 मई से ई रिक्शा का पंजीकरण शुरू होने की घोषणा कर दी गई है। इसलिए 15 तारीख से आप पुनः यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो खास लोग हैं जो जुड़े हुए और दिल्ली में कला में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर कुछ इवेंट हैं जिनमें आप जा सकते हैं, अपने समय को बेहतर बना सकते हैं, परिवार के साथ उन चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। त्रिवेणी कला संगम में जो है कला प्रदर्शनी लगी हुई है शिला संवाद नाम से, जहाँ पर द साइलेंट डायलॉग ऑफ रॉक्स इसका जो विषय है रखा गया है, और इसमें पत्थरों, प्रकृति और यादों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको इस कलाकृति को समझना है यहाँ पर, तो आप ज़रूर जाएं। 11 बजे से रात के 8 बजे तक आप इसका इसको देख सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं दिल्ली आर्ट गैलरी में फेसेस एंड फैसेट्स नाम से भी एक एग्जीबिशन लगी हुई है, और यहाँ पर सत्यजीत रे इन कलर प्रदर्शनी जारी की गई है। और ये जो प्रदर्शनी है महान फिल्मकार सत्यजीत रे के जीवन और उनके रचनात्मक दुनिया को बहुत करीब से दिखाती है। तो अगर और करीब से आपको इसे जानना समझना है तो ज़रूर देखने जाएं। इसके साथ ही जो लोग नृत्य के शौकीन हैं वो इंडिया हैबिटेट सेंटर के जो स्टीन ऑडिटोरियम है वहाँ पर 7 बजे से ओडिसी नृत्य का आप लुत्फ उठा सकेंगे। और यहाँ अगर आपको पहुँचना है तो आप आराम से पहुँचिए। कार्यक्रम में जो पारंपरिक ओडिसी नृत्य की जो मनमोहक झलक है वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए हर चीज़ बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय आपका बीतेगा और आपने अपने 24 घंटों को बहुत अच्छे से मैनेज किया होगा, और उन 24 घंटों में आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए जानकारियाँ तो हैं आपके काम की, और गीत भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बेहतरीन बजे कि आपके मन को छू जाए। देखा आगाज यही है, कितनी देर का आगाज हो गया भाई साहब, कि गाने का आगाज है मेरा नहीं, हमारा बहुत देर का हो गया है। गीत का लुत्फ उठाइए, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब, गीत तो पसंद आए होंगे, जानकारियां भी पसंद आई होंगी, और अब ये लम्हे आपसे जुदा होने के, तो चलिए बता दें कि आपके पसंदीदा आरजे कौन कौन से कतार में लगे हैं भाई साहब आने वाले हैं। थोड़ी देर में फिर से आएंगी उत्तराखंड की कन्या सोनू भट्ट लेकर कार्यक्रम दिल के तराने गाने, नए पुराने और नए और पुराने गीतों का संगम। अगर आपको पसंद है तो फिर बस डुबकी लगाइए इस संगम में, है ना। थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे, 9 बजे ठीक इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं आप। और इसके बाद अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक को प्रेम करते हैं तो भाई मैशलेस म्यूजिक आवर में आप हिमानी दत्ता के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक 10:05 पर वो इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे, और 11:05 पर आपके साथ होंगी प्रियंका ममगीन, जो कि बॉलीवुड ट्रेल्स आपके लिए लेकर आएंगे, और 12:05 पर फिर से हिमानी दत्ता आपके साथ होंगी, कार्यक्रम होगा प्ले इट कूल। और इसके अलावा अगर आप रेनबो हेल्पलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से प्रियंका ममगीन के साथ जुड़ना होगा, और ये एक फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसमें आज का जो विषय है द हिडन पावर ऑफ ब्रीद वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। और अगर इस विषय से संबंधित जानकारियां चाहते हैं, कुछ सवाल आप करना चाहते हैं, तो जुड़िएगा एक्सपर्ट के साथ, उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे आज के जो खास मेहमान होंगे वो है अर्जुन गौर, वेलनेस एक्सपर्ट। तो आप बिल्कुल देर मत करिएगा, टाइम नोट कर लीजिएगा भाई साहब, और उस समय आपको मौजूद रहना ही पड़ेगा। 1:05 पर रेनबो हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, और कुछ ही देर में हाजिर होंगी सोनू भट्ट लेकर प्रोग्राम दिल की तराने गाने नए पुराने।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत आप सभी का दिल के दराने गाने नए पुराने में। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट और ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम नए जमाने के गानों के बीच बीच में हर 15 मिनट बाद आपको सुनवाते हैं एक रेट्रो फ्लेवर को लिया हुआ बहुत ही अमेजिंग सा गोल्डन एरा का ब्यूटीफुल सॉन्ग और उस गाने से जुड़ी हुई बातें भी आपको बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बाहर के मौसम को एंजॉय करते रहिए क्योंकि अभी भी लगभग 30-31 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है जो कि अभी झेलने लायक है। दोपहर तक चढ़ते चढ़ते सूरज गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा फैलाने वाला है, तो उसके लिए अपनी तैयारियां आप करके निकलिएगा क्योंकि इस समय मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ लोग ऑफिस की तैयारी कर रहे होंगे, निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऑफिस जाने के रास्ते में होंगे, ऑफिस कॉलेज स्कूल जहाँ भी आपको पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन तक। तो बस अपने आप को हाइड्रेट रखिए और अपने आप को बचा के रखिए इस चुपती जल्दी गर्मी से।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और अब टाइम हो गया है आपको रेट्रो फ्लेवर तक ले जाने का और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप तक पहुंचाने का। चुनकर लेकर आई हूं मैं आपके लिए जो गाना, वो बहुत ही खूबसूरत है, लता मंगेशकर की आवाज में आप तक पहुंचेगा। फिल्म है मधुमती। मधुमती अपने आप में कल्ट क्लासिक मानी गई हिंदी सिनेमा की, जिसमें नजर आए दिलीप कुमार, उनके साथ नजर आई बैजंती माला, और इतनी ब्यूटीफुल ये फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट ये फिल्म, इसमें प्राण और जॉनी वॉकर साहब ने भी बहुत ही खास भूमिकाएं निभाई। ये रिलीज हुई थी 1958 में। गाने इसके एक से एक ब्यूटीफुल हैं, और जो गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये गाना तो आपको सच में झूमने पर मजबूर कर देगा। बहुत ही प्यारा सा गाना, इसे सुनिए और फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे दिल की तराने, गाने नए पुराने में नए गीतों का।

बिल्कुल इसी तरह से प्यारे लगते हैं हमारे सारे वो गाने जो कि गोल्डन एरा में बने थे. और अब टाइम आ गया है आपके पास दोबारा से एक और ब्यूटीफुल ट्रैक्स पहुंचाने का, जो कि लाई हूं मैं फिल्म जिसे चुनकर, वो है 20 साल बाद. 1962 में आई थी, सस्पेंस थ्रिलर ये फिल्म थी. और इस फिल्म से जुड़ी हुई खास बात यह है कि इस फिल्म में गोपी चंद जासूस का कैरेक्टर जो था वो प्ले किया था असित सेन साहब ने. और आज उनकी जयंती है, 13 मई 1917 को उनकी पैदाइश हुई थी. हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज हास्य अभिनेता और चरित्र कलाकार के रूप में वो जाने गए. बहुत ही अच्छे उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर्स के जो रोल हैं वो किए. अपनी बेहद धीमी आवाज़ और उनका जो डायलॉग डिलीवरी का एक बिल्कुल अनोखा अंदाज था, उसने इन्हें बहुत ही पॉपुलर किया. 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनमें बहुत सी सुपरहिट फिल्म्स, बहुत से सुपरहिट हीरोज सब शामिल हैं. आज उनको याद कर रहे हैं. और ये जो फिल्म है जिसके बारे में मैंने आपको बताया 20 साल बाद, उसका गाना सुनते हैं, जिसमें नजर आए इनके साथ विश्वजीत और वहीदा रहमान.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से रेट्रो फ्लेवर को आप तक पहुंचाने का टाइम आ गया है 9:45 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और बाहर का मौसम भी अब काफी हद तक बदल चुका है। जो धूप आ रही थी अब बादल लगे हैं, तो बादल लगने की वजह से एक अच्छी सी घटाएं सी छा गई है। अब बाहर जाके पता चलेगा कि हवाएं कुछ ठंडी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। फिलहाल गाना जो है वो इसी ठंडी और काली घटा का जिक्र कर रहा है। फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55, 1955 में रिलीज हुई मधुबाला। इस पर नजर आई, ब्यूटीफुल ट्रैक।

वेल, अब इसी के साथ मुझे यानी सोनू को दीजिए इजाजत, क्योंकि अब मैचलेस म्यूजिक आर लेकर आ गई हिमानी स्टूडियो में, आपके साथ मुखातिब होंगी कुछ ही देर में। आपकी मेरी मुलाकात होगी किसी और खूबसूरत दिन पर, तब तक एंजॉय करते रहिए आप आकाशवाणी म्यूजिक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो

लगता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: From the 1975 film Geet Gaata Chal, that was one of the forgotten voices, Aarti Mukherjee. And yes, that is the speciality of Akashvani. We understand our heritage and we do everything we can to preserve it. And when we look through the mirror of time, we see and realize how glorious this journey of 90 years has been. And we are moving from strength to strength. And well, time now for me to take a break and I'll see you on the other side of this break.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं

0: टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक एंड वी हैव मैसेजेस कमिंग इन एंड दिस वन इज फ्रॉम एम राजकुमार फ्रॉम ट्रिची। सेज थैंक यू फॉर प्लेइंग द ट्रैक जीना यहां मरना या। व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग एंड ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज। My brother sang this song in his college intro time, hence he earned a nickname Jeena Yahan Marna Yahan, which stuck through his college years. Wow, that is so soulful, and this is the magic of music, you know. You just listen to some song and it takes you back in time, and sometimes it makes you happy and sometimes it just overwhelms you. And he says, this is exactly what MMH is about, bringing back memories. Absolutely. Thank you so much. And we have another message from Dolly. And she says, great information given by Swapna ji.

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और वक्त कह रहा है कि वक्त हो चला है उस क्वेश्चन को पूछने का जिसका आंसर देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो जनाब हमने अभी बात की शुरुआत में प्रोग्राम की शुरुआत में बात की कि अनन्या पांडे और लक्ष्य की एक फिल्म आ रही है मई के महीने में रिलीज हो रही है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और फिल्म का नाम है चांद मेरा दिल। आप सभी को इस फिल्म की रिलीज डेट हमें बतानी है 9868107070 पर। जी हाँ, आपको बतानी है चांद मेरा दिल की रिलीज डेट, ये फिल्म किस दिन रिलीज हो रही है। लिख भेजिए हमें 9868107070 पर।

फिल्म जगत के गलियारों से खबरें फिल्मों की। जी हाँ, मई का महीना लग चुका है, कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कई सारी फिल्में हैं जो आने वाले वक्तों में रिलीज होंगी, रिलीज की जाएंगी। अगर साल 2026 की बात की जाए तो इस साल के जितने भी महीने बचे हैं ना, उनमें अलग अलग फिल्में रिलीज होंगी और उनमें से 7 फिल्में ऐसी होंगी जिनमें जो लीड हीरो और लीड हीरोइन की जोड़ी है वो पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। जी हाँ, बात की जाए इन जोड़ियों की और इन जोड़ियों की आने वाली फिल्मों की, तो चांद मेरा दिल एक फिल्म है जो मई के महीने में रिलीज हो रही है, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनेता एक साथ नजर आएंगे पहली बार। इसी के साथ एक फिल्म आ रही है, तू मेरी जिंदगी है, कार्तिक आर्यन और श्रीलीला इस फिल्म

में लीड अब किरदार निभाते नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनुराग बासु। और इस फिल्म की अभी रिलीज डेट तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन इस फिल्म में भी कार्तिक आर्यन और श्रीलीला एक साथ पहली बार नजर आएंगे। फिल्म रामायण की बात की जाए तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी और इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगी। और इस फिल्म के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म को इसी साल रिलीज किया जाएगा, लगभग लास्ट आते आते 2026 के। इसी के साथ एक और फिल्म आ रही है वरुण धवन की, जिसमें उनके अपोजिट दिखाई देंगी पूजा हेगड़े, और वरुण धवन और पूजा हेगड़े भी पहली बार एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। ये फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, और ये फिल्म रिलीज हो रही है सिनेमा हॉल्स में 5 जून को। इसी के साथ एक और फिल्म आ रही है, जो मूवी है वो 12 जून को सिनेमा हॉल्स में रिलीज की जाएगी और इसका नाम है मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, और इस फिल्म में वेदांग रैना और शर्वरी वाघ लीड रोल में पहली बार एक साथ नजर आएंगे। इसी के साथ एक और फिल्म आने वाली है लाइकी लाइका, जिसमें राशा ठंडानी और अभय वर्मा एक साथ पहली बार नजर आएंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सौरभ गुप्ता ने, और इसकी भी रिलीज डेट अभी थोड़ा सा डामाडोल है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि इस फिल्म को भी इसी साल रिलीज किया जाएगा। तो आने वाले फ्राइडेज बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं सिने लवर्स के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: जी हाँ अरमान, हमारे दिल का कि आप बॉलीवुड सरताज बने और हम आपसे बात करें। और अब वक्त आ चला है उनसे बात करने का जो बने हैं आज के बॉलीवुड सरताज। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैम, मैं सोनिया त्यागी बोल रही हूँ, दिल्ली द्वारका से।
0: हेलो सोनिया, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बने हैं बॉलीवुड सरताज।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: सोनिया, आज का जो आंसर है प्लीज वो बता दीजिए।
1: आज का आंसर है कि चांद मेरा दिल मूवी जो है 22 मई 2026 को रिलीज होगी।
0: जी,
1: धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है।
0: ओहो,
1: जिसमें नन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी वो कर रहे हैं।
0: हाँ, एक साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब आप फिल्में भी देखती हैं और फिल्मों की खबरें भी आपको सुनना और जानना पसंद है।
1: हाँ जी मैम, हाँ जी।
0: तो
1: मुझे बहुत शौक है, अब थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा कम देखती हूँ, पर हाँ मुझे शौक बहुत है।
0: तो बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम आपको कैसा लगता है?
1: बहुत बढ़िया लगता है मैम, बहुत बढ़िया।
0: और
1: मैं हर बार उसके वो देती हूँ कि हाँ चलो, जो मुझे पता है कि हर बार मैं उसके मतलब पार्ट लेती हूँ हमेशा ज्यादातर। और सोचती हूँ मैं भी बनूंगी बॉलीवुड सरताज। पर ये था कि मैंने अभी कुछ दिनों से मैं जुड़ी हूँ आपके चैनल से, तो मैं तभी बन गई थी बॉलीवुड सरताज स्टार्टिंग में, और अब काफी दिन बाद अब दोबारा सिलेक्ट हुई हूँ।
0: क्या बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लकी हैं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो हमें और ज्यादा अच्छा प्रोग्राम करने की कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम
0: जी। तो किस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हैं आप?
1: मैम मैं तो सब तरह की मूवीज देखती हूँ, ऐसा कोई इशू वो नहीं है मेरे लिए, सब तरह की देखती हूँ। और आजकल तो आपको इंटरनेट पे पता ही है, हम सीरीज वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, आपको सब कुछ फोन पे उस पर मिल जाता है हम लोगों को। पहले तो क्या होता था, हमें इंतजार देखना पड़ता था, पर यह है कि बहुत टाइम से देखती हूँ, मतलब जब तो केबल वगैरह नहीं था, फिल्म वगैरह रोज नहीं आते थे, नेशनल पे आते थे, डीडी मेट्रो वगैरह पे आते थे, मैं उस टाइम से भी देख रही हूँ। मतलब ऐसा एज ज्यादा नहीं है, पर मुझे शौक बहुत था।
0: क्या बात है, आपने तो दिल की बात कह दी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बने आज के बॉलीवुड सरताज। यूं ही हमारे प्रोग्राम्स प्लीज सुनते रहें।
1: जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच मैम
0: जी, बाय बाय। और इसी के साथ उन सभी लिसनर्स के नाम भी ले लिए जाएं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुमन शर्मा दिल्ली से, सलीम मलिक मेरठ से, जयनंद त्यागी गाजियाबाद से, तरुण कोहली मेरठ से, नीमा विकास देहरादून से, इरशद अशरफी नौगौर राजस्थान से, दानिश खतौली से, मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से, उमेश कुमार ख्याला से, मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। सोनिया त्यागी दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, वो बनी हमारी आज की बॉलीवुड सरताज। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, मुबारक खान भरतपुर राजस्थान से, राजकुमार के संतानी अंकोला महाराष्ट्र से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, मोहम्मद फुरकान ग्राम सियाल मेरठ से, विनीत कुमार बदायूं यूपी से, और धर्मेंद्र सिंह दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम प्लेट कूलर आपके साथ रहेंगी हिमानी मोनालिसा दत्ता।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वितरी कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में

आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: That was Ellie Goulding with Destiny. Time for me to take a break, and I'll see you on the other side in a very, very short while.
1: Mangal bhavan, mangalhari.
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: me to come right back to you after this break.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, जिंदगी हर क्षण प्रति क्षण बदल रही है। इस बदलते हुए समय में, बदलती हुई जिंदगी में एक चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है वो है हमारी सांसें, ब्रेथ। जिंदगी की शुरुआत सांसों की शुरुआत से होती है तो जिंदगी का अंत भी सांसों पर ही टिका रहता है। शरीर में सांसों का आना जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। कहें तो सांस लेने की ये प्रक्रिया एक शुद्ध विज्ञान है। जिसे हम ठीक से समझ लें तो हम अपनी कई सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं। योग के एक सूत्र में कहा गया है, चले वाते चलम चितम निश्चलय निश्चलम भवेतः। इसका अर्थ है, जब सांस चंचल होती है तो मन भी चंचल होता है, और जब सांस स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। ये सूत्र, ये श्लोक सांस लेने की प्रक्रिया और मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य के बीच सीधा और गहरा संबंध स्थापित करता है। ब्रीथिंग इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। सांसों की इसी शक्ति को समझने के लिए आज हम रेनबो हेल्पलाइन में टॉपिक लेकर आए हैं, द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हैं श्री अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: जी। अर्जुन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक है उसमें दो वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तो ब्रेथ वर्क है और दूसरा माइंडफुलनेस है। तो हम आसान से शब्दों में इन दोनों शब्दों को समझना चाहेंगे जिससे कि टॉपिक को हम और अच्छे से समझ सकें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लिसनर्स का जो हमारा ये शो अभी सुन रहे हैं। सो ब्रीथिंग, ब्रेथ वर्क माइंडफुलनेस का ही एक तरीके से एक हिस्सा होता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जब आप अपने माइंड, हम अपने बॉडी और हम अपने इमोशंस को प्रेजेंट में रखें। अभी का समय क्या है, इस समय हम क्या सोच रहे हैं, इस समय हम क्या कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह फोकस कर सकें, उसको बहुत एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं माइंडफुलनेस।
1: प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना। अक्सर क्या होता है कि हम लोग या तो पास्ट में चले जाते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं, या फिर फ्यूचर के प्लान्स बना रहे होते हैं जी। तो इसका मतलब है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए।
2: बिल्कुल, जब हम वर्तमान में रहना जीना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं पूरी तरह। और वर्तमान में रहना ही जीवन का एक सबसे बड़ा अमूल्य चीज होती है
1: जी। बिल्कुल, तो यानी अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल करें, सांसों पर ध्यान दें, तो हम प्रेजेंट में रह सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: यानी इसको अचीव किया जा सकता है, दोनों वर्ड्स को अचीव किया जा सकता है जी। हाँ, आज का टॉपिक है द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इज डेली लाइफ। आप हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ सकते हैं, दो फोन लाइंस हैं जिन पर कॉल करके आप सीधे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, उन्हें अपने प्रश्न बता सकते हैं और उनके समाधान पा सकते हैं। नंबर है 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 011-2342-1084। इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868107070। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं और सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से।

0: सांसों की बात चल रही है रेनबो हेल्पलाइन में, क्योंकि आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं श्री अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट, और एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे उनका सवाल जानते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और प्लीज अपना सवाल पूछें।
1: जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी राजेंद्र,
1: तो सबसे पहले तो एंकर मैम का गुड आफ्टरनून,
0: वेरी गुड आफ्टरनून,
1: और टॉपिक रिलेटेड एक्सपर्ट सर को भी गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून सर।
1: सर मेरे तीन चार छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि सांस लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं, कई लोग मुंह से सांस लेते हैं मुंह से ही छोड़ते हैं, इसका सही तरीका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल कि सर ये मशीनी युग है, तो जाहिर सी बात है कि हमें युग व दशक व शताब्दी काम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो दूसरा तरीका ये बताएं कि क्वालिटी और

0: कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें कोई फिजिकल मेंटल वर्क कैसे करना है, कोई डाइट उसकी, कोई एक्सरसाइज। तीसरा सवाल मेरा ये कि सर कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम पास्ट और फ्यूचर में ना जाके प्रेजेंट पे ही अपने आप को फोकस कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके। और चौथा और आखिरी सवाल कि जब हम सुबह से अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो क्या कोई ऐसी दवा है या कोई तरीका है या कोई डाइट है कि हम ऐसी 24 घंटे अपने माइंड को ऐसी ब्लैंक और फ्रेश रख सके? बड़ी मेहरबानी, प्लीज गाइड करें।
1: जी बिल्कुल, आप प्लीज सुने सब आंसर, एक्सपर्ट आपकी जो सवाल जवाब दे रहे हैं। हाँ जी प्लीज।
2: सो जो ये चार सवाल हैं हमारे व्यूअर के, लिसनर के, सो ये चारों सवाल के आंसर मैं कॉमन स्टेटमेंट में ही देता हूँ, तो चारों के आंसर हमें एक साथ कवर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो पहला इन्होंने पूछा था कि हमें ब्रेथ लेने का हमारा सही तरीका क्या है।
1: जी।
2: तो ब्रेथ लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो प्राकृतिक ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ हम जिस तरीके से ले रहे हैं, आराम आराम से रिलैक्स होके अपनी सांसों को बिल्कुल नियंत्रण में रखते हुए धीरे धीरे लेना है, बहुत तेज बहुत स्पीड में ब्रेथ नहीं लेना है। दूसरा तरीका यह है कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका उस टाइम पे मूड सिचुएशन किस तरीके की है, और आप अपनी अगर ब्रेथ पे अवेयर हो आप कि आपके ब्रेथ ऐसा तो नहीं एकदम से फास्ट हो गई है बिकॉज आपकी सिचुएशन आपकी एग्जाइटी से कनेक्टेड हो, तो उसके हिसाब से अपनी ब्रेथ को स्लो डाउन करना है। अपनी ब्रेथ को कंट्रोल और नियंत्रण करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी ब्रेथ अभी कंट्रोल में नहीं है, बहुत तेज है या बहुत ही ज़्यादा स्लो है, आंखें बंद करिए और अपनी ब्रेथ पे फोकस करना धीरे धीरे शुरू करिए। आपकी ब्रेथ धीरे धीरे अगले कुछ सेकंड्स और मिनट्स में कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। सो ब्रेथ को लेने का एक अच्छा तरीका है वो प्राकृतिक तरीका जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, आराम से लीजिए ब्रेथ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। माइंडफुलनेस हमेशा यही सिखाता है कि प्रेजेंट में कैसे रहना है।
1: जी बिल्कुल।
2: और इन्होंने भी क्वेश्चन यही पूछा है कि हमें प्रेजेंट में फ्रेश हमेशा 24 घंटे कैसे रहना है। देखिए हम लोग नेचुरल सी बात है, हम लोग लाइफ में ज़िंदगी में होते हैं जहाँ संघर्ष भी होते हैं, जहाँ पे कठिनाइयाँ भी होती हैं और हमें उसको फेस करना भी पड़ता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल
1: दोनों। जी।
2: अब जब संघर्ष और कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारी ब्रेथ और हमारी सांसों में भी थोड़ी बहुत संघर्ष और कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, ऐसा हमें फील होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जब हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस में लेके आते हैं ब्रेथ वर्क को, जब हम ब्रीदिंग को हर रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करें, ऐसा नहीं है आपको हर रोज आधे घंटे बैठ के ब्रेथ वर्क करना है, 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करना है ब्रीदिंग।
1: अच्छा, बिगिनर्स के लिए इनफ है?
2: यस, बिगिनर्स के लिए शुरू में एवरीडे 10 मिनट्स मॉर्निंग में इनफ है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत छोटा टाइम है, कोई भी निकाल सकता है।
2: बिल्कुल। तो जब हम 10 मिनट अपने आप को ब्रीदिंग में डालेंगे तो 21 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम देखेंगे हमारी ब्रेथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आनी हमारी शुरू हो गई है और हमारी थॉट प्रेजेंट में आनी शुरू हो गई है। तो जैसा मैंने बताया जब लाइफ में संघर्ष आते हैं तो हमारी थॉट्स प्रेजेंट में ना रह के पास्ट में जाती है या फिर फ्यूचर में जाती है या ओवर थॉट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वाटर, पानी पीजिए, रिलैक्स करिए, आंखें बंद करिए, 2 मिनट अपने आप को ब्रेक दे के अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ एक मैसेज आया है श्री राजकुमार जी का त्रिची तमिलनाडु से, वो कहते हैं कि थैंक्स फॉर टेकिंग अप अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टुडे, ग्रेट टॉपिक ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एक्सपर्ट। इसके साथ एक और मैसेज आया है जी, पैंथर टोमर लिखते हैं कि क्या ब्रीदिंग से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और सांस में नियंत्रण कैसे फोकस को सुधारता है, कंसंट्रेशन को सुधारता है, ओवरथिंकिंग को कैसे रोकता है?
2: ब्रीदिंग से बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है 100%। देखिए हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारी ब्रेथ से जुड़ी हुई है, हमारी सांस से जुड़ी हुई है। जब कोविड आया था तब भी हम लोगों में जब इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हुआ था तो उसमें ब्रीदिंग हमेशा सजेस्ट की जा रही थी कि एक अच्छा ब्रेथ वर्क आपके लंग्स को बेटर कर सकता है, आपके हार्ट को बेटर कर सकता है, आपके इवन ब्लड प्रेशर को बेटर कर सकता है। तो ब्रीदिंग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ज़रूरी है ब्रेथ को एक राइट डायरेक्शन से करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या सीवियर पैनिक अटैक है या प्रेगनेंसी के टाइम भी, उस टाइम पे ब्रीदिंग स्पेशली प्रैक्टिशनर या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी गाइडेंस में करना चाहिए, उनके बिना नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक मैसेज आया है दिनेश कुमार का नेपाल से, वो लिखते हैं कि वो 38

0: साल के हैं और सीढ़ी चढ़ते हुए उनकी सांस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं वैसे ही लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि क्या इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब सीढ़ी चढ़ते हुए सांस तेज़ हो जाती है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, उनको वक्त ज़्यादा लगता है चीज़ों को काम करने में, तो क्या इसको सुधारा जा सकता है?
1: बिल्कुल सुधारा जा सकता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वो सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई ट्रैक करते हैं या जब जब कोई हाइट पे चढ़ते हैं, तो वो अपनी सांसों को नोज से ही इनहेल करें और नोज से ही एक्सहेल करें, माउथ से एक्सहेल ना करें उस टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जब वो भी ट्रैक या कोई हाइट चढ़ते हैं तो नोज से इनहेल करते हैं बट माउथ से एक्सहेल करने शुरू कर देते हैं तेज तेज तेज तेज तेज तेज, तो उससे उनका शरीर बहुत हांफना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से जो बॉडी है और ज़्यादा टायर्ड और ज़्यादा ड्रेन्ड होनी शुरू हो जाती है,
0: क्योंकि एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए। जी जी, तो यानी नाक से ही सांस लें जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो नाक से ही लें और नाक से ही सांस को छोड़ें, इनहेल और एक्सहेल करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सटीक सवाल। सचिन कुमार लिखते हैं कि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली NCR में रहते हैं, ऐसे में अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक कारगर है?
1: पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है मेट्रो सिटीज़ में, ना कि सिर्फ दिल्ली NCR में, मैं तो कहता हूँ मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में आजकल पॉल्यूशन बढ़ गया है काफ़ी। और ब्रीदिंग, जाहिर सी बात है ब्रेथ लेना पॉल्यूशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हमें अपनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जब हम निकलते हैं बाहर तो मास्क का यूज़ कर लें, और घर में जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है घर में थोड़ा सा अपने प्लांट्स लगा के रखें, थोड़ा घर में भी ग्रीनरी लगा के रखें, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट ऑक्सीजन मिलता रहे रहेगा और उस इन्वायरमेंट के अंदर जब आप ब्रीदिंग लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रेश फील कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल, एक मैसेज आया है दिल्ली से श्यामलाल जी का, वो लिखते हैं कि वो 66 साल के हैं, 66 ईयर ओल्ड हैं, BP और हार्ट प्रॉब्लम है उन्हें, और वो चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि क्या ब्रेथ वर्क से और ब्रेथ एक्सरसाइजेस से BP और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है?
1: देखिए, ब्रीदिंग जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ब्रीदिंग हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर एज ग्रुप के लिए ब्रेथ वर्क का जो तरीका होता है, जो स्टाइल होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम 66 साल के एक पर्सन के लिए ब्रीदिंग सजेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो डॉक्टर के सजेशंस क्या है उनके लिए, उनकी करंट मेडिकल सिचुएशन क्या है, उसके बेस पे ही उनको पर्सनल गाइडेंस के बेस पे ब्रेथ वर्क एडवाइस किया जा सकता है। लेकिन स्टिल धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल वो हर रोज़ मॉर्निंग में करें, खाली पेट करना है, और अगर किसी के पास समय नहीं भी मिलता है तो कोशिश करें खाली पेट 2 घंटा, या तो सुबह जब भी ब्रेथवर्क कर रहे हैं उससे पहले खाली पेट हो 2 घंटा पहले और बाद में भी।
0: जी बिल्कुल, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द हिडन पावर ऑफ ब्रेथवर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसी के साथ हमारी 2 फ़ोन लाइन्स हैं जो स्टूडियो से अटैच्ड हैं, आप इन फ़ोन लाइन्स पर फ़ोन करके भी हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या या सवाल को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है 0112342108 और 0112342108।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आधुनिक युग, भागदौड़ भरी जिंदगी, एक साथ कई सारे काम करने का दबाव, घर, ऑफिस, रिश्ते नाते, सोशल लाइफ और इन सभी के बीच हिचकोले खाती जिंदगी। तो ऐसे में क्या हम जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, या जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए, सही लाइन पे लाने के लिए हमें अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा, हमें अपनी सांसों को एक सही दिशा में लेकर जाना होगा, सही तरीके से सांस लेनी होगी। आज हम इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हेल्पलाइन टॉपिक है द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट आप हैं, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपर्ट। एक मैसेज आया है, पैंथर तोमर जी ने ही भेजा है दिल्ली से, वो पूछते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में क्या अंतर है।
3: सो मेडिटेशन माइंडफुलनेस का ही एक हिस्सा होता है। माइंडफुलनेस सुबह मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन थेरेपी है, हमारे योग का हिस्सा है। और मेडिटेशन करने से सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस कर पाते हैं अपनी थॉट के ऊपर। और माइंडफुलनेस का भी एक जो आउटकम हम कहें वो यही होता है, जब अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी बॉडी को प्रेजेंट में लाना। तो मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन थेरेपी है और माइंडफुलनेस का ही एक हिस्सा होता है।
2: जी बिल्कुल। रूबी का मैसेज आया है दिल्ली से, वो कहती हैं कि ब्रेथ वर्क की टेक्निक्स हैं तो वो प्लीज शेयर कीजिए।
3: ब्रेथ वर्क की रूबिका बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और वैसे बेसिक टेक्निक्स का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सुबह, अगर आप बिगिनर हैं, सुबह 5 या 10 मिनट नोज से इनहेल और नोज से एक्सहेल 3 राउंड्स 20-20 टाइम्स के करने हैं आपको। जब आप 3 राउंड्स 20-20 टाइम्स करेंगे, नोज से इनहेल, नोज से एक्सहेल, धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांसों को इनहेल करना है और सांसों को एक्सहेल करना है। और कोशिश करिएगा खाली पेट करें ब्रेथ वर्क, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है बिफोर ब्रेथ वर्क आल्सो। सो अपने आप को नॉर्मल रखना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपने थॉट्स को डिसकनेक्टेड रखना है। जब आपका ब्रेथ वर्क 3 टाइम्स 3 राउंड्स हो जाता है, नोज से इनहेल और नोज से एक्सहेल, उसके बाद अपनी बॉडी को इमीडिएटली एकदम नहीं उठना है ब्रेथ वर्क करके, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, 1 मिनट आंखें बंद करके बैठना है और फिर अपनी बॉडी को मूवमेंट करना है, और डिजिटल एक्सेस बिल्कुल नहीं करना है।
2: जी बिल्कुल। एक मैसेज आया, वो लिखती है कि क्या स्ट्रेस को कम किया जा सकता है इस टेक्निक से, ब्रीथ लेने की टेक्निक से।
3: 100% ब्रीदिंग से तो स्ट्रेस को कम किया, बिल्कुल उस टाइम पे तो ख़त्म ही किया जा सकता है, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी भी फेल नहीं हो सकता है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। देयर आर मल्टीपल, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो लोग स्ट्रेस के लिए, काउंसलिंग भी लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं। आयुर्वेदा में बहुत कुछ है हेल्पफुल होता है, आयुष मंत्रालय इतना अच्छा काम कर रहा है, हर रोज़ अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं श्वास को लेके, योगा को लेके, आसन्स को लेके। सो ब्रीदिंग एक ऐसा थेरेपी है जिस जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए 100% हेल्पफुल हो सकती है, अगर आप राइट तरीके से राइट ब्रेथ वर्क कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि सांस लेने का जो तरीका है वो किस तरीके का होना चाहिए, और एक आपने कोल्ड थेरेपी, कोल्ड वाटर थेरेपी भी बताई थी रात को, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये भी शेयर करें तो जो लिसनर्स हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा।
3: बिल्कुल। जैसा कि हम लोगों की लाइफ डेली रूटीन में बहुत तेज़ चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, हम चाहे दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, घरों में, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रात को हमारी बॉडी बहुत थक जाती है। आज आप देखिए मोस्टली लोग टायर्ड हैं, काम की वजह से नहीं, वो टायर्ड हैं, उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा चैनलाइज हो जाती है। सो रात को सोने से पहले ज़रूरी है सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, डिजिटली बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएं, और दोनों पाँव को अपने कोल्ड वाटर में डाल लें। जब दोनों पाँव को आप थोड़ी देर कोल्ड वाटर में डालेंगे, आँखें बंद करें और अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करें। स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल,
2: नाक से ही करनी
3: है, नाक से इनहेल, नाक से ही एक्सहेल, और आपके दोनों पांव उस टाइम कोल्ड वाटर में होंगे।
2: okay.
3: और आपके जो हाथ हैं, आपके जो पाम्स हैं वो ओपन होंगे और आपके लैप के ऊपर होंगे, सो दैट अपने आपको आप रिलैक्स फील कर सके। आपकी बॉडी पोजिशन भी बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, बहुत टायर्ड ना हो, बहुत अपनी बॉडी को स्ट्रेस देने की इस टाइम जरूरत नहीं है। थोड़ी देर करने के बाद कपल ऑफ मिनट्स

0: अनीता का, वो लिखती हैं कि उनकी बेटी 12th में है, नीट की तैयारी भी कर रही है, उसे बहुत स्ट्रेस रहता है, किस तरीके से वो और किन तकनीक से, ब्रेथ वर्क की टेक्निक से वो फ़ायदा ले सकती हैं, क्या वो बेटी को सजेस्ट करेंगी?
1: अक्सर ऐसा होता है, अक्सर जैसे मैं भी अपने कोचिंग सेशंस में देखता हूँ, यूजली जो टीनेज होता है या जेंजी है, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि ब्रेथ वर्क की प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि बॉडी को रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस हमने डाली नहीं. तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेथ वर्क जब ही सक्सेस हो सकता है जब हम हर रोज उसे प्रैक्टिस में, डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी में डालें.
0: जी.
1: क्योंकि आफ्टर 21 डेज और 25 डेज जब आपने इसको कंसिस्टेंट कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका स्ट्रेस, चाहे वो एग्जाम की वजह से है या फिर आपकी डेली परफॉर्मेंस की वजह से है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं इन अ वेरी वेल मैनर. और उस बच्ची के लिए जो 12th में है और नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही है, उसके लिए मेरे पास बच्ची के लिए एक ही आंसर है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. प्रेजेंट, जैसा हम यहाँ माइंडफुलनेस की बातें कर रहे हैं, फोकस करें अपनी स्टडी पे, फोकस करें अपनी ब्रेथ पे, और ऐसा ना हो कंटिन्यू बच्चा पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है. ब्रेक ले, 5 मिनट का ब्रेक ले, पूरे दिन में 3 times 5 5 मिनट का ब्रेक ले ले, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, और 5

0: के लिए भी 10 मिनट 5 मिनट जरूर निकालें।
1: एब्सोल्युटली
0: इफेक्ट पड़ेगा इसका,
1: बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, और आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और उनका कॉग्निटिव भी बहुत एक्टिव हो जाएगा।
0: दैट्स वंडरफुल। यशपाल द्वारका दिल्ली से लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के हेल्पलाइन का। वो कहते हैं कि अक्सर आजकल लोग ब्रेथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सही तरीका नहीं पता है इन एक्सरसाइजेस को करने का। तो वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से पता करें कि ये सही एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है हमारे सभी लिसनर्स के लिए। देखिए होता क्या है, एक इंसान नॉर्मली जो एवरेज 24 घंटे में जो ब्रेथ लेता है लेता है वो 18,000 टाइम टू 25,000 टाइम्स उसका ब्रेथ वर्क होता है, राइट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो उसका जो ब्रेथ होता है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका ब्रेथ वर्क, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बिगिनर हैं या बिगनर से ऊपर हैं या एडवांस्ड पे हैं, वो मैटर करती है आपका लेवल क्या है सबसे पहले। और कोई भी एक्सरसाइज ब्रीदिंग की करने से पहले ज़रूरी है अपने आप को, अपनी बॉडी को ठहराव में लेके आना, स्टेबल करना, राइट। तरीका मल्टीपल तरीके होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, ये एक सच्चाई है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की, आपकी इम्यून सिस्टम की या आपके लंग्स की रिक्वायरमेंट उस टाइम क्या है, आपकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन या आपकी हेल्थ कंडीशन उस टाइम क्या है, उसके बेस पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट की जा सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। कपिल गुप्ता जी हैं दिल्ली से, वो आपको वेरी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून अर्जुन सर। साथ ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लाइफ में सब कुछ है फिर भी मन कहीं नहीं लगता है, क्या किया जाए। मुझे लगता है माइंडफुलनेस,
1: बिल्कुल
0: प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट या फिर फ्यूचर की तरफ भागता है मन।
1: बिल्कुल सही बात है, और कपिल गुप्ता जी ने जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन शांत नहीं है, क्योंकि मन अशांत इसलिए है क्योंकि बहुत सारी अननेसेसरी अशांत चीज़ों को हमने अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में रखा हुआ है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यू नो क्या कहती है, जितनी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, मतलब कोई सिचुएशन जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, राइट, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हम एकदम से हमारे पास कोई बटन नहीं है अचानक से हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर ले, राइट। ब्रीदिंग एक ऐसा बटन है जिसमें हम प्रेजेंट में तो आ सकते हैं कम से कम, तो जैसे ही ब्रीदिंग का बटन स्विच ऑन करेंगे और हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, सो माइट बी हम लोग अपने मन को शांत से शांत बना सकते हैं।
0: क्या बात है, द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ आज का टॉपिक। एक्सपर्ट हैं अर्जुन गौड़, वेलनेस एक्सपर्ट हैं आप, और आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं 9868107070 पर हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसी के साथ आपकी कॉल्स भी हमें चाहिए, हमारे कॉल्स, हमारी जो दो लाइन हैं वो बिल्कुल अटैच्ड हैं, खुली हुई हैं, आप इन पर कॉल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 0112342108400112342108 0

0: करार आ रहा है सांसों को, क्योंकि आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। अक्सर जब हम लाइफ की बात करते हैं, अपनी डे टू डे की लाइफ की बात करते हैं, तो हम अक्सर इस बात को नोटिस करते हैं कि हम रहते तो प्रेजेंट वर्तमान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर का काम कर रहे हों, ऑफिस का काम कर रहे हों, या फिर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हों, तो हम प्रेजेंट में रहते हुए भी या तो पास्ट में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर के प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट को, जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, उसको बिल्कुल नकार देते हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जबकि जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो लाइफ का बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कैसे माइंडफुलनेस को प्राप्त किया जा सकता है, पाया जा सकता है डेली लाइफ में। एक मैसेज आया है, इसमें लिखा गया है कि जब वो प्रेजेंट में रहते हैं तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली उन्होंने लिखा है कि जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो वो एक्सरसाइज करते हुए, मेडिटेशन करते हुए या तो पास्ट में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं, और इस तरीके से उनकी जो मेडिटेशन की क्वालिटी है बहुत लो रहती है। तो किस तरीके से ब्रीथ को कंट्रोल करके वो इसको हाई क्वालिटी का बना सकते हैं?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को सबसे पहले बहुत ज़रूरी है समझना मेडिटेशन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मेडिटेशन माइंडफुलनेस का एक पार्ट है। तो जब किसी ने मेडिटेशन फर्स्ट टाइम नहीं किया और कोई बिगनर है या कोई पहली बार मेडिटेशन कर रहा है, तो मैं हमेशा आपके लिसनर को आज ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपका मेडिटेशन शुरू करने का कुछ प्लान है तो उससे पहले कम से कम 14 डेज अपनी बॉडी को ब्रेथ वर्क की हैबिट में डालें। 14 डेज ब्रीदिंग करने के बाद ही आपकी थॉट स्टेबल होने लायक होगी, जो कि आपके मेडिटेशन में हेल्पफुल होगी। आप डायरेक्ट अगर मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपकी थॉट, जाहिर सी बात है, फ्यूचर एंड पास्ट की जाने की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होगी, क्योंकि आपने अभी ब्रेथ पे ही कंट्रोल लेना शुरू नहीं किया है। तो जब तक ब्रेथ पे ही कंट्रोल लेना शुरू नहीं कर पाएंगे, तब तक माइंडफुलनेस में, मेडिटेशन में, नेक्स्ट प्रोसेस में माइट भी आपका प्रोसेस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले 14 डेज, एट लीस्ट मिनिमम 14 दिन ब्रीदिंग को दें, ब्रेथ वर्क करें, बेसिक ब्रेथ वर्क करें, उसके बाद मेडिटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि वो ब्रीदिंग से आप अपनी अवेयरनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं 14 डेज, तो ऑटोमेटिकली आप अपने फोकस को, अपनी स्टेबिलिटी को और अपनी अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद माइंडफुलनेस में जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तो मेडिटेशन में वो फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन की थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और क्वालिटी हाई हो जाएगी
1: 100%।
0: जी बिल्कुल। पटना से रीता का फोन मैसेज आया है, वो लिखती है कि ब्रेथ वर्क करते हुए, सांस की टेक्निक्स पर काम करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: ब्रेथ वर्क करते हुए सबसे पहले ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि हम एम्प्टी स्टमक हो, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े लूज होने चाहिए जब हम ब्रेथ वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव पोजीशन में बॉडी को नहीं रखना चाहिए उस टाइम पे। अपने आप को सारी थॉट्स के साथ ब्रेथ वर्क शुरू करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करिए, अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है, और प्रेजेंट में आइए। अब ब्रेथ वर्क जब आपको करना है तो ब्रेथ वर्क के वक्त फोकस करिए सबसे पहले कि आपका एक टास्क नहीं है, इसको फील करना है, इसको महसूस करना है। आपको अपने आप को महसूस करना है, उस समय को महसूस करना है, क्योंकि जब एक इंसान एक थेरेपी, ब्रेथ वर्क हो, मेडिटेशन हो, अगर टास्क की तरह करना शुरू कर देता है ना, तो वो एक ऑफिस टास्क की तरह बन जाता है, उसको वो इंजॉय नहीं कर सकता है। जिस तरीके से जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम डेस्टिनेशन में पहुँचने की बजाय हम जो रास्ता होता है ना उसको इंजॉय करते हैं ना, तो वो ट्रैवल कंप्लीट इंजॉय कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसको टास्क की तरह ना लेके उसको फील करें, महसूस करें, और जिस तरीके से हो रहा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को फील कर पा रहे हैं ना उस प्रेजेंट में, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रेथ हमारी है, सांसें हमारी है, ज़िंदगी हमारी है।
0: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है अमित का, वो कहते हैं कि वो बैंक में जॉब करते हैं और काम जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, दबाव रहता है काम का, ऐसे में ब्रीथिंग टेक्निक्स को अपनाकर कैसे ऑफिस में अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि जो दूसरे लोगों की नेगेटिविटी होती है वो अगर हमारे पास आ भी रही है तो वो हमें कुछ इफेक्ट ना करे, बल्कि हम अपना काम अच्छे तरीके से करते चले जाएं।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और वैसे भी बैंक में काम करना मतलब और ज़्यादा स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस वैसे हर काम में हो जाता है, लेकिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और ऐसे में उनको सबसे इम्पॉर्टेंट है जब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी ब्रीदिंग में टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं अपनी, या कोई बेसिक टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जीज को, आप पूरे दिन लोगों से कनेक्टेड हैं, आप पब्लिक डीलिंग के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी को भी चैनलाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना उस बैंक में मनी करेंसी को चैनलाइज करना है, राइट? तो रात में आके, शाम को आके, घर आके या अर्ली मॉर्निंग में अपनी ब्रीदिंग को और एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने प्रेजेंट में आना उस टाइम पे। आपके जो भी प्रोफाइल है, जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी चैलेंज और स्ट्रेस है, उन सभी से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और आपकी एनर्जी आपकी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, लेकिन जब आप ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं करती है, एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर लेती है दैट मोमेंट।
0: जी बिल्कुल। ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन बोरिंग लगता है तो इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? गोलू का मैसेज है पटना से।
1: वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये जाहिर सी बात है ये बहुत कॉमन एक चैलेंज हो चुका है, क्योंकि आज के डेट में देखिए लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हम लोग एडवांसमेंट में जी रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर जी रहे हैं, एआई की लाइफ में जी रहे हैं, और यहाँ पे पेशेंस की कमी बहुत हो गई है आज के डेट में। तो ब्रीदिंग और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इवन कम्प्लीटली मैं बोलूँगा, ये कैसा प्रोसेस है जो पेशेंस डिमांड करता है आपसे, सब्र।
0: बिल्कुल
1: सब्र। तो जब आपके पास सब्र होगा तब आप इस पूरे मेथड को एंजॉय कर सकते हैं। और बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि आजकल पेशेंस कम हो गए हैं, आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी फास्ट तेजी से हमें चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी हैं, फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी ब्रेथ हमारी है
0: जी,
1: हमारी लाइफ हमारी है, इसमें थोड़ा सा

0: स्लो रहना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को फील कर सकें
1: जी. प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट. इसी के साथ इम्तियाज मोहम्मद का न्यू दिल्ली से मैसेज आया है. उनका जो मैसेज मुझे लग रहा है वो कुछ इस तरीके से कहना चाहते हैं कि कई बार उन्हें लगता है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा फील हो रहा हो और हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए तो उस बीच में क्या करना चाहिए, ब्रीथ को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए उस टाइम पे.
0: देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस, कोई हिस्ट्री तो नहीं है आपकी या आपका कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन जो हो सकता है, डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड है. बट स्टिल मैं यही बोलूँगा एज अ लेमैन कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगती है या एकदम लगता है आपको ऑक्सीजन नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप सबसे पहले नंगे पाँव ऑब्वियसली ज़मीन पे खड़े रहें और अपने काफ्स को थोड़ा सा पंजों पे मूवमेंट करें. क्योंकि काफ्स मूवमेंट पंजों से जब आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे आपके हार्ट बीट पे और अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा और आप टेक्निकली बेटर फील करना शुरू करेंगे. आई एम नॉट श्योर आपकी मेडिकल कंडीशन उस टाइम पे कैसी है और वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, लेकिन बींग ए लेमैन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है तो आप इमीडिएटली एटलीस्ट अपने आप को ज़मीन से जोड़िए और काफ्स मूवमेंट करिए.
1: जी बिल्कुल. एक और मैसेज आया, वो कहते हैं कि कुछ और टेक्निक्स बताइए ब्रीथ वर्क की जिससे कि घर में आसानी से उन्हें किया जा सके.
0: घर में आसानी से ब्रेथ वर्क करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें, बॉडी को नॉर्मल रखें. नोज से इनहेल, नोज से एक्सहेल, जैसा मैंने बोला 20 टाइम्स के 2-3 राउंड्स, जैसे आपकी कैपेसिटी है, बॉडी का स्टेमिना है, उस बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड राउंड आप है, अगर आपकी एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल फील कर रही है, आप माउथ से इनहेल, माउथ से एक्सहेल भी कर सकते हैं, और वो भी आप उसके 2 राउंड्स कर सकते हैं स्लोली स्लोली. डीप इनहेल फ्रॉम माउथ एंड डीप एक्सहेल फ्रॉम माउथ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कंप्लीट लंग्स, योर हार्ट एंड एवरीथिंग. सो इसमें आप और पावरफुल और फील करते हैं, एंटायर डे विल बी कंप्लीट प्रोडक्टिव.
1: ओके, दैट्स वंडरफुल. और अब वक्त कह रहा है कि चलना होगा, तो चलते चलते आप लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही लिसनर्स को कहना चाहूँगा, सबसे पहले आज ये शो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, और मेरा एक ही मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत सुंदर है, इसको हमें अपनी सांसों के साथ जीना है. सांसों के साथ जब हम ज़िंदगी को जिएंगे तो हम इसे महसूस कर पाएंगे. लाइफ को महसूस करिए, एक ही ज़िंदगी मिलती है, खूबसूरत है, सांसें भी बहुत खूबसूरत हैं. तो स्ट्रेस को साइड रख के सांस हमारी अपनी है, महसूस करिए.
1: जी बिल्कुल, सांस खूबसूरत है, सांस पावरफुल है, और आप इन्हें सही तरीके से लेकर, सांसों को कंट्रोल करते हुए सही तरीके से लेकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. आज हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम टॉपिक लेकर आए थे द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ. हमारे साथ एक्सपर्ट रहे अर्जुन गौर, वेलनेस एक्सपर्ट आप रहे, और इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा. अगला प्रोग्राम आशियाना आपके साथ रहेंगे स्वाति गुप्ता.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। आज का दिन कुछ अलग सा ही है ना, धूप छांव का खेल जो है सुबह से हम लोगों ने देखा है, और बिल्कुल इसी तरह का धूप छांव का खेल हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी अक्सर जो है वो देखते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में भी जो है ना, कभी कभी सनी डेज़ होते हैं, चमकीले दिन होते हैं, तो कभी कभी जो है ना बारिश की ठंडक भी होती है लेकिन घिरे हुए बादल भी होते हैं। तो इसी तरह से बदलते हुए मौसम और बदलते हुए रिश्ते जिंदगी का एक हिस्सा है। और आज इसी तरह के बदलते हुए मौसम के दिन सोचा कि कुछ इसी के ऊपर बात की जाए, द चेंजिंग सीजन्स ऑफ मैरिड लाइफ, इसी के ऊपर बात करेंगे हम आज। हमारे आज के इस प्रोग्राम में नाम है इसका हम कदम, सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। ये एक घंटा हम और आप मिलकर चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, और बात करते हैं उस सफ़र की जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट सफ़र होता है, आपके सबसे करीबी हम सफ़र के साथ जी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में हम करते हैं बात हमारे इस प्रोग्राम में। और भाई शादी का लड्डू जो है ना, ये वाली कहावत तो फेमस है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन असलियत ये है कि ये लड्डू हर महीने हर साल अपना स्वाद बदलता रहता है। उन्होंने खाया है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो खाने की सोच रहे हैं उन्हें भी जो है ना ये सब चीज़ें एंटिसिपेट करके चलना ही चाहिए। जैसे मौसम होता है ना, मैंने बताया था आपको कि किस तरह से धूप और छांव का खेल जो है सुबह से चल रहा है, कभी कभी रिमझिम बारिश होती है, कभी कड़कती धूप होती है। तो इसी तरह से अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी के सीजन्स की बात करें ना, मौसमों की बात करें, तो उसमें भी देखा जाए तो एक तरह से चार खूबसूरत और खट्टे मीठे मौसमों में आप ना इसको डिवाइड कर सकते हैं। और वही चार मौसम जो है ना आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम इसका हम कदम सुन रहे हैं, इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए मधुश्री और एआर रहमान की आवाज़ में बहुत ही अमेजिंग सा गाना फ्रॉम द मूवी युवा। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

आई विल ऑलवेज लव यू ऑल माई लाइफ, कितनी खूबसूरत सी बात है ना. कोई कहता है जब आपके लिए तो कितनी खुशी होती है दिल को, कितना सुकून आता है. एनीवे, हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जिंदगी के मौसमों के बारे में, और शुरुआत तो जी बाहर के मौसम से ही करनी पड़ेगी ना. और यही तो होता है वो हनीमून पीरियड, जब इसी तरह के गाने जो है ना वो आपको पसंद आते हैं और इसी तरह की बातें जो है वो आप करना पसंद करते हैं. कहते हैं ना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए. तो सपने देखने का, फैंटेसी का जो दौर होता है ना, वो ही तो होता है इस खूबसूरत से सफ़र का पहला मौसम, वो पहली राह, वो पहला सफ़र जो आप शुरू करते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है इसकी. एक बार फिर से याद दिला दूँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ. तो जी, रोमांस के ओवरडोज के बाहर का जो ये मौसम होता है, इसमें हम लोगों को जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है हमारे लिए. हर चीज़ खूबसूरत होती है, हर चीज़ जो है ना एक कहना चाहिए कि एक गुलाबी चश्मे से जो है वो हम देखना चाहते हैं. वैसे देखा जाए तो ऐसे टाइम में ना जो हमारी कमियां भी होती हैं ना, वो भी हमारे पार्टनर को बड़ी अच्छी लगती हैं. मतलब कितना खूबसूरत पीरियड होता है ये. बट एनीवेज, ये वो समय होता है जब रोज़ाना जो है ना शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आपको यो एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना जो है वो याद रहता है. इस खूबसूरत से मौसम से होती है शुरुआत इस बहुत ही शानदार सफ़र की. एंड वेल, खूबसूरत शुरुआत तो होनी ही चाहिए. ये सफ़र ही आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सफ़र होता है. बात कर रहे हैं हम बदलते हुए के बारे में, और दिन भर में जहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वहाँ पे ये रिलेशनशिप भी हर दिन नए नए कहना चाहिए कि चेंजेस से गुजरता है. और हर पल जो बीतता है ना, वो इस सफ़र में और ज़्यादा चीज़ें जोड़ता हुआ चला जाता है, इसे बदलता हुआ चला जाता है. पता ही नहीं चलता कब इतना वक्त बीत जाता है और कब इतने चेंजेस आ जाते हैं कि आप नोटिस करना भी छोड़ देते हैं. लेकिन फ़िलहाल मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग सा गाना. और हमारे इस गुलाबी सफ़र की से जो ये शुरुआत होती है ना, ये जो हनीमून पीरियड होता है, उसी के नाम मैं अगला गाना कर रही हूँ. आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, बात हो रही है शादी के बदलते हुए सीजन्स के बारे में.

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
6: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम हम कदम लेके। और हम कदम में जब मैंने कहा कि आज हम बदलते हुए सीजन्स के बारे में बात करेंगे, तो आपके इस बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के बदलते हुए जो फेजेस होते हैं ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई पहला फेज तो मैंने आपको बता दिया, गुलाबी चश्मे वाला, और जिसे हम सबसे बेहतरीन फेज मानते हैं हमारे रिलेशनशिप का वो। लेकिन उसके बाद टाइम आ जाता है जी रियलिटी चेक का, सपनों से बाहर निकल के आना पड़ता है, यथार्थ के धरातल पे उतरना ही पड़ता है। इसी को कहते हैं रियलिटी चेक फेज, जब कड़कती धूप और उमस का मौसम जिसको हम कहते हैं ना, वो आने लगता है। वैसे तो ये जो हनीमून फेज होता है कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का होता है, कुछ महीनों का होता है, लेकिन अगर लंबा चले तो 2 से 5 साल तक जो है ना ये चल जाता है। लेकिन इतना वक्त बीतते बीतते इस फेज के गुजरते गुजरते ये बाहर का मौसम जो है ना पैकअप कर लेता है। इसकी भी ना ड्यूरेशन शॉर्ट लिव्ड हो गई है, बिल्कुल हमारे असली बसंत के मौसम की तरह से। लेकिन एनीवेज अब एंट्री हो रही है जी तपती दोपहरी जैसी हकीकत की। और अब होता क्या है ना कि जो प्यार वाले नाम आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो शोना बाबू वाले जो होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और सीधे सीधे जो है ना आप एक दूसरे को जो है दूसरे नामों से एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। ये वाले नाम जो है साइड में रख देते हैं, कब आपकी ज़ुबान से उतर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। छोटे छोटे मुद्दों पे जो है लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं, इनफैक्ट बहस जिसको हम कह सकते हैं। भाई गीला तौलिया बिस्तर पे रख दिया, टूथपेस्ट बीच में से क्यों दबाए, तो बहुत ही कॉमन से मुद्दे हैं और लगभग हर घर में जो है वो होते हैं। संडे का दिन किस तरह से बिताया जाएगा, इस बात पर भी जो है बहस हो जाती है। क्या ना फिल्टर्स हट जाते हैं सारे के सारे। अब आप जो है एक दूसरे को केवल अपना बेस्ट नहीं बल्कि अपना रियलिटी जो है ना वो भी जब आप एक दूसरे का देखना शुरू करते हैं और देना शुरू करते हैं, तो अक्सर यही वो फेज होता है जब आम शिकायत सबसे ज्यादा ही होती है कि पहले मेरी यही बात तो थी जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद थी। वैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शादी का जो 3रा साल होता है ना, उसी समय में सबसे ज्यादा ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं ना वो होते हैं। और उसकी वजह पता है क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप अपने रिलेशनशिप को इतना टाइम दे चुके होते हैं, इतना एफर्ट उसमें डाल चुके होते हैं कि उसके बाद आपको अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, अपने खुद की स्पेस जो है ना उसकी याद आने लग जाती है। और इसीलिए उसी को वापस पाने की कोशिश में ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना वो होती हैं। और इस तपती दोपहरी में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये धूप जो है ना आपके रिलेशनशिप को जला सकती है। और वो छाता जो है वो है आपकी आपसी समझ का, प्यार का, उस भरोसे का जो कि अब तक आके आपने बनाया होता है। और उसी के नाम कर रही हूँ मैं अपना अगला गाना, इसी फेज के नाम में। मैं बहुत ही एक खूबसूरत सा गाना है फ्रॉम द मूवी जख्म जो मैं प्ले करने जा रही हूँ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। प्रोग्राम हम कदम सुन रहे हैं आप मेरे साथ, और अगली आवाज़ अलका याग्निक की।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

गर्मी का मौसम जो है वो आ चुका था, और उस गर्मी के मौसम में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस भी आने शुरू हो गया था। अब आता है जी तीसरा वाला मौसम। तो ये तीसरा मौसम क्या होता है? मेरे हिसाब से इसको हम पतझड़ का मौसम कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बड़ी ना रूटीन सी ज़िंदगी हो जाती है, पुरानी चीज़ें जो हैं उसकी परिभाषाएँ बदलने लग जाती हैं। कपल्स जो हैं उनके लिए भी मायने जो हैं इस रिश्ते के बहुत हद तक बदल चुके होते हैं। ये वो फेज़ है जिसमें आपकी फैमिली बढ़ती है, आपकी ज़िंदगी में बच्चों की एंट्री होती है, और तकरीबन शादी के 5 से 15 साल के बीच का जो फेज़ होता है ना, उसको आप चाहें तो इसमें गिन सकते हैं। इस फेज़ में ज़िंदगी में छोटे छोटे आपके मेहमान भी आ चुके हैं, रोमांस की जगह जो है वो मैनेजमेंट ने ले चुकी है, क्योंकि अब आप पार्टनर्स हैं, अब आप कलीग्स हैं जी, एक कपल से बढ़कर, क्योंकि आप अपना घर परिवार प्राइवेट लिमिटेड जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत स्मूथली आप उसको चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अब आप एक तरह से दो मैनेजर्स की तरह से हो जाते हैं, क्योंकि घर का सामान आ गया है, स्कूल की फ़ीस भर दी गई है, वैक्सीनेशन करवाया नहीं करवाया, ज़िंदगी की ये सारी चीज़ों की मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को कायदे से रखना, करीने से चलाना, टाइम टेबल बनाना, स्केड्यूल्स बनाना, ये सब चीज़ें जो है ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। अब इस

मौसम में रोमांस का मतलब कैंडल लाइट डिनर नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसे में इस फेज में क्या होता है ना कि अगर हस्बैंड जो है थोड़ी देर के लिए बच्चों को खिलाने की, सुलाने की या पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले और संडे को पत्नी जो है पति को देर तक सोने दे, तो एक तरह से ना उसी को रोमांस मान लिया जाता है। परिभाषाएं बदल जाती हैं, अब बातें कही नहीं जाती हैं, केवल समझी जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय में एक दूसरे के लिए छोड़िए अपने लिए भी वक्त जो है ना वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों

नहीं पसंद आता है जितना कि मुझे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। और हाँ, जहाँ तक पसंद की बात है ना, सबकी अपनी अपनी होती है और सबको अपनी अपनी पसंद का अधिकार भी होता है। बस इतनी सी ही तो बात है ना जो हमें समझनी होती है एक दूसरे के लिए। फिलहाल आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. अनकही मूवी से अभी आपने सुना एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना केके की आवाज़ में. मैं हूँ स्वाति, आप सभी के साथ बात कर रहे हैं हम आज हमारे इस हम कदम प्रोग्राम में शादी के बदलते हुए सीजन्स के ऊपर. शुरुआत हुई थी इश्क से पहुँची बात इंडिविजुअलिटी पे, उसके बाद बात आ गई एक दूसरे कि इनफैक्ट अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से एक फैमिली में कन्वर्ट कर देना, उसमें खो देने पे. और अब हम पहुंचे हैं आकर उस चौथे मौसम पे जिसे हम गुलाबी ठंड का मौसम कह सकते हैं, द गोल्डन एंड द मैच्योर फेस. जी हाँ, सुनहरी बालों का और मेंटल मैच्योरिटी का जो एक सीज़न होता है ना, ये वो सीज़न है जब एक बार फिर से घर में जो है ना वही दो लोग बचते हैं जिन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की थी. जब आपकी शादी को करीब 20 से 25 साल हो चुके होते हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने करियर में जो है व्यस्त हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुके हैं, तब ये जो फेज़ आता है ज़िंदगी का, इसमें क्या है ना, ये बात शुरुआत में होती है कि भाई आज चाय कौन बनाएगा से शुरू होता है और पहुंचते पहुंचते बात इस चौथे मौसम में इस बात पर आ जाती है कि अच्छा चाय पीनी है, ठहरो मैं बनाता हूँ या मैं बनाती हूँ. जी हाँ, इस बात पर आ जाती है जब आप अपनी कमियों पे और अच्छाइयों पे बहस करना छोड़ चुके हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह से अपना चुके हैं. इसीलिए लड़ने के लिए ना तो आपके पास कोई मुद्दा बचता है और देखा जाए तो कोई एनर्जी भी नहीं बचती है, क्योंकि आप एक दूसरे को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं. ऐसे में जब छोटी से छोटी बात होती है ना, वो बिना कहे आप समझने लग जाते हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस को पूरा करने लग जाते हैं और आपको ये भी पता होता है कि किस बात पर आपके हमसफर का कैसा रिएक्शन आएगा. तो यही वो फेज़ होता है जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है, जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, बालों में सफेदी आ चुकी है और वजन थोड़े थोड़े बढ़ चुके हैं और एक दूसरे के साथ में अब बात पहुंच चुकी है दोस्ती पर. जी, उसी दोस्ती पर हम पहुंच जाते हैं अंत में, जहां पर ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत जो है ना वो नहीं पड़ती है. शादी के बदलते हुए सीजन्स में ये चौथा सीजन जो है, अक्सर हम इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं और वाकई में ये पीरियड आते आते जो होता है ना, ये समय आते आते आप एक बहुत बड़ा सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं अपने उस हम सफ़र के साथ जिसका जिक्र करते हैं हम हमारे इस प्रोग्राम में. नाम है इसका हम कदम सुन रहे से आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे. और ऐसी ही सक्सेसफुल कहानियों के नाम पर, ऐसी ही सक्सेसफुल जर्नीस को डेडिकेट कर रही हूँ मैं अपना अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में. फ्रॉम द मूवी गब्बर इज़ बैक मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए. आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो.

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अरिजीत सिंह और पलक मुचल की आवाज़ में अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी गब्बर इज बैक, बहुत ही अमेजिंग सा गाना। और कहानी जो है ना, कहानी और सफ़र दोनों जो हैं यहीं पर बस ख़त्म होना चाहते हैं, क्योंकि समय जो है ना प्रोग्राम का वो बहुत ही थोड़ा सा बचा है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बदलते हुए मौसम होते हैं, लेकिन शादी का कोई भी मौसम जो है ना, किसी भी रिश्ते का इनफैक्ट कहना चाहिए कि कोई भी मौसम जो है वो परमानेंट नहीं होता है। अगर आज धूप है तो कल बारिश भी होगी और फिर सुहानी ठंड भी आती ही है। इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उनमें कुछ चीज़ें जो शामिल है वो है ऑब्वियसली बहुत सारा पेशेंस जो है वो रखना ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ चीज़ों को ना एक लाइट हार्टेड अंदाज में देखने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाएं तो फिर हर चीज़ एक बोझ सी बन जाती है ना। और हाँ, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना और अपनी ज़िंदगी में उसके होने की कहना चाहिए कि उसका शुक्र मनाते रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फ़िलहाल प्रोग्राम जो है हमारा ख़त्म होने को है, तो सफ़र की मौसमों की बात बस यहीं तक। चलते चलते आपको बता दूं कि अगला प्रोग्राम जो है वो कौन सा सुनने वाले हैं आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। अगला प्रोग्राम जो है वो आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो आपके स्वास्थ्य की से जुड़ी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है हमारा प्रोग्राम, नाम है इसका रेडियो डॉक्टर। इसे आप सुनेंगे 3 से 4 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज का टॉपिक है कि समर्स में यानी कि गर्मियों में आप अपनी स्किन की केयर कैसे करें, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट होंगी वो हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल से। इस प्रोग्राम में आप ज़रूर सुनिए कि गर्मियों में आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: स्वागत है आप सभी का विशेष फोन इन रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में है स्किन से जुड़ी समस्याएं। जी हाँ, गर्मी के मौसम में स्किन से जुड़ी अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। तेज धूप, पसीना और अन्य कारणों से स्किन से जुड़ी समस्या जैसे सनबर्न, एक्ने, इन्फेक्शन आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो आज रेडियो डॉक्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन केयर इन समर्स। हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल, और आपके एंकर मैं सुजाता रथ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम पुरी का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। मैम वेलकम।
3: नमस्ते जी।
2: तो मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स, और मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी में स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खासकर के पसीना बहने के कारण, तेज धूप के कारण, या बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि गर्मी में होने वाली आम स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मैम
3: देखिए सुजाता जी, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो इस टाइम पर पसीना बहुत आता है, और पसीने के कारण कई चमड़ी की इन्फेक्शन, स्किन की इन्फेक्शन हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें फोड़े, फुंसियाँ हो जाते हैं, और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बॉयल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है, जिसे हम दाद या रिंग वर्म इन्फेक्शंस कहते हैं, ये भी डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, और अब बारिशें शुरू हो जाएंगी जिसमें हवा में नमी ज़्यादा हो जाएगी, उसके कारण क्या होता है कि पसीना सूखता नहीं है और घमोरियाँ जिनको हम प्रिकली हीट कहते हैं वो हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं जिन्हें हम एक्ने कहते हैं। कुछ चीज़ें जैसे पसीने में बदबू आती है, कई बार पसीना जो होता है रंगीन होता है जो कपड़ों को सोक कर लेता है। धूप में जाने से भी कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जिनको धूप में बाहर जाते हैं काम करना पड़ता है उसके कारण भी कई बीमारियां धूप के कारण हो जाती हैं।
2: आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम गिनाए, बहुत सारे इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स के नाम गिनाए, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, और हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्किन की और खास करके इस मौसम में, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। और हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर लौटेंगे डॉक्टर पूनम पुरी जी के पास।

0: तो रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ द जंक हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर पुरी, एक मैसेज से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक से है ये, विजयपुरा कर्नाटक से सागर मखीजा। इन्होंने लिखा है, हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ स्किन ड्यूरिंग समर्स सो दैट वी डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, सनबर्न एक्सेट्रा।
1: सागर मखीजा जी, आपने पूछा है कि केयर ऑफ स्किन समर्स में कैसे करें जिससे एक्ने ना हो और सनबर्न नहीं हो। देखिए, सनबर्न तभी होगा जब आप धूप में जाएंगे। धूप में जाने से जो धूप की रेज हैं वो मैक्सिमम 7 to 3 o'clock तक होती हैं। तो हम सब पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें 10 to 3 तक धूप में बाहर जाना। और जो भी काम अगर आप अपना काम निपटा सकते हैं तो वो 10 बजे से पहले या 3 बजे के बाद आप करें, ताकि आपको सनबर्न और सन रिलेटेड स्किन डिजीजेस ना हों।

0: दूसरा है कि आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को सन से एलर्जी होती है, और जब सनस्क्रीन लगाना है तो अच्छी मात्रा में लगाएं और आधा घंटा धूप में निकलने से पहले लगाएं, तभी इसका इफेक्ट होता है। और हर 2 से 3 घंटे दोबारा रीअप्लाई करें, क्योंकि पसीना आता है और पसीने से जो है सनस्क्रीन है वो फ्लो कर जाता है। दूसरा आपने पूछा एक्ने के लिए, देखिए क्या होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो जो ह्यूमिड वेदर में और में स्वेलिंग हो जाती है और उसके कारण एक्ने बढ़ जाता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 से 3 बार अच्छी तरह फेस को धोएं और कोई भी ग्रीजी चीज़ या कॉस्मेटिक्स जितना पॉसिबल होता है उसको अवॉइड करें।
1: एक कॉल है मैम। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
2: मैं एजाज अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ।
1: हाँ बोलिए अहमद साहब, क्या पूछना चाहते हैं?
2: जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पसीना जब निकलता है तो उसके बाद में पैरों की उंगलियों में कुछ खुजलाहट पैदा हो जाती है
1: जी,
2: और ये रहती है करीब करीब 15-20 मिनट बाद, उसके बाद खत्म हो जाती है।
0: अहमद इजाज जी देखिए, पसीना तो आएगा ही है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है, तो यही है कि आप अपने पाँव को धोकर सुखा कर रखिए, जुराब वगैरह ना जितना हो सकता है ना पहनिए, और जूते भी मत पहनिए। अगर आपको जुराब पहनना है और शूज पहना है तो कुछ घंटे के लिए पहनिए, और सूती जुराब पहनिए और रोज के रोज धोइए। और कुछ पाउडर्स आते हैं जो पसीना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे चूस लेते हैं, तो उसकी जो है आपको राय एक त्वचा रोगी विशेषज्ञ से लेनी पड़ेगी, ताकि अगर पसीना आता है तो आप वो अप्लाई करें, ताकि आपका पसीना ज्यादा ना आए और आपको तकलीफ ना हो।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मैम एक और कॉल है। हेलो
2: हेलो नमस्कार।
1: हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैडम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: हाँ पंजाब से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
3: पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ।
1: हाँ पुरुषोत्तम जी क्या समस्या आपको?
3: मैडम मैं 70 इयर्स लगभग हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे ना पीछे गर्दन के पीछे हो जाते हैं, धूप से फिंसने जैसे।
1: अच्छा गर्दन के पीछे मैम छिल छिल सा जाता है, स्पॉट से हो जाते हैं जब बाहर निकलते हैं।
0: देखिए पुरुषोत्तम जी आपकी उम्र 70 साल जैसे आपने बताया, और आप धूप में निकलते हैं, मुझे लगता है पसीने के कारण आपको ज्यादा पसीना आता है और आपकी घमोरियां हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो यही बताना चाहते हैं कि सूती कपड़े पहनिए और गर्मी से जितना हो सकता है बचिए, पर फिर भी क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और घमोरियां हो जाती हैं, तो इसमें कुछ सूदिंग लोशंस होते हैं जिन्हें हम कैलमिन लोशन कहते हैं, जिनके अंदर सूदिंग केमिकल्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं।
1: तो मैम ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, रैशेस हो जाते हैं
0: जी,
1: और खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, तो गर्मियों में यही ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है मैम। और घिमोरियां जो आपने कहा कि, तो मैम घिमोरियों का क्या वैसे इलाज है? अक्सर हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि गर्मी के सीजन में घिमोरियां हो जाती है।
0: देखिए घमोरियां इसलिए होती हैं कि पसीना बहुत आता है और जो पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, स्वेट डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो पसीना कम आने देना चाहिए, आप कोई इतनी ऐसे एक्टिविटीज मत करिए, जिम मत जाइए, बहुत जिमिंग नहीं करिए, बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, ताकि पसीना ज़्यादा ना आए। सूती कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, त्वचा को सूखा रखिए, और कुछ जैसे मैंने बताया सूदिंग लोशंस होते हैं वो आप लगा सकते हैं
1: जी मैम। और मैम आपने एक बात कही कि जो डायबिटिक हैं उनको गर्मी के मौसम में स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: देखिए सबसे पहले तो है कि डायबिटिक मरीज जो होते हैं, स्पेशली जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, उनको अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ त्वचा नहीं, सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। आपकी आईज में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके हार्ट में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके गुर्दों में अफेक्ट पड़ सकता है, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करिए। और दूसरा जो इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फोड़े फुंसी होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेकर उसके अकॉर्डिंगली इलाज कराइए।
1: ओके मैम, तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनमपुरी मैम के साथ, जो आज हमारे साथ हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनमपुरी, और टॉपिक है स्किन केयर एंड

समझ। और अब मैम की पसंद का एक गाना सुनेंगे, और खास करके फरमाइश आई कि के की आवाज में आज हम गीत सुने, तो ये गाना मैम मैं प्ले कर रही हूँ के की आवाज में।

0: बहुत ही खूबसूरत ये गीत हमने सुना केके की आवाज में, और मैम के खास करके आज फरमाइश है कि हम केके की आवाज में ही गाने सुने। तो डॉक्टर मैम पूनम पुरी जी हमारे साथ हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है ऑफ द जंग हॉस्पिटल में, और आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। तो मैम, आपने बताया कि समर्स में जो स्किन की आम समस्याएं होती हैं उनमें है एक्ने, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस एंड घमौरियाँ, एलर्जी कई तरह की। तो मैम, आपने बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की बात कही, तो हमें जानना चाहेंगे कि ये जो इन्फेक्शंस हैं इनके लक्षण क्या हैं।
1: जी देखिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स होते हैं वो गर्मी में ही होते हैं, अक्सर डायबिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। इनमें क्या होता है कि फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। शुरू में ये थोड़े से स्किन से ज़्यादा रेस्ट होते हैं, फिर

0: और बड़े हो जाते हैं, इनमें पस पड़ जाता है और अगर इलाज ना किया जाए तो ये थोड़ा भयानक रूप ले लेते हैं। कई बार इनमें ज़्यादा पस पड़ जाती है और एप्सिस बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फोड़ों का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का हमें यूज़ करना पड़ता है और इन एंटीबायोटिक्स को हमें 7 से 10 दिन तक देना पड़ता है। और इसके अलावा ट्यूब्स होती हैं जो हम लगाते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल ट्यूब्स होती हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी स्किन को साफ रखिए, रोज़ धोइए, पसीना कम आने दीजिए और सूती कपड़े पहनिए। और जो फंगल इन्फेक्शंस जिसके बारे में आपने बोला, वो अक्सर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जिन्हें हम रिंगवर्म इन्फेक्शंस कहते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ रिंग लाइक लीजन्स हो जाती हैं, पैचेस हो जाते हैं, और ये जो है कहीं भी त्वचा में होते हैं, कई बार सिर पर होते हैं, कई बार शरीर पर अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार नाखून भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इनसे बहुत खुजली होती है। और इनके लिए हमें एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, गोलियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। पर मैं ये ज़रूर आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप बिना एक एक्सपर्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से, इधर उधर या मीडिया के थ्रू या किताबों से या एडवर्टिजमेंट से ऐसे ट्यूब्स ना लगाइए। कोई कोई लोशन लगाया आता है, कोई कोई दवाई लगा देता है, और कई लोग स्टेरॉइड ट्यूब्स लगा देते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन फ्लेयर हो जाती हैं और वो और भयानक रूप ले लेती हैं और वो कई कई साल तक इलाज करना मुश्किल हो जाता है।
1: जी जी, कॉलर है मैम। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून
2: डॉक्टर साहब को भी। गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी
2: डॉक्टर साहब, मेरे को ना जब भी धूप में निकलता हूँ, एक तो फेस पे और हाथों पे रेडिश हो जाता है, दूसरा आंखों में तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बहुत गर्म हो गई है, गॉगल्स ना पहनो तो देख ही नहीं सकता। दूसरा अभी आपने बताया खादी के कपड़े पहनो, तो लाइट कलर के कपड़े पहनने से भी फायदा होता है क्या?
0: जी, जैसे आपने कहा कि पहले तो आपने कहा कि फेस और हाथ पे दाने हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण हो सकते हैं, धूप से एलर्जी हो सकती है। और अगर ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो कुछ घंटे होते हैं और स्किन से थोड़े रेस्ट होते हैं, तो इनको हम छपाकी, धदोड़े या अर्टिकेरिया भी कहते हैं। तो आप धूप से बचिए, 10 से 3 बजे तक धूप में जाना अवॉइड करिए, हो सके तो छाता लेकर जाइए। और अगर ये दाने होते हैं तो आप इन पर सूदिंग लोशंस लगा सकते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय से ले सकते हैं। कपड़े बेशक खादी पहनिए या सूती के कपड़े पहनिए, लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, ताकि जो आपका पसीना आता है वो आराम से इवेपोरेट हो जाए। और सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे हैं, नाइलॉन है, सिल्क है, उन्हें इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ना पहनिए। लिनन जो होता है या खादी जो होता है वो ठंडा देता है, तो ठंडे कपड़े पहनिए और लाइट कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
2: मैडम एक क्वेश्चन और छोटा सा
0: जी,
2: जो इन दिनों ठंडा पीने से जैसे ठंडाई होती है, लस्सी होती है, उससे भी फायदा होता है कुछ क्या?
0: जी, क्योंकि देखिए पसीना बहुत आता है, तो पसीने के साथ हमारा पानी जो होता है, शरीर का पानी भी चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में चाहे छाछ है, चाहे ठंडाई है, चाहे नींबू पानी है, ज़रूर पीजिए, ताकि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड ना रहे। जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है उसके ये लक्षण होते हैं कि त्वचा जो है झुलस सी जाती है, डल सी हो जाती है, और आपके पाँव और हाथों में एनर्जी नहीं रहती है। तो हर 2-3 घंटे बाद ना केवल पानी पीजिए, जैसे कई फ्रूट्स होते हैं, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, इनमें बहुत पानी का कंटेंट होता है, वो जरूर खाइए।
2: थैंक यू मैम।
1: व्हाट्सएप मैसेज है मैम, अमरजीत फ्रॉम चंडीगढ़, इन्होंने लिखा है कि आई एम 58 इयर्स ओल्ड एंड नहाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इचिंग की प्रॉब्लम होती है मैम।
0: जी अमरजीत जी, जैसे आपने बोला 50 साल के हैं और जब आप नहाते हैं तो आपको इचिंग होती है, हो सकता है कि आपको एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया हो, जिसे कहते हैं कि पानी के साथ अर्टिकेरिया होता है, तो इसमें भी आपको, या सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी कई बार अर्टिकेरिया होता है, जो जिसे कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं, तो इसमें आपको त्वचा विशेषज्ञ से

0: राय लेना पड़ेगा और जो वो दवाइयां सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, उनका आपको यूज करना पड़ेगा
1: जी। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
2: हाँ जी सियातारथ मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को प्रणाम।
0: प्रणाम जी।
1: हाँ
2: रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली 27 से।
1: अच्छा,
2: मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों की स्किन पहले से ड्राई होती है उनको रेनी सीजन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको कौन सी क्रीम या ऑइंटमेंट यूज करनी चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, कृपया बताएं।
0: जी देखिए, कई तरह की स्किन होती है, कईयों की नॉर्मल स्किन होती है, कईयों की ऑयली स्किन होती है, कईयों की ड्राई स्किन होती है। तो आपने जैसे बोला कि आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें आपको मॉइस्चराइजर का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और क्योंकि गर्मी है तो हम सजेस्ट करते हैं आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास राय लीजिए, और ग्लिसरीन कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो आप बराबर त्वचा में लगा सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में आपकी त्वचा में परेशानी होती है, तो कई मॉइस्चराइजर्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
3: जी मैम नमस्कार, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ मोहम्मद सलमान।
1: हाँ नमस्ते जी, बताइए।
3: मैं ये बोल रहा हूँ मैम, अभी फिलहाल में मेरे जंगासों में दाने हो गए थे, जिन्हें कहते हैं दांत कहते हैं, उन दांतों से थोड़ा सा चरम रोग हो गया था, खाल पतली हो गई।
1: अच्छा,
3: तो मैम ये गर्मी से हुए थे, इनमें कोई सलूशन है इसका आपके पास में, क्या मामला है?
0: मोहम्मद जी देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको दाद हुए थे और वो चमड़ी पतली हो गई, तो मुझे लगता है कि आपने कोई ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल की हैं, आपने ट्यूब्स इस्तेमाल की हैं जिनसे चमड़ी पतली हो गई। चमड़ी इसके कारण पतली नहीं हुई, आपने शायद स्टेरॉयड ट्यूब्स लगाई हैं जिससे चमड़ी एकदम पतली हो गई है और वो स्ट्रेच मार्क्स की तरह होती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर की राय लीजिए, उनको दिखाइए। दूर से कहना मुश्किल है कि आपका क्या इलाज हो सकता है, आप डॉक्टर त्वचा रोग विशेषज्ञ देखकर ही आपको प्रॉपर राय देंगे।
1: जी जी थैंक यू। तो मैम हमने देखा कि आपने जैसा कि बताया कि कभी भी स्किन की जो ट्रीटमेंट है वो स्वयं ना करें
0: जी,
1: क्योंकि बहुत से हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि ये ट्यूब लगा लीजिए, वो ट्यूब लगा लीजिए, और अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि इनिशियली हम केमिस्ट के पास जाते हैं और या किसी ने कहा तो कोई भी ट्यूब लगा लेते हैं और उससे जो क्या है फ्लेयर अप हो जाता है
0: जी।
1: तो इस तरह से हम कभी भी ना करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैम अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या उस कंडीशन में जो स्किन की प्रॉब्लम होती है इज इट ट्रीटेबल?
0: जी वो ठीक हो सकती है, पर जो बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है उससे अगर बहुत ज्यादा टाइम लगे
1: जी,
0: तो कोई फायदा नहीं होता है। तो बीमारी को जल्दी से त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर पकड़ में आए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, प्रॉपर इलाज कराइए।
1: ओके, तो अब मैम की पसंद का एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, और ये भी केके की आवाज में, केके के साथ शिल्पा राव है इस गीत में।
4: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: और आज के विशेष रेडियो डॉक्टर में हमारा जो विषय है वो है स्किन केयर इन समर्स। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं हूं आपके एंकर सुजाता रथ। मैम, एक व्हाट्सएप मैसेज है देवघर से। कुमार अजय लिखते हैं कि मेरा पसीने से कपड़े का रंग जो है वो काला हो जाता है, इसका क्या कारण है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है?
3: जी अजय जी, जैसे आपने बोला आपका पसीना का रंग काला हो जाता है, देखिए इसको हम या तो पसीने में बदबू आती है या पसीने के रंग पीला भी हो जाता है, कई बार लाल भी हो जाता है, कई बार थोड़ा ब्लैकिश टिंच भी आ जाता है। होता क्या है कि इसमें जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स आ जाते हैं और उनके कारण जो पसीना

0: जो नॉर्मल पसीना है उसका रंग नहीं होता, और जब पसीना बाहर होता है कई बार क्या होता है कि हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों के कारण भी वो जो पसीना है कपड़ों में से डाइज निकलती हैं, उससे कारण रंग होता
1: रंग हो
0: है।
1: जाता
0: पर कई बार क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स में भी कुछ पिगमेंट्स हो जाते हैं एबनॉर्मल, उसके कारण भी पसीना काला हो जाता है। तो आप पसीना ज्यादा आता है एक्सिलरी फोल्स में और नीचे की तरफ प्राइवेट पार्ट्स में, तो कोशिश करिए वहां पसीना नहीं आए। और कुछ एंटी परस्पिरेंट लोशंस होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, वो आप लगा सकते हो, जिससे पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एंटी परस्पिरेंट लोशंस का आप स्प्रेज होते हैं, लोशंस होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। और कपड़े भी बदलिए, कॉटन कपड़े पहनिए, तो कुछ एक्सटेंड तक आपको मदद मिलेगा।
1: जी। मलय घोषाल फ्रॉम सिरामपुर वेस्ट बंगाल लिखते हैं, मैम कि कैन यू टेल मी डॉक्टर इज एक्जिमा क्योरेबल, व्हाई इट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक फ्रॉम हैंड टू लेग्स।
0: देखिए, एक्जिमा कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है। कुछ एक्जिमास क्यूरेबल होते हैं और कुछ एक्जिमास, जैसे एंडोजेनस एक्जिमास है, कई बार हमें उसका कॉज पता नहीं चलता, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर वो दोबारा उभर आते हैं तो उसके कारण बार बार हो जाते हैं। बट कुछ तरह के जो एक्जिमास होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हमें किसी एलर्जी है, बिंदी से एलर्जी है, हेयर डाई से एलर्जी है, या रिस्ट वॉच के स्ट्रैप से एलर्जी है, उसको हम क्योर कर सकते हैं।
1: जी। कॉलर ले लेते हैं मैम। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी बोलिए।
2: हाँ नमस्कार मैम। हाँ
1: नमस्कार, बताइए।
2: जी मैम, ऐसे मेरी मदर हैं 74 ईयर्स की, वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो उनको ना वो आप कहते हैं जैसे छपाकी सी निकलती है रेड रेड कलर की, उस पर खारिश होती है, और वो इंसिडर लेती हैं। इंसिडर काफी सालों से ले रही हैं पर अब उनको इफेक्ट नहीं होता उसका।
0: जिससे आपने बोला कि आपके मदर हैं 70 साल की, डायबिटिक पेशेंट हैं,
2: हाँ
0: और
2: जी
0: उनको छपाकी होती है। देखिए, छपाकी कई सालों से लगता है आपकी हिस्ट्री, आपकी बातों से हो रही है, क्योंकि आप इंसिडाल ले रहे हो। इंसिडाल एक अच्छी एंटी एलर्जिक है, पर जब इसका असर नहीं हो रहा तो आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर राय लेना चाहिए। बहुत अच्छी एंटी हिस्टामिनिक्स मार्केट में आ गई हैं जो नॉन सेडेटिंग है, मतलब उनसे नींद नहीं आती है, और वो या तो वो डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर, या वो एंटी हिस्टामिनिक्स को चेंज करेंगे, और कई बार एक या दो एंटी हिस्टामिनिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है ताकि आपकी मदर का छपाकी कंट्रोल में आए।
2: हाँ जी मैम।

0: सोने के कारण है, और इनमें आपको ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है जिससे कारण छपाकी हो रही है वो ब्लॉक हो जाए।
1: हाँ जी ठीक ठीक है मैम, थैंक यू।
2: एक और कॉलर को ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो
3: जी, मेरा नाम क्लिफ्टन अल्मेडा है, मैं गोवा से बात करता हूँ।
2: हाँ जी,
3: मेरा तीन सवाल है। एक सवाल है वो सोराइसिस कैसा होता है, मींस व्हाट इज द कॉज, हाउ इट स्टार्ट्स, देन कैन आई आस्क ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर?
2: नहीं, आई थिंक इट विल बी बेटर यू आस्क ऑल द क्वेश्चंस वन आफ्टर द, फिर वो
3: okay,
0: हाँ जी, जैसे आपने बोला सोरियासिस, देखिए सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में लाल लाल दाने हो जाते हैं, पैचेस, और उनमें सिल्वरी वाइट स्केल्स होता है, और ये काफी क्रॉनिक डिजीज भी बनकर उभर कर आती है। ये सिर पर हो जाती है, सारे शरीर पर हो जाती है, नाखूनों में हो जाती है। इसका कई कारण है, शुरू में कहते थे कि ऑटो इम्यून डिजीज है, पर अब ये कहते हैं कि इसमें कई इन्फ्लेमेशन भी होती है स्किन में, और कई बार इन्फेक्शन भी ट्रिगर करती है, कई बार ड्रग्स भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेस होते हैं इसके के लिए, जो एक डॉक्टर की ही समझ में है। अगर हम आपको समझाएंगे तो वो आपके समझ के बाहर होगा, पर आपको यही मानना पड़ेगा कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब हेरिडिटरी भी थोड़ा एलिमेंट होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं एक रोल।
2: हाँ,
3: डॉक्टर, ये मेरा बेटे के बारे में था, वो जब 6 साल का था उनको सोराइसिस हुआ था, और फिर डॉक्टर बताया था कि एक सिरप है जो 365 कहलाया जाता है, वो मल्टीविटामिन था, और उसपे उनका ठीक होता था।
0: देखिए सिरप 365 के बारे में मैं नहीं जानती, पर बेहतर यही होगा कि सोरियासिस आप डॉक्टर के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, वो असेस करेगा कितनी एक्सटेंट ऑफ सोरियासिस है। अगर सोरियासिस कम है, 10% से कम बॉडी को इन्वॉल्व करती है, तो ट्यूब्स लोशंस से इलाज हो सकता है, पर अगर 10% से ज्यादा है तो गोलियों का भी इसमें प्रयोग करना पड़ता है।
3: जी डॉक्टर, दूसरा सवाल है, अपना हेरिडिटरी है कि जब खाना खाते हैं हम लोग तो सिर्फ सिर के अराउंड द हेड, द फोरहेड एंड द टॉप ऑफ द हेड पसीना निकलता है। जैसा मेरा बेटा या बेटी जब छोटे थे, जब दूध पीते वक्त उनको भी पसीना निकलता था।
0: देखिए एक कंडीशन होती है, जैसे मैं समझ रही हूँ, जैसे आप मिर्ची ज्यादा खाते हैं, या एक कंडीशन होती है गस्टेटरी हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको पसीना ज्यादा निकलता है। प्रोबेबली वो ही कारण होगा कि आप कह रहे हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको पसीना आता है, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन भी हो सकता है।
1: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए।
1: मैं दर्शन रहता हूँ फ्रॉम जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ।
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ, मेरी उम्र 82 ईयर्स है।
2: हाँ जी,
1: और ल्यूकोड्रमा से मेरा शरीर 95% भरा हुआ, तो मेरे को वो कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए?
0: देखिए जैसे आपकी उम्र भी 82 ईयर्स है, और आपको ल्यूकोडर्मा काफी लगता है एक्सटेंसिव है, आपने कहा 95% बड़ा हुआ है। देखिए साबुन, ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है, पर हमें साबुन इसमें यूज करना है क्योंकि हमारी स्किन पर मिट्टी जम जाती है, स्वेट जम जाता है, सीबम ऑयल जम जाता है, तो उसे हमें हटाना है। तो हम यही रिकमेंड, हम कोई साबुन प्रमोट नहीं करेंगे, हम यही रिकमेंड करते हैं कि कोई माइल्ड सोप जो है आप यूज करिए, क्योंकि आपकी उम्र 82 ईयर्स है, तो हम कहते हैं कि ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करिए। हम कोई सोप को नाम नहीं लेंगे, पर मार्केट में ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स होते हैं, उनको आप यूज करिए ताकि आपकी त्वचा में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ठीक रहे। ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है।
1: अच्छा,
2: तो मैम ने आपको इंडायरेक्टली बता दिया कि जो ऐसा कोई भी साबुन जिसमें नमी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनम पुरी मैम के साथ जो आज हमारे साथ हैं।

तो रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ द जंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैम एक

0: व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। शशांक फ्रॉम उत्तराखंड, वो लिखते हैं मैम कि इनकी उम्र 22 साल है, इनके हाथों में बहुत स्वेट आता है।
1: जी शशांक जी, जैसे आपके हाथों में स्वेट आता है, मुझे उम्मीद, मेरे को पता है कि आपके पाँव में भी आता होगा, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें हाथ और पाँव में पसीना बहुत आता है। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार क्या होता है एंग्जाइटी से होता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं बहुत टेंशन होती है तभी भी हमारे हाथों पाँव में पसीना आता है। इसी कारण और भी कॉजेस होते हैं जिसमें हाथ और पाँव में पसीना आता है। इसके लिए हमारे पास एंटी स्पर्सपिरेंट लोशंस होते हैं, स्प्रेस होते हैं जो हम लगा सकते हैं। फिर भी अगर पसीना, कुछ गोलियां होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, फिर भी अगर हाथ और पाँव में पसीना कम नहीं हो तो एक एंटोफोरेसिस मशीन होती है जिसमें हम हाथ और पाँव को पानी में भिगोते हैं और एक बहुत लो करंट पास होता है जिससे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई इलाज हैं इनके जिसमें हाथ और पाँव में पसीना कम हो सकता है।
0: हरियाणा से जतिंदर जी लिखते हैं मैम कि बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है, तो ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है?
1: देखिए बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है तो मुझे लगता है कि सुपरफिशियल बर्न हुआ होगा, फफोले हो गए होंगे, तो इसमें सिल्वर सल्फा डाइजीन क्रीम होती है जो हम हमेशा रूटीनली बर्न्स के लिए देते हैं, वो आप लगा सकते हैं। पर अगर इन्फेक्शन है, पस मवाद पड़ी हुई है, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि बहुत अगर ज़्यादा जला हुआ है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ज़्यादा निशान ना पड़े।
0: रंजन कुमार फ्रॉम संत नगर बुरारी दिल्ली, मेरे फेस पर ऐसा लगता है मैम जैसे कि ऑयल लगा रखा है बहुत, जबकि मैं बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऑयली स्किन।
1: देखिए आप, मेरे ख्याल से आपकी यंग एज होगी, आप टीनेजर होगे या आपकी कम उम्र होगी, क्योंकि उस टाइम पर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और युवावस्था में जो होता है फेस जो है आपके ऑयल ग्लैंड्स भी जो होते हैं एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑयली स्किन हो सकती है।
0: जी एक कॉलर है मैम, देखते हैं ये अभी है या। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग सुजाता मैम।
0: हाँ गुड इवनिंग, बोलिए।
2: गुड इवनिंग डॉक्टर।
1: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल ये है कि मुझे है ना बॉडी के मतलब हैंड पे लेग पे बॉइल्स है, बॉइल्स, ये बॉइल्स किस वजह से होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम कभी कभी फिश खाते हैं, चाहे वो करी हो या तली हुई मच्छी हो, उससे भी बहुत खुजली होती है, तो ये किस वजह से हो सकती है या इसको अवॉइड करना चाहिए?
1: देखिए जो पहला क्वेश्चन है, आपने कहा कि आपके हाथों पाँव में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण ही होते हैं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन में होती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं। आपको गर्मी से बचना है और आपको क्रीम्स होती हैं एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स, उनको यूज़ करना है, और अगर फोड़े ज़्यादा हैं उनमें मवाद पड़ गया है तो आपको एंटीबायोटिक भी खाना की ज़रूरत पड़ सकती है।
2: बॉयल्स ही
1: बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ये गर्मी के कारण होते हैं।
2: Okay.
1: और दूसरा जो आपने बोला कि आपको फिश खाकर प्रॉब्लम होती है, लगता है आपको फिश से एलर्जी है, बहुत लोगों को फिश से एलर्जी होती है, तो बेहतर यही है कि अगर आपको फिश से एलर्जी है तो आपको फिश अवॉइड ही करनी पड़ेगी।
2: ओके, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू।
0: सुकांता बालो फ्रॉम हिसार हरियाणा, इनका क्वेश्चन है मैम कि गर्मी में क्या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन पर नहाने के बाद? अक्सर हम सर्दियों में मैम मस्टर्ड, सरसों का तेल इस्तेमाल करते, तो क्या ये गर्मियों में एडवाइजेबल है?
1: देखिए सुकांता जी, हम नॉर्मली एज स्किन स्पेशलिस्ट मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फोटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे पिगमेंटेशन हो जाता है। हम सब अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या जैतून तेल, ऑलिव ऑयल या तिल ऑयल यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा है ऑलरेडी त्वचा ऑयली होती है फिर हम कोई भी ऑयल रिकमेंड नहीं करते।
0: जी मैम, एक लास्ट व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं।
1: जी
0: 69 इयर्स ओल्ड हैं शशि फ्रॉम दिल्ली, और जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल की अभी बात की मैम, तो उन्होंने लिखा है कि क्या समर्स में कोकोनट ऑयल को लगाया जा सकता है खास करके फेस पर?
1: देखिए समर्स में मैं नहीं रिकमेंड करती कोकोनट ऑयल को, क्योंकि ऑलरेडी पसीना आ रहा है, फेस ग्रीजी होता है, तो गर्मियों में एटलीस्ट आप अवॉइड करिए कोकोनट ऑयल को।
0: जी तो मैम, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा एक लमसम हमें बताइए कि गर्मियों में हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, क्या अवॉइड करना चाहिए, और हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए?
1: जी देखिए, गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, आप वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है काफी लूज करते हैं, तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि पानी खूब पीजिए। पानी प्लेन भी पानी पी सकते हैं, नींबू पानी में नमक भी डालकर पी सकते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। नारियल का पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी नेचर ने ऐसे बनाए जिनमें खूब पानी होता है, उनका जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं खाइए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लाइट चीज़ें खाइए, बहुत तली हुई स्पाइसी चीज़ें नहीं खाइए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। बहुत विग्रस एक्टिविटीज़ नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, बहुत दौड़े नहीं, बहुत वेट लिफ्टिंग जिमिंग नहीं करिए, क्योंकि पसीना आता है और पसीने के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉटन के कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, धूप 10 से 3 तक ज़्यादा होती है उस टाइम पर कोशिश करिए कि बाहर स्टेप आउट नहीं करें, और मेंटल स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि अच्छी स्किन के लिए मानसिक तनाव भी नहीं होता। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और खुश रहिए, यही सबसे अच्छी हेल्दी स्किन के सीक्रेट्स हैं।
0: और तभी कहते हैं मैम कि योगा और मेडिटेशन से जो है वो हमारी स्किन ग्लो करने लगती
1: जी
0: है, नेचुरली ग्लो करने लगती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल, आज हमारी गेस्ट थी और टॉपिक था स्किन केयर इन समर्स। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने,
1: उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके बाद 557 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कपास के लिए और 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल के लिए की गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी के पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नसिमयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हाल की यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। NEET UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह

एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में जून अनुबंध के तहत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सी ट्योंग को हराया, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आयुष शेट्टी, थारुन मन्नपल्ली, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, अक्सर ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी कि सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, क्योंकि जब किसी इंसान की सोच बदलती है तो उस इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही बदलने लगता है और फिर यहीं से शुरू होता है एक ऐसा बदलाव जो बदल देता है पूरे समाज की सोच।
4: लगता है अपनी गुड़िया आ गई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आजा मेरा बेटा।
5: नमस्ते मम्मी जी।
6: आ गई मेरी गुड़िया?
5: जी पापा जी। नमस्ते पापा जी।
6: आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा?
5: जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ उस तकलीफ के आगे ये तो कुछ भी नहीं है।
4: रो मत बेटा, हमने सूरज से बात की है, उसको समझाया है कि अब जमाना बदल गया है, लड़का और लड़की एक जैसे हैं।
6: बेटा, हमने दामाद जी को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि गर्भपात कोई खेल नहीं है, कि जब मन किया कह दिया कि चलो अबॉर्शन करा देते हैं।

0: देखो बेटा, तुमको पाने के लिए हम कहां कहां नहीं भटके। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि या तो तू बचेगी या तेरी माँ।
1: अरे छोड़िए पुरानी बातें।
0: नहीं, आज की पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि गर्भपात कराने से महिला कितनी मुश्किल से गुजरती है। शरीर में तो प्रॉब्लम होती ही है, मानसिक रूप से भी परेशानी होती है।
1: हमारे दामाद जी समझदार हैं, वो इन सब बातों को समझ चुके हैं। गुड़िया, इसीलिए जब तू यहाँ आ रही थी तो सूरज ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैं अपनी अनुराधा को कभी अबॉर्शन के लिए नहीं बोलूंगा। सच मम्मी?
0: हाँ बेटा।

0: साथ साथ हैं और यही खूबसूरती हम हिंदुस्तानियों को बनाती है सबसे अलग। और दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में हम इसी सोच को जानने की करेंगे कोशिश। दोस्तों, लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ इस विषय पर क्या सोच रखती हैं, आइए सुनते हैं।
1: मुझे लगता है सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। हम आए दिन देखते हैं वाहनों पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, पुलिस जानकारी दे रही है, रेडियो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन जब तक इंसान अपने आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएगा नहीं, अपने आप ये निर्णय नहीं लेगा कि मैं बच्ची को मारूंगा नहीं बल्कि उसको जन्म लेने दूंगा। जी हाँ प्रिय मित्रों, ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें परमेश्वर का डर अपने अंदर लाना है। बेगुनाह बच्ची की हत्या करना, चाहे गर्भ में हो चाहे वो जन्म के पश्चात हो, उसकी कदर ना करना, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, इस तरह की बातें कहना। मैं समझती हूँ जब तक हमारे दादा नाना पति पिता भाई लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि जिसको हम नकारात्मक कह रहे हैं वही तो है जो आगे वाली पीढ़ी को जन्म देती है। सोचने की बात है, अगर हमारे घर में बच्चियां नहीं जन्म लेंगी वो आने वाली पीढ़ी की माँ कैसे बनेगी, हमारी आगे नस्ल चलेगी कैसे, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर गौर करना ज़रूरी है कि चाहे हम कितने भी कानून बना लें, समाज का डर अपने अंदर ले आए, लेकिन जब तक हमारे ज़मीर को नहीं झंझोड़ेगा हमारे को ये बात समझ में नहीं आएगी। हमारी महिलाएं श्रोता हमें फ़ोन करके बताती हैं कि उनके परिवारों ने उनके ऊपर जबरन गर्भपात करवाए 8 बार 11 बार। पुरुष लिसनर्स फोन करके ये बताते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था गर्भपात कराने से उनकी पत्नी आगे बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाएगी या उनकी पत्नी इतनी बीमार हो जाएगी। प्रिय श्रोता, हमारे अंदर जिस दिन ईश्वर का डर आ जाएगा उस दिन हम ये घिनौना काम कभी नहीं करेंगे।

जी हाँ, जिस दिन हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे, हमारी सोच अपने आप ही बदलने लगेगी।

0: और हाँ, एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि गर्भपात का निर्णय लेते वक्त आप अपनी पत्नी के निर्णय के साथ अवश्य खड़े रहें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेश छाबड़ा से।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश छाबड़ा हूँ। आज का जो विषय है उसमें क्या पुरुष को महिला का साथ देना चाहिए? यस, डेफिनेटली, क्योंकि जो महिला के शरीर पे गर्भपात से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसको जो है पुरुष को भी साथ में भोगना पड़ेगा। मान लो मानसिक तौर पे अगर किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन आता है, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर किसी लेडी को हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस बिकॉज ऑफ द एबॉर्शन, तो जो वो तो महिला तो सहेगी लेकिन पुरुष को भी सहन करना पड़ेगा, उसका घर भी बर्बाद होगा। घर के अंदर प्रॉपरली आप कीपिंग नहीं होगी, देखा नहीं जाएगा, घर संभलेगा नहीं, तो घर बिखर जाता है। डेफिनेटली इसके साथ मानसिक कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ शारीरिक कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं। तो शारीरिक कॉम्प्लिकेशन में एक बड़ा कॉमन जो चल रहा है वो तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी आ जाती है, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी आती है, मैल न्यूट्रिशन आ जाता है, और जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आने के चांस हैं। सो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अगर पुरुष महिला का साथ देगा तो उसको आने वाले दिनों के अंदर शारीरिक और मानसिक कॉम्प्लिकेशन से बच करके और उसका परिवार जो है सुख और समृद्ध रहेगा। इसलिए मैं ये सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी कभी ऐसे डिसीजन हो तो उसमें आप ना कहना सीखिए। पुरुषों के लिए कह रहा हूँ मैं बात, ना कहना सीखिए, ना कहेंगे तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे।
0: दोस्तों, आपकी एक ना सिर्फ आपकी पत्नी को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचाएगा बल्कि आपके रिश्तों को और मजबूत भी बनाएगा।

साथ। नमस्ते, मेरा नाम धीरज है। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे जब मेरी पत्नी ने कल धारण कर लिया। तो बहुत जल्दी था, हमारी शादी का कुछ ही समय हुआ था, तो इसलिए हम दोनों ने ये सोचा कि इतनी जल्दी हमें बच्चा नहीं चाहिए, पहले एक दूसरे को समझ लें। तो हमने जाके गोलियों से गर्भपात कर लिया और तब से मेरी बीवी को इतनी प्रॉब्लम है कि हम आए दिन डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। आपने ये कार्यक्रम के द्वारा हमें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है गर्भपात कराने के लिए। काश ये कार्यक्रम हमने पहले सुन लिया होता।

0: के द्वारा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7678438471। जी हाँ 7678438471। और हाँ, अगर आप दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको सवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें इसी नंबर 7678438471 पर मैसेज करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का हमारा वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है हमारे युवाओं से, जुड़ा है हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से, कॉलेजेस से, स्टूडेंट्स से। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे को होता है ये स्पेशल एडिशन जो हम पहुंचाते हैं आप तक 4 से 5 बजे के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। हर बार एक नए कॉलेज की सैर पर आपको ले जाती हैं हमारी सहयोगी, और आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा कहाँ पहुंची, वो पहुंची दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, और वहां पे उन्होंने की बहुत सारे लोगों से बातचीत और जाना उस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ। वो सारी जानकारी, वो सारी बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। चलिए करते हैं शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की सैर की हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ।
2: मेरा नाम है ऋचा, और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आपको लेकर आई हूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। और आइए बात करते हैं यहाँ की एक टीचर से, और जानते हैं जो एकेडमिक एजुकेशन है वो तो जरूरी है ही, साथ ही स्किल्स पर काम करना आज के दौर में क्यों एक जरूरत बन गया है।
3: Hi Richa, myself Professor Monica Bansal. I am a faculty at Department of Management Studies at Deendayal Upadhyay College. जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि academics के अलावा skills की बच्चों की life में क्या importance है, तो यहाँ पर मैं जरूर mention करना चाहूंगी कि colleges में जैसे classroom में तो focus रहता है mainly on the subjects we are teaching, maybe finance, marketing, IT or any other subject related. But outside the classroom, students need to communicate ideas, solve various problems when they enter into the real life, where you see that they are not just dealing with the teachers, with them they are very much familiar, but they have to have into an environment which is very, very uncertain. So in order to survive there, they need to have various different kinds of skills, which we may call as life skills also. And sometimes the technical skills which they need to be in the corporate world.
2: Skill bhi utni hi zaruri hai jitni ki academic knowledge zaruri hai. मैम, स्टूडेंट्स को कामयाब करने के पीछे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर्स का ही हाथ होता है और टीचर्स ही उन्हें दिशा देते हैं जिससे उनकी दशा बदती है आगे जाकर। मैम, आपके जीवन का ऐसा कौन सा सक्सेस मंत्रा है जो आपने अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन किया है?
3: ऋचा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि देयर इज नो शॉर्टकट, ग्रेजुअली एंड स्टेडली इफ यू विल वर्क हार्ड, तो नो डाउट यू विल रीच टू योर गोल्स।
2: मैम, ये जो आपका सक्सेस मंत्रा है ये हमारे लिसनर्स तक भी पहुंचे, और वो जिन्हें बहुत जल्दी है सक्सेस की, जिन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है, याद रखें कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मैं डॉक्टर चारू कालरा, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ।

0: पिछले 14 वर्षों से इस महाविद्यालय में कार्यरत हूँ।
1: मैम, आप 14 वर्षों से आप इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, आपने इतना लंबा समय देखा है, तो मैम आपने क्या परिवर्तन देखा है स्टूडेंट्स की एक थॉट प्रोसेस में, उनकी डिटर्मिनेशन में, उनके फोकस में? आप क्या चेंज देखती हैं पिछले 15 सालों से और आज के बच्चों में?
2: उस वक्त के विद्यार्थियों का स्वभाव, उनका पढ़ने का स्टाइल, उनका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का स्टाइल शायद न्यूज़पेपर्स थे, अगर 2012 की बात करूं। आज मान लीजिए वो इतना एडवांस हो गया है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक मोबाइल की 30 सेकंड्स में ही इतना फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सो फास्ट। ये तब भी ब्रिलियंट थे, ये आज भी ब्रिलियंट है।
1: मैम, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने आपको क्या लगता है उनकी एक बहुत ही बेहतरीन बात जो हम सबको अडेप्ट करनी चाहिए, और एक उनकी ऐसी प्रॉब्लम जिससे उन्हें ओवरकम करने की जरूरत है?
2: तो जो ओवरकम करने की जरूरत है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने को वो सोशल स्ट्रक्चर और वो कुटुंब व्यवस्था, अब अंतर्मुखी हो रहे हैं, कुटुंब व्यवस्था से दूर हो रहे हैं, ये भी मेरे लिए एक एज अ गुरु चिंता का विषय है। लेट एज में थोड़ा मैरिज की ओर जाना, पहले सेटल होना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इससे ओवरकम करना, एक बैलेंस्ड डिसीजन लेना, इसके लिए सकारात्मक रहना।
1: अब सकारात्मकता की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव क्वालिटी है जेंजीज की?
2: वो मैं बताऊंगी, वो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटी है, अगर कहीं मैं उनको कह रही हूँ अंतर्मुखी है, तो दूसरा कि वो अडेप्टेबल है।
1: ओके,
2: हमारी जेनरेशन हम रिजिड है।
1: तो मैम, ऐसे में एक आपका सफलता का मंत्र क्या रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो आपने भी धारण किया और आप इसे आगे पास ऑन भी कर रही है?
2: पुराना संस्कृत का श्लोक है, बहुत बार सबने सुना भी होगा, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
1: मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली, धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।
2: मेरा भी सौभाग्य रहा कि ऋचा जी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी अपने विचार सब तक पहुंचा पाऊंगी। धन्यवाद।
3: वाकई में ये विचार बहुत जरूरी हैं और विचारों का आदान प्रदान जो है ना लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो हम एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ बुधवार को 4 से 5 बजे के बीच में। और कॉलेज का समय जो होता है वो ऐसा समय होता है जब इंसान को अपनी, जिसको हम कहते हैं ना, कॉलिंग पता चलती है कि जिंदगी में आखिर वो किस दिशा में जाना चाहता है, और उस दिशा में उसको प्रेरित करने वाले जो टीचर्स हैं, अगर उनकी गाइडेंस उसको सही मिल जाती है, तो ऐसे में जिंदगी की दिशा को तय करना बहुत ही ज्यादा आसान हो ही जाता है। और फिर टीचर्स की अगर हम माने तो स्टूडेंट्स में लगातार बदलाव आता है, समय बदलता है और समय के बहाव में बहुत कुछ बह जाता है और बहुत कुछ नया जो है ना वो हमारी आंखों के आगे आ जाता है। और इसी बदलते हुए जमाने का जो सबसे, अगर मैं कहूँ कि सबसे एविडेंट अगर आपको कहीं पे वो चीज़ दिखती है, बदलता हुआ ज़माना अगर आपको कहीं दिखता है और इस ज़माने को और भी ज़्यादा बदल देने की ऊर्जा अगर कहीं पे दिखती है, तो वो होते हैं हमारे कैंपसेस। और इसी कैंपस लाइफ को समेट कर हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और हम आज आपको सैर करवा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जिसकी स्थापना हुई 1990 में, और यहाँ पहुँची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, और उनके साथ करेंगे और भी ज्यादा कॉलेज की सैर। फिलहाल मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ एक खूबसूरत सा गाना, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मैं और मेरी सहयोगी ऋचा वर्मा करवा रहे हैं आपको सैर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो कि 1990 में शुरू हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी एकेडमिक और कल्चरल सोसाइटीज़ हैं। और एकेडमिक्स के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें सुन ली, टीचर्स को हमने सबसे पहले जो है आज के हमारे कार्यक्रम में शामिल किया है। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और जानते हैं कि उनकी दिल की धड़कन क्या कहती है।
4: मेरे साथ आज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के स्टूडेंट और आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
5: हाय, मेरा नाम ऋषभ है। आई परस्यूड बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
4: क्या आप फोर्थ ईयर में हैं?
5: नहीं, आई ऑप्टेड आउट ऑफ फोर्थ ईयर क्योंकि मुझे मास्टर्स के लिए प्रेप करना था। आई एम प्रेपिंग फॉर माय एमबीए राइट नाउ।
4: वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो आप एमबीए का प्लान है आपका, ये आपका पैशन था, हमेशा से सोचा था कि एमबीए ही करना है, या फिर ये आपकी फैमिली ने डिसाइड किया कि आप ये करें?
5: दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई ग्रो अप इन गुरुग्राम। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई हैड द गोल ऑफ डूइंग एन एमबीए एंड देन स्टार्टिंग माई ओन वेंचर।
4: तो क्या इंटरेस्ट है आपका? क्या मतलब आपका सेटअप ऑलरेडी एक सेटल्ड बिजनेस है या आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं?
5: मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, पॉसिबली समथिंग विच क्रिएट्स अ कम्युनिटी ऑफ पीपल सो दैट पीपल कैन बी मोर कनेक्टेड टुगेदर, दे कैन मेक फ्रेंड्स एंड फाइंड पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स।
4: हमसे बात करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू।
6: माय नेम इज अभय एंड आई एम इन थर्ड ईयर डूइंग बीए इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस।
4: तो आगे जाके आपके आज से 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं?
6: वेल, एंजॉयिंग लाइफ, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड।
4: And how traveling changing the people? What do you think?
6: Traveling आपको the sense of freedom देता है जो आपको एक जगह पे रहने से नहीं मिलता है। When a person stays in one place for a long period of time, एक safe space बन जाती है जिससे वो निकलना मुश्किल हो जाता है। And when you break that space, you realize that there is much more to do in the world throughout the ages.
4: और कौन सा ऐसा देश होगा जो आप सबसे पहले घूमना चाहेंगे?
6: Definitely Japan. Well, I love the intermix of the culture and the technological advancement they have created.
4: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम श्योर कि आप जरूर वर्ल्ड टूर पे जाएं और एक बार नहीं दो बार जाएं।
6: थैंक यू।
7: मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की स्टूडेंट और मेरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस।
4: साक्षी, ये बताइए कि अगर आपको एक मौका मिले कि टाइम मशीन में बैठकर आप वापस जा सकें और अपनी यंग सेल्फ को एक एडवाइस दे सके, तो वो एडवाइस क्या होगी?
7: मेरी एडवाइस होगी कि नेवर डाउट योरसेल्फ।
4: इसका मतलब है कि आपने खुद पे कभी डाउट किया है?

0: और उस डाउट को फिर क्लियर कैसे हुआ वो डाउट?
1: जो डाउट आया वो थोड़ा फेलियर की वजह से आया, बट मैंने उस फेलियर में खुद को रोका नहीं। मैंने कहा एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। एंड उस ट्राई के बाद मैं जो पीक पे गई हूँ, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो नेवर डाउट माई सेल्फ, आई नेवर डाउट माई सेल्फ अगेन।
0: वाह, दैट्स रियली गुड। आज इस कॉलेज का आपका आखिरी दिन है, आज फेयरवेल पार्टी है, और मुझे पता है कि बहुत सारे इमोशंस आपके मन में उमड़ रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज का बेशक ये आखिरी दिन है पर असल जिंदगी में आपका पहला कदम है। कैसा महसूस कर रही हैं आप?
1: कुछ नया है, कुछ अलग है, पर ये जरूरी भी है ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं, मैं और ग्रो कर सकूं। सो इसको एक्सेप्ट करते हुए, अपनी मेमोरीज को, जर्नी को साथ लेते चलते हुए आगे की जर्नी बनाने का सोचा है मैंने।
0: तो अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखती हैं?
1: खुश देखती हूँ
0: बहुत
1: कामयाब देखती हूँ
0: अच्छी बात कही आपने। आपके हाथों में एक पेपर पे एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी हुई देख रही है मुझे। कही कविता किस विषय पे है?
1: सो दिस पोएम इज बेसिकली द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कॉलेज मी एंड लिटिल मी। सो आई बिगिन। लिटिल गर्ल, लुक हाउ फार यू हैव गॉट। यू आर नो लॉन्गर जस्ट लॉस्ट इन थॉट। योर पैलेट ऑफ ड्रीम्स, बोल्ड एंड वाइड, इज पेंटिंग रियल लाइफ फ्रॉम डीप इन साइड। द कैनवस ऑफ लाइफ नाउ स्टार्ट टू शो ऑल द थिंग्स यू ड्रीम्ड लॉन्ग अगो। द गर्ल हु ऑलवेज शील्ड अवे नाउ स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस एवरी डे। द लोनली गर्ल हु स्टूड अपार्ट नाउ हैज वंडरफुल पॉज विद अ लविंग हार्ट। द गर्ल हु थॉट शी नेवर कम्पीट नाउ फेंसेस स्ट्रॉन्ग ऑन अ नेशनल फीट। द गर्ल हु फेल्ट शी वॉजंट प्रिटी इनफ नाउ विंस एंड शाइन्स बोल्ड एंड टफ। द गर्ल हु थॉट शी नेवर बी लव्ड गॉट हर वेरी फर्स्ट स्वीट हार्ट शी नेवर थॉट ऑफ। You may not be perfect or top the class, but that was never your strength or path. Your goal was always to live life true, through every high and every blue. You feel so deeply, yes, that it's true, but that's the special part of you. I may blame you, I may be hard, I may leave you a little scared, but never forget, through all you do, I'm always the one who stands for you. Thank you.
0: Wow, it's really nice, very motivating and very nice selection of words that you have choose for you. चलिए, आज आपका कॉलेज का आखिरी दिन है, जिंदगी में पहला कदम है और आप जिंदगी के हर कदम में ढेरों सफलताएं पाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू एवरीवन।
2: मैं समीर अंके, आई एम फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, आई एम डूइंग माय फोर्थ ईयर राइट नाउ इन बॉटनी एंड आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द मिसेस सोसाइटी एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला।
0: अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए कि आपको दिल्ली में इतना टाइम हो गया और आपने इस कल्चर को धीमे धीमे अडेप्ट कर लिया होगा आई एम श्योर, तो केरला से और दिल्ली के कल्चर में आप क्या कल्चरल डिफरेंस क्या देखते हैं आप?
2: बहुत सारा कल्चर डिफरेंसेस एंड आल्सो आई एम अ पर्सन हु रेस्पेक्ट एवरी कल्चर।
0: सो विच काइंड ऑफ म्यूजिक यू रिसाइट?
2: एक्चुअली आई एम प्रोफेशनली ट्रेन्ड कर्नाटिक म्यूजिक स्टूडेंट, इवन आई डू बॉलीवुड, डू लिसन बॉलीवुड टू।
0: तो ठीक है, हम भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और सिर्फ हम आपकी बेहतरीन आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे।

0: बहुत खूबसूरत से गाया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम सब लोग तो इसको नहीं समझ आया हमें क्या कहा आपने।
1: सो इट्स सॉन्ग अबाउट राम,
0: इट्स अ काइंड ऑफ राम स्तुति।
1: यस, सॉर्ट ऑफ, इट्स अ कीर्तनम एक्चुअली, सॉर्ट ऑफ कीर्तनम।
0: तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। अच्छा, कुछ हमें हिंदी में सुनाइए।
1: हाँ, एक दिल एक जान है,
0: पद्मावत।
1: यस।

0: बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपने दिल से गाया और हमारे कानों से होते हुए दिल तक पहुंचा। इट्स मेसमराइजिंग, बहुत ही खूबसूरत, और इतने खूबसूरत गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वाकई में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और उससे भी खूबसूरत अंदाज। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल, और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा और वहां के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स से की उन्होंने मुलाकात। और दिल्ली मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी को अक्सर हम मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहते हैं। देखा जाए तो केवल भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर तक से भी लोग जो हैं इसी कैंपस के आकर्षण से खींचे चले आते हैं, इसी कॉलेज लाइफ को जीना चाहते हैं बार बार बारंबार। फिलहाल हम उसे जी रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए और आप सब तक भी पहुँचा रहे हैं इन बहुत ही खूबसूरत पलों को 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और भुलाने में जमाने लग जाते हैं इस बदलते हुए जमाने को साथ साथ जीने के साथ। जी, इस बदलते हुए जमाने की जिसकी झलक हमें मिलती है हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इन कैंपसेस में, और जमाना लगता है इस जमाने को भुलाने में। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आज हम पहुंचे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। हमारे सहयोगी ऋचा वर्मा ने की वहाँ के प्रिंसिपल से बातचीत, आइए जानते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानवतावाद की बात की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की, और साथ ही कहा अंत्योदय, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो। उन्होंने समाज के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के विकास की, कल्याण की बात की। और सर, इस मानसिकता को, इस ये जो कॉलेज है, इस विचारधारा को किस तरह सपोर्ट कर रहा है, हम कॉलेज के जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे।
2: नमस्कार, प्रोफेसर हेमचंद जैन, प्रिंसिपल दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। FM पे आए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दीनदयाल जी के

0: बताए हुए मार्ग पर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हुए समाज के अंत के उदय के लिए काम करता है। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे कॉलेज में चलती हैं, और जिसमें से एक स्कीम मैं बड़े डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर साइंस की एजुकेशन बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, और ये स्कूल ऐसे हैं जो कि सुदूर प्रदेशों के गांव देहात के अंदर स्थित हैं, जैसे कि उत्तराखंड के डीप जो गांव हैं उनके अंदर जो स्कूल्स हैं, और या हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूल्स हैं जिनमें कि बहुत ही दूर दराज के जो गांव हैं उनके अंदर जो स्कूल्स हैं, वहां पर साइंस की एजुकेशन के लिए लेबोरेटरीज का अभाव है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और फ्रीक्वेंटली साल में कम से कम 2 या 3 इनिशिएटिव हमारे इस तरीके से रहते हैं, जिसमें हम उन स्कूल्स के टीचर्स स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में इनवाइट करते हैं, यहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होल्ड करते हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हम यहाँ पर करते हैं। वो स्कूल हमारे जो कॉलेज के एक्सपर्ट प्रोफेसर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, और वो उनके स्कूलों में जाकर साइंस की एजुकेशन के बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो देते हैं। हमारे टीचर्स कुछ ऐसे प्रैक्टिकल भी उनको सिखाते हैं जिससे कि बगैर इक्विपमेंट, जो कि हमारे कॉलेज में तो खैर हर तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उन स्कूल्स में जहां पर इक्विपमेंट्स का अभाव है वहां पर उन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे किया जाए, ये चीज भी हम उन टीचर्स को और उन बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर साइंस एजुकेशन को लेके जो एक अच्छा माहौल बनना चाहिए वो बनता है, और वो बच्चे उस साइंस के प्रैक्टिकल्स को डिटेल में समझते भी हैं। हमने कुछ ऐसे स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम रखे हैं जो कि बच्चे हमारे कॉलेज के अंदर वो सीखें और जाके अपने गांव देहात में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि एक स्कीम है मशरूम कल्चरिंग की, हम यहाँ पर बच्चों को मशरूम कैसे उगाए जाते हैं उसके बेसिक से लेके और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है यहाँ तक का पूरा प्रोसेस हम उनको समझाते हैं। हमारे 80 बच्चों का एक ग्रुप होता है, 80 बच्चे मान लीजिए उसके अंदर हैं, और उसमें से 10 बच्चे भी इस प्रोजेक्ट के प्रति उत्साहित हो जाए और वो अपनी यूनिट लगा लें तो वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से बिता सकते हैं।
1: क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। सर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स तो हैं ही, साथ में हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर सर अगर हम कॉलेज के जो बेसिक कोर्सेज की बात करें तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कॉलेज में अभी चल रहे हैं?
0: हमारे यहाँ प्राइमरली कॉलेज में 11 साइंस के कोर्सेज हैं, 4 जो हैं अदर देन साइंस कोर्सेज हैं। 11 जो साइंस के कोर्सेज हैं उसमें सबसे पहला कोर्स है केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, 4 जो हैं वो प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं, जिसमें एक है बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिकल साइंस एंड बीएससी लाइफ साइंस। तो ये 4 हमारे पास जनरल वाले कोर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अदर देन साइंस के जो कोर्सेज हैं उसमें है बीकॉम ऑनर्स के 3 सेक्शन है, बीएमएस का 1 सेक्शन है, 1 सेक्शन इंग्लिश ऑनर्स का, और 3 सेक्शन बीए प्रोग्राम के हैं। तो इस तरह से करके हमारे पास ये 15 कोर्सेज जो है वो चलते हैं।
1: सर अगर इतने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, कई सारे साइंस कॉलेजेस हैं जिसमें से दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एक कॉलेज है, सर फिर भी आपको क्या लगता है कि आपका कॉलेज कैसे बाकी कॉलेजेस में स्टैंड आउट करता है और एक विशेष कॉलेज है?
0: 2017 में NIRF रैंकिंग चालू हुई थी, कंटिन्यूसली हमारा कॉलेज जो है वन ऑफ द टॉप रैंक कॉलेज है, एंड Our college is in the NIRF ranking because the teaching staff of this college is extremely good. They are very dedicated.
1: सर हमसे बात करने के लिए और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है उसे आगे ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉलेज बहुत ग्रो करे और आगे जाके जिसकी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: अभी आपने सुना हमारे सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल की बातचीत को। वाकई में शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी है, और उसके साथ साथ ज्ञान की जो रोशनी है, वो जो मशाल इन्होंने अपने हाथ में उठाई है उसे अपने आसपास के सभी कोनों में पहुंचाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, शॉर्ट में DDUC जिसको कहा जाता है हमारे कैंपस लिंगो में, उस कॉलेज की सैर करवा रहे हम आपको आज हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल, और

0: बहुत सारे स्टूडेंट्स से की हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने बातचीत, और जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं, फेयरवेल जो है चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज से अपनी शिक्षा समाप्त करके जो है आगे दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए निकलने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: आज मैं आई हूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका?
2: हाय, आई एम सुदीति पान और आई एम करेंटली परसुइंग बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस।
1: अच्छा, एक बात मुझे जाननी है आपसे कि आप दिल्ली में हैं, आप इतने टाइम से, तो दिल्ली की कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी।
2: दिल्ली की एक अच्छी बात है फास्ट पेस्ड लाइफ, मूव ऑन करना इजी।
1: आप यहाँ कॉलेज की सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं?
2: मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव डेडिकेटेड टू कलमकार, द लिटरेचर एंड लिटरेरी सोसाइटी।
1: थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड।
3: हेलो मैम, माय नेम इज दिव्यांश यादव एंड आई एम करंटली परसुइंग माय स्टडीज एज अ फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन करवाया था, उसमें हमारे कॉलेजेस ने और बाकी डीयू के कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट करा था, तो उसमें मेरे को बेस्ट पोस्टर का अवार्ड मिला फॉर माय वर्क इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। सो बेसिकली मेरा एक डीप लर्निंग बेस्ड आर्किटेक्चर था, मैंने उसको कैनवा पे पूरा प्लॉट और ड्रॉ करके विजुअलाइज करके समझाया था उनको, जिसमें बेसिकली न्यूमेरिकल डिटेल्स भी थी, फ्लो चार्ट्स भी थे, डायग्राम्स भी थे। करनी चाहिए
1: हमें आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने जानने को भी मिला, और शायद आप जैसे टैलेंटेड बच्चों की आज बहुत जरूरत है हमारे देश को। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच मैम।
4: मेरा नाम कृति सेठी है, मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की छात्रा हूँ और करंटली मैं बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर रही हूँ यहाँ से।
1: तो क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी है और आज आप लोगों का आखिरी दिन है, इतने साल आपने इस कॉलेज में बिताए हैं, इन कॉलेज के दिनों में जरूर कोई ऐसा मोमेंट होगा जिसे सोचकर आपको बहुत प्राउड होता होगा, वो मोमेंट कौन सा है आपके लिए?
4: मेरा मूवमेंट काफी रिसेंट है एक्चुअली, मैं फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हमें डेजर्टेशन का प्रोजेक्ट मिला था ड्यू की तरफ से फॉर फोर्थ ईयर। सो हमारे कॉलेज से बोला गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन लगा था UGREE, तो उसके अंदर हर कॉलेज से कुछ 10 बेस्ट स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जाने थे, उसमें मेरे को सेलेक्ट किया गया टू रिप्रेजेंट आर कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय को, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मेरी मेहनत पूरे साल की रंग लाई और उसको रिकॉग्निशन मिला, एंड मेरे को ड्यू में बाकी स्टूडेंट्स के सामने, बाहर के प्रोफेसर्स एवेल्युएटर्स आए थे, उन सबके सामने भी अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिला।
1: अभी 10th का रिजल्ट आया है और 10th 12th के रिजल्ट के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मार्क्स हैं क्या वो इंटेलिजेंस डिसाइड करते हैं किसी स्टूडेंट का?
4: मैं इस पे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी। आई बिलीव मार्क्स, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इतने सालों से रहा है, मार्क्स की काफी वैल्यू है, बट अपार्ट फ्रॉम IQ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक बच्चे का एस्पेक्ट, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है।
1: क्या बात है, तो आप आगे जाकर बहुत अच्छी मैनेजर बने और आपके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो आपके अंडर काम करें लोग, वो भी आपके लिए बहुत खुश हो, आपके आगे पीछे आपकी तारीफ करें, यही हम चाहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
5: हाय, माय नेम इज वर्षा एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम BA हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस।
1: योर टीचर इज सेइंग दैट यू आर अ वेरी गुड सिंगर, यू हैव सिंग रियली वेल, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंस्पिरेशन?
5: My mother was a singer, so I have learned Carnatic music since a very small age.
1: आप कर्नाटक म्यूजिक की बात कर रही हैं, आपके फ्रेंड ने इतना सुंदर कुछ सुनाया हमें, और हम फिर से चाहेंगे कि आप क्लासिकल से शुरू करें और फिर हम बॉलीवुड पर आए।
5: This is a Swarajati.

बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और ये आपने कर्नाटक म्यूजिक से इंस्पायर्ड पीस सुनाया हमें, तो ऐसा कौन सा हिंदी सॉन्ग है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है या आपका फेवरेट है, वो हमें गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।

0: बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत था आपने गाया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। वर्षा, जो आपने स्वरों की वर्षा की है ना यहाँ पर, वो बहुत ही यादगार है और मुझे लगता है शायद हम इसे हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: मेरा नाम निष्कर्ष महेश्वरी है। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं लास्ट पिछले 12 या 13 सालों से थिएटर कर रहा हूं। मैं राष्ट्र नाट्य विद्यालय का विद्यार्थी भी हूं और मैंने काफी डिफरेंट स्टेट्स में जाके वर्कशॉप्स ली हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ काम किया है।
1: आपने भी कहा कि आप आवाजें निकालते हैं, किस तरह की आवाजें, किस क्या मिमिक्री करते हैं आप?
0: कुछ कार्टून शोज आते हैं जिसके कुछ कैरेक्टर्स की मैं आवाजें,
1: प्लीज हमें बताइए कुछ।
0: यदि आपने सुना हो, एक शो आता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस, कार्टून नेटवर्क पे बच्चों का शो है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी मैं आवाज निकाल सकता हूँ।
2: भैया, इस गर्मी भरे मौसम में इस ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और। I just love swimming.
3: ए मम, क्या सॉलिड आइडिया है! अरे इस बिल्ली को कोने में जब भी नहीं तब ले मिलेगा।
4: ये चप लो या टप लो, और जैसे भूखा कुत्ता रोटी लेके आता है ना, वैसे इस बिल्ली को मेरे पास लेके आ। अरे मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा।
1: वाओ, क्या बात है, आपकी आवाज में तो सच में जादू है।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आप लोगों की तरह और भी लोगों को ये अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ, और मैं डेफिनेटली आज एक बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आकाशवाणी को, जो मुझे उन्होंने ये मौका दिया है।
1: आप इतनी खूबसूरत आवाजें निकालते हैं और इतने क्रिएटिव हैं आप, तो आप आगे जाके आप तो थिएटर और MBA के साथ साथ आप तो रेडियो जॉकी बन सकते हैं।
0: ये तो आपने मेरा सपना मेरी आंखों के सामने साकार करते दिखा दिया, और डेफिनेटली मैं बहुत बहुत टाइम से आकाशवाणी सुनता था, और क्योंकि मुझे रेडियो में जो लोग आवाज देते हैं उनकी आवाज बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी, ऐसा लगता था कि इन्हें सुनते रहो। तो मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि मैं एक बार आकाशवाणी चलाऊं और उन्होंने जो कहा उसको वापस से दोहराने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली यदि मेरा कोई मेरी सक्सेस स्टोरी बनती है तो उसमें आकाशवाणी का हाथ जरूर होगा, और मैं आकाशवाणी से बहुत समय से जुड़ा भी हूँ और जुड़ना भी चाहता हूँ आगे चल के, उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ।
1: आकाशवाणी पर तो आप आ ही गए हैं, साथ ही हम आपको एक मौका देते हैं, आप ही के अंदाज में आज इस प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं।
0: मेरा नाम है निष्कर्ष और आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो, दिल से दिल तक। कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें, और आप शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर 9868107070 पर।
5: क्या बात है जी, निष्कर्ष ने तो वाकई में हमारे प्रोग्राम को निष्कर्ष पे पहुंचा दिया। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने की वहाँ के टीचर से, प्रिंसिपल से और स्टूडेंट से बातचीत। हर बार लेकर आते हैं आपके लिए एक नया कॉलेज, एक नया गलियारा, एक नया कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का, और आज हमने सैर की दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम यानी कि अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, इसको समेटने का समय आ गया है। इसी के साथ स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके लिए लेकर आएंगे एक नया कॉलेज, और यूनिवर्सिटी की सैर यूं ही जारी रहेगी आकाशवाणी रेनबो पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड

परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोर, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कड़ेल सृजन, लेकर आई हूं प्रोग्राम सैटेलाइट्स। अब देखिए, सैटेलाइट्स में हम दिल्ली की बहुत सारी बातें करेंगे। आप सभी को अपडेट रखने के लिए पूरा मैंने होमवर्क किया है। लेकिन देखिए, हम अभी की बात करें तो हम कहते हैं ना कि हम तो सेल्फी वाला ज़माना है, मतलब हम हर चीज़ की सेल्फी लेना जानते हैं, खुश होना जानते हैं। लेकिन यहाँ भी जो है ना, सेंध हमारी जो है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या है पूरी बात? इस बात को शुरू करने से पहले अच्छा सोचिए, अगर गिरगिट हमारे बारे में कुछ कहता, यानी आजकल के टाइम के बारे में कुछ कहता, आजकल के लोगों के बारे में कुछ कहता, तो वो ये कहता ना, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला ही नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, हमने तो कई ऐसे जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है जो रंग बदलना जानते थे। खैर, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि एक्चुअली हम जब भी सेल्फी लेते हैं या किसी से फोटो खिंचवाते हैं तो हम अपनी फिंगर से ये वी विक्ट्री साइन तो बनाते होंगे, लेकिन यहाँ भी जो है ना, अब कूल दिखने जैसी जो चीज़ है वो आपका नुकसान करवा सकती है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे फ़ोन हैं, जो वो बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ खींचते हैं, हमारे कैमराज जो हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो ऐसे में ये जो फ़ोटो जिसमें आप अपनी वी फिंगर्स दिखा रहे हैं, यानी विक्ट्री साइन बना रहे हैं ना, यहाँ पर कोई सेंध मारी कर सकता है, यानी फिंगरप्रिंट क्लोनिंग की जा सकती है। अगर फ़ोटो जो है ना आपने 1.5 मीटर दूर से ली है, तो वहाँ पर तो 100% AI की मदद से आपके फिंगरप्रिंट्स को कॉपी किया जा सकता है। वहीं आप सोच रहे हैं कि दूर से खिंचवा लें, 3 meters दूर से आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो भी जो है ना, मिलते जुलते जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं उसे AI बनाने में अब सक्षम है। तो ऐसे में जितने भी चोर और ये जो लोग सेंधमारी कर रहे हैं ना, वो आपको हिट कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं, आपके फिंगरप्रिंट वाले लॉकर्स को या फिर आपके बायोमेट्रिक दरवाजे जो भी हैं ना, उन पर जो है वो सेंध लगा सकते हैं। सो हो जाइए अलर्ट, क्या नहीं करना है। देखिए, अगर आपकी वी पोज वाली फ़ोटो है ना, तो आप उसे एडिट करके डालें, यानी वहाँ से आप उसको ब्लर कर दें, और अपने जिन भी आप बैंकिंग ऐप्स में या कहीं पर भी आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं ना, तो वहाँ पर आप डबल ट्रैक कीजिए, मतलब फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आप कुछ ID पासवर्ड भी इंस्टॉल कर दीजिए। और हाँ, जैसे भी आप कोशिश करें, तो ये वी विक्ट्री साइन जो आप बनाते हैं सेल्फी लेते टाइम, फ़ोटो लेते टाइम, इसे अवॉइड कीजिए, और हो सके तो अपने जो फिंगरप्रिंट्स, ये जो पोर हैं, उनको ना दिखाएं। हाई डेफिनेशन सेल्फीज को अपलोड करने से बचें, बिना सोचे समझे फोटो शेयर ना करें, और पूरी जो अगर आप प्राइवेसी लगा सकते हैं तो उसको भी इंस्टॉल कीजिए। हाँ, फोटो खींच कर लगाते टाइम हम वो एवल आई नजर बट्टू वाला साइन तो लगाते हैं ना। ये गाना सुनिए।

well, देखिए मुझे तो लगता है एक नज़र बट्टू जो है ना, हमें अपने मौसम को भी इंस्टॉल करवा देना चाहिए. कब नज़र लग जाए कुछ कह नहीं सकते. अभी गर्मियां है, कभी बरसात हो जाए, हमें ऑफिस से निकलना हो तो हो सकता है जमाजम ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, या फिर आपको ठंड लगने लग जाए. कुछ भी हो सकता है मौसम के साथ. तो टेम्परेचर की बात करें तो आज दिल्ली का जो मैक्सिमम था वो 39 यानी 39 डिग्री ही रहने वाला था. तो अब तो शाम हो गई है, अब तो बस आप 27 तक ही फील करने वाले हैं. और वेदर फॉरकास्ट वही कि भाई आप धूप में निकले हैं लेकिन छतरी लेकर निकलिए, धूप से भी बच जाएंगे, बारिश पड़ गई तो वो तो आप बच ही जाएंगे. जी हाँ, वैसे नज़र बट्टू और कहाँ लग जाना चाहिए. जी सोने चांदी पर लगातार कीमतें बढ़ रही हैं. हम आम आदमी की तो मतलब हमारी पहुंच से तो दूर दूर दूर ही होता चला जा रहा है. देखिए गोल्ड प्राइस की बात करें तो 1,56,000 पर 10 ग्राम्स, और सिल्वर यानी चांदी 2,77,000 प्रति किलो, 1 किलो का ये रेट चल रहा है जी. वेल देखिए जब एक रास्ता बंद हो जाता है ना तो हम कुछ ना कुछ नया ढूंढ ही लेते हैं. अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, देखिए चांदी और सोने की बात करें, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है ना तो चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना उनकी डिमांड भी बढ़ चुकी है. स्टर्लिंग ज्वेलरी की बात करें तो वो भी ट्रेंडी है, अभी सब अफोर्ड भी कर सकते हैं और लेना भी पसंद कर रहे हैं. सफ़ेद सोने या प्लेटिनम जैसा ये लगता है. और टेम्पल ज्वेलरी की बात करें तो जी हाँ, ये जो है ना हमारे साउथ इंडिया साइड तो बहुत पॉपुलर हो रही है, और शादियों में भी लोग ऐसे जो है चांदी की जो ज्वेलरी है उसको सोने का पानी चढ़ाकर बहुत बढ़िया तरीके से जो है कर रहे हैं. और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की बात करें, जी हाँ, वो काले रंग की पॉलिश वाली जो चांदी होती है ना वो तो कैजुअल वेयर, ऑफिस वेयर सभी हम यंगस्टर्स लाइक कर ही रहे हैं. कुंदन और पोल की इमिटेशंस, जी हाँ, ये भी ट्रेंडिंग है. कुछ ऐसा भी कि जो तांबा या पीतल की ज्वेलरी है ना उसको

भी 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी करके बिल्कुल ऐसा टच कर दिया जाता है कि वो 22 कैरेट जैसी फीलिंग देता है। आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम इस सिटी लाइट्स, मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन। देखिए कुछ तो बदल देना चाहिए, कभी कभी कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है, तो क्यों ना वहां पर एक बड़ा ड्रम इंस्टॉल कर दिया जाए, ट्राई करें। अरे क्यों हम ही ना सुधर जाएं, सही रास्ते अपनाएं और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको विन होना है तो जीत के लिए मेहनत कीजिए।

वेल वी दिल्ली वाले यानी हम दिल्ली वाले तो बल्ले बल्ले तभी फील करते हैं ना जब हम ट्रैफिक से बच कर निकल जाएं। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम सैटेलाइट्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। जी हाँ, अब टाइम है कि आपको बच बच कर निकाल दें ट्रैफिक से। यस, ट्रैफिक अपडेट नोट कीजिए। अगर आप सरिता विहार से मथुरा रोड बदरपुर यानी अपोलो हॉस्पिटल की साइड से कैरेज वे के उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वहाँ पर CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर वहाँ पर है तो SST सोचा जा रहा है कि वहाँ पर भीड़ हो सकती है। सो ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की है कि आप इस रोड को आज के दिन कम से कम 6-7 बजे तक यूज़ करने से बचें और आप मुंबई एक्सप्रेसवे रोड नंबर 13 MB रोड से होते हुए जा सकते हैं। कुछ और ट्रैफिक अपडेट की बात करें तो NH9 जो कि गाजियाबाद से सराय कालेखा तक जाता है उसकी मेंटेनेंस का, जी हाँ, रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जून तक चलने वाला है। सो आपको कौन से रूट लेने हैं, सो पहले तो ये तो आपको रूट अवॉइड ही करना है और अकॉर्डिंगली अपनी ये जो जर्नी है यानी यहाँ से गुजरने वाली वो आप अल्टरनेटिव रूट से पहले से जो है असेंबल करके निकले। और आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं तो मुझे ज़रूर बता दीजिए सो दैट मैं अनाउंस कर दूँ। नंबर आप सभी जानते हैं, ये 9868107070।

0: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं मैजिकल फ्रिक्वेंसी यस 102.6 की, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR ऐप जैसे कई मीडियम से जिनसे आप और हम कनेक्टेड हैं दिल से दिल तक। प्रोग्राम है सैटेलाइट्स और मैं आपके साथ सृजन। देखिए पहले तो ये जो कारवा है ना एक दूसरे को बातें कहने का, टीस करने का, ताने मारने का, वैसे फेस टू फेस हुआ करता था, लेकिन अब तो बस आप स्टेटस अपडेट कर दीजिए या फिर कोई इनडायरेक्ट सुविचार ही ऐड कर दीजिए, काम बन जाता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। एक और ट्रैफिक अपडेट आप सभी को दे दूं, आपको 17 मई तक इस रूट को भी अवॉइड करना है। जी हाँ, मंगोलपुरी के आसपास यानी मंगोलपुरी RUBI मंगोलपुरी उद्योग नगर रोहतक रोड, ये सभी जो है ना अभी डिस्टर्ब रहने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर जो है दिल्ली जल बोर्ड का जो है मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। पीरागढ़ी आउटर रिंग रोड होते हुए इस ऑल्टरनेटिव रूट से आप जा सकते हैं और अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली प्लान कर ले। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो देखिए बहुत कुछ नया हो रहा है। 7 न्यू कॉरिडोर्स जो हैं वो प्रपोज कर दिए गए हैं। इनमें 65 यानी 65 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। अब हम बात करते हैं यानी जिस बात पर मैं आ रही हूँ, ये है फेस 5B। जी 97 किलोमीटर 7 न्यू कॉरिडोर्स और 65 स्टेशंस इसमें आ जाएंगे। शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेस 3 तक जो कॉरिडोर बनने जा रहा है या इस पर जो है कार्य बहुत जल्दी चल रहा है और किनको फायदा होगा, देखिए ये जब डेवलप हो जाएगा शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेस 3 तक का रूट, तो शास्त्री पार्क, निर्माण विहार, त्रिलोकपुरी जैसे कई जो है स्टेशंस बन जाएंगे और जो एरियाज जिन्हें बेनिफिट होने वाला है ना उनमें न्यू कोंडली, पड़पड़गंज, गीता कॉलोनी, गांधी नगर मार्केट, कैलाश नगर, ये सभी इतने जो है ना ट्रैफिक वाले रूट्स हैं, यहाँ पर अगर मेट्रो आती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग झटपट से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाया करेंगे। वेल कई बार ऐसा होता है ना, हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हम क्या गा रहे होते हैं, हाँ हाँ वही, बस किसी तरह इस ट्रैफिक से निकल जाएं।

वेल हो जाता है कभी कभी मूड भयंकर। और पहले के टाइम की बात करें, सतयुग में मूड भयंकर होने पर श्राप दे दिए जाते थे, और अब हम क्या कर रहे हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी आप सुन रहे हैं FM रेनबो प्रोग्राम सैटेलाइट्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त रजन। चलिए इवनिंग प्लान कर लेते हैं, शाम को क्या क्या कर सकते हैं आप। चलिए इंडिया हैबिटेट सेंटर स्टीन ऑडिटोरियम, यहाँ शायद शाम 7 बजे से ओडिसी डांसर जो है आपके लिए परफॉर्म करने वाली हैं और पारंपरिक ओडिसी नृत्य देखना यदि आपको पसंद है तो ज़रूर प्लान कीजिए। और दिल्ली आर्ट गैलरी में आप फेसिस एंड फेस्टिस जो कि सत्यजीत रे पर आधारित है, इनके जीवन पर आधारित है और ये महान फिल्मकार सत्यजीत रे के जीवन और उनकी जो क्रिएटिविटी थे ना उसको हाईलाइट करती एक प्रदर्शनी होगी। और आप त्रिवेणी कला संगम भी जा सकते हैं, यहाँ भी कला प्रदर्शनी, शिला संवाद, डायलॉग ऑफ रॉक्स, द साइलेंट डायलॉग ऑफ रॉक्स को एंजॉय कर सकते हैं 11 बजे से शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपने जो अपना रूट आप कैसे जाने वाले हैं वो डिसाइड किया है कि आप थ्रू बस जाने वाले हैं और स्पेशली फीमेल्स, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिंक कार्ड या पिंक टिकट के थ्रू जाने वाले हैं तो अभी तो आप डेफिनेटली पिंक कार्ड पर शिफ्ट हो जाइए क्योंकि पिंक टिकट जो है अब वो थोड़े टाइम बाद बंद कर दी जाएगी। 1 जुलाई 2026 तक पूरी तरह से पिंक टिकट जो है वो बंद कर दी जाएगी, तो जल्दी से अपना सहेली पिंक कार्ड बनवा लीजिए। और देखिए 58 केंद्र हैं जहाँ पर कि आप जा सकते हैं और अपने लिए सहेली जो कार्ड है सहेली पिंक कार्ड ये बनवा सकते हैं। अभी तक दिल्ली की 6 लाख महिलाएं आपसे आगे निकल गई हैं, उन्होंने बनवा लिया है, आप ही रह गए हैं। तो बस आपको क्या करना है, अपना एक आईटी प्रूफ लेना है, अपना फ़ोन नंबर यानी अपना मोबाइल साथ लेना है और पहुंच जाना है पास सेक्शन, DTC ऑफिस के पास सेक्शन में जाइए और जल्दी से अपना सहेली पिंक कार्ड बनवा लीजिए। देखिए ट्रैफिक में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, DTC सर्विस की भी बात कर ली है, मेट्रो की भी बात कर ली है और आप अगर अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रैफिक में तो ना फंसे, इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया, लेकिन सेफ्टी अभी भी आपके अपने हाथों में है। सो फोर व्हीलर पर निकले तो अपनी ट्रैफिक स्पीड का ध्यान रखेंगे और टू व्हीलर्स जो हैं वो भी स्पेशली दोनों पर्सन हेलमेट लगाएंगे और सुरक्षित चलेंगे।

0: देखिए ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि कभी कभी कुछ लोग मुंदरी पहन लेते हैं, हाथ पीले कर लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ और हैं जो हाथ नीले करते हैं, एग्जाम्स देते हैं। जी हाँ, अब बात करूंगी नीट परीक्षा की। 2026 की इस परीक्षा की बात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सैटेलाइट्स, और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रंजियां। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 3 मई को जो है मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की थी, जो कि अब जो है रद्द कर दी गई है, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये पहले से लीक हो गया है। 3 मई को 23 लाख बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, और 7 मई से ये खबरें आनी शुरू हुई कि भाई अब जो है कुछ गड़बड़ी सामने आई है, पेपर

लीक हुआ है, तो अब स्टूडेंट्स के सामने कई क्वेश्चंस हैं कि अगर दोबारा फीस देनी पड़ेगी और क्या क्या होने वाला है। तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों का जो है मैं जवाब देने का प्रयास करती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या दोबारा परीक्षा देनी होगी और कब होगी, तो परीक्षा तो दोबारा देनी होगी और जो शेड्यूल है वो अब से 7 से 10 दिन में जो है रिलीज कर दिया जाएगा। और आप सोच रहे हैं क्या अब आपको फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कोई अभी

भी आपको लौटा दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। एनटीए खुद जो है अब पूरा एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करने वाला है, और आपको जो है परीक्षा केंद्र कैसे मिलेंगे, क्या होगा, इस पर कोई बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब भी ये बात स्पष्ट की जाएगी, आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भरोसा करना है। और हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं, वो नोट कर लीजिए। ये हैं 0114075900, और दूसरा फ़ोन नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर है वो है 0116922700। और आप ईमेल एड्रेस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है neet/ug@nta.ac.in। सो ऑफिशियल जो भी आपके सामने आएगा उसी पर बिलीव कीजिएगा, यहाँ वहाँ से आप सोर्सेस पर बिलीव बिल्कुल मत कीजिएगा। सुनते रहिए रेनबो 102.6, मैं हूँ सृजन आपके साथ।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात हम करेंगे लता मंगेशकर जी की पहली प्रस्तुति आकाशवाणी के माध्यम से। कब हुई, कैसे हुई और श्रोताओं तक वो कैसे पहुंचा, आइए जानें। 16 दिसंबर 1941 को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सुरीली आवाज देश के श्रोताओं तक पहुंची। इस पहली रेडियो प्रस्तुति में उन्होंने 2 मराठी नाट्य गीत पेश किए जो उनके ऐतिहासिक संगीत सफर की आधारशिला बनी। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रम जयमाला का संचालन भी किया था। आकाशवाणी के साथ उनका ये जुड़ाव आज भी एक स्वर्णिम स्मृति के रूप में याद किया जाता है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम सैटेलाइट्स और मैं हूं दिल्ली की चाशनी गुरेश रजन। हो सकता है कि आपके सपने कुछ डिफरेंट करने के हों या फिर कुछ नया तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो आप ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, इन कोर्सेज की तरफ भी आप अपना ध्यान दे सकते हैं। जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी RCA में कोचिंग और करियर योजना केंद्र जो है, सिविल कोचिंग सेंटर जो है, उसमें यदि आप यहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट रहेगी 26 मई। और आपको कैसे एडमिशन लेना है इसके लिए आप विजिट कीजिए admission.gmi.ac.in। और यदि आप चाहते हैं कि आप IPU से पैरामेडिकल कोई कोर्स करें तो इसके लिए भी आप आवेदन कीजिए। लिंक जो ऑफिशियल लिंक है, वेबसाइट है, वो है www.ipu.ac.in या फिर आप विजिट कीजिए www.ipu.admission.nic.in। और देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप दिल्ली में अब तैयार हैं कि पढ़ाई लिखाई हो गई है, दिल्ली में कहीं घर लेना है, कुछ करना है, तो आप DDA के टावरिंग हाइट्स ईस्ट दिल्ली में जो प्रोजेक्ट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, मीन्स मोर जानकारी के लिए, आपको विजिट करना होगा dda.gov.in। आप यहाँ DDA के कॉल सेंटर पर कॉल करके भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हाउ टू अप्लाई सभी क्वेरीज के लिए आप इस नंबर को भी डायल कर सकते हैं। ये है 1800110032।

चलिए अब आपको कुछ अच्छी खबर। जी हाँ, बात की सारी खबरें भी अच्छी हैं, सही हैं, अगर आप सकारात्मक देखें। और सकारात्मक बात पर जो मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है वो देखिए कि जो लोहा है, यानी लोहा अपने आप में बहुत सॉलिड है, उसको जल्दी से आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन जब जंग लोहे का अपना जंग रस्ट हो जाता है ना, तो वो उसको नष्ट कर सकता है। ऐसे ही यदि आप मेंटेलिटी, यानी आपकी सोच अगर सही दिशा में नहीं जा रही है ना, तो ये भी इंसान को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। चलिए हम अपनी बात पर आते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज की अब मैं बात करने जा रही हूँ, तो क्या नया है, बहुत सकारात्मक बात है। 145 साल बाद महिला प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर कोई कार्यभार संभालने जा रही है। पहली महिला प्रिंसिपल के तौर पर जो है प्रोफेसर सुसान एलियस जो है नियुक्त हुई हैं, और जून के फर्स्ट वीक से वो सेंट स्टीफन कॉलेज में 145 साल बाद बनने वाली महिला प्रिंसिपल होंगी। ये कॉलेज अपने आप में खास है, और मैम की बात करें तो ये कंप्यूटर साइंस और एआई की एक्सपर्ट हैं, तो ये मानती हैं कि कुछ ऐसे विकास, कुछ ऐसे सकारात्मक प्रयास होने चाहिए जिससे कि बच्चे, जो हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो भविष्य बदल रहा है, उसके प्रति जो है तैयार हो जाएं। और जून जुलाई में जो एडमिशन्स होंगे वहाँ भी वो इस बात का पूरा जोर ध्यान रखेंगी और प्रयास करेंगी कि ये सब सही हो। सेंट स्टीफन कॉलेज से जुड़ी एक हिस्ट्री ये भी है कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था ना, उनका भी गहरा जुड़ाव रहा है इस कॉलेज से। तो अब इस बात ने अपने आप में जो सकारात्मकता है वो खुश करती है, और खुशी चेहरे पर आ ही जाती है। जी, जनगणना की भी एक और तैयारियां हो चुकी हैं, और अब घर घर पहुंचेंगे जनगणना कर्मी, तो 16 मई से विजिट स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में जो आपके घर जनगणना के लिए व्यक्ति आएगा, उसके पास उसका आई कार्ड तो होगा ही, यानी प्रभारी अधिकारी जो भी है उसके पास आई कार्ड होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका अपना आईडी कार्ड होगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि उनके पास इस आई कार्ड पर एक QR कोड होगा, उसे स्कैन करके कि आप उनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ, है ना, अपने आप में वो बात जो कि आपको ध्यान रखनी है। तैयार हो जाइए और सही सही जानकारी देकर आप भी जनगणना में सहभागी बनें।

दिल्ली की चाशनी सृजन के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और अगला प्रोग्राम लेकर आएंगी नेजा चतुर्वेदी मिसेज मसाला मिक्स। 6 से 7 आप सुनेंगे और उसके बाद 7:05 से हरप्रीत कौर वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट सॉन्ग्स पर बेस्ड ये प्रोग्राम होगा। और म्यूजिक मस्ती नॉनस्टॉप डांस नंबर्स लेकर एक बार आठ से नौ नेजा आपके साथ रहेंगी। आपकी याद आती रही 9 से 10 आप रेखा चौधरी के साथ सुनेंगे, और हरप्रीत कौर 10:05 पर आपके लिए वेस्टर्न म्यूजिक रेनबो क्लासिक्स लेकर आएंगी। रेखा जो है आपके साथ बनेंगी अगले और प्रोग्राम में रंगे महफिल, जी हाँ, जहां पर आप गजलें सुन सकते हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं इस रंगों की दुनिया में, गानों के रंगों की दुनिया में।

यार डांस तो करते ही हैं बच्चे, बच्चों की बात कर रही हूँ, बच्चों को सीखना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे में समर कैंप्स में आप मातृभाषा के साथ साथ दूसरी अन्य भारतीय भाषाएं भी सीख सकते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी विद्यालयों में जो है ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में, अब गर्मियों की छुट्टियों में जो है शिविर लगने जा रहे हैं, जहाँ पर आपके पास यानी छात्र छात्राओं के पास मौका होगा कि वो भारतीय भाषाओं को सीख सकें और साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा को भी सीख सकें। तो आपसी सम्मान, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद पॉजिटिव वे रहेगा। आप जरूर नई नई भाषाएं सीखिए, क्योंकि भाषाएं दिलों को ही नहीं देश को भी जोड़ती हैं।

फिलहाल नाश्ते गाते अपनी दोस्त आरजे सृजन को दीजिए इजाजत। जैसे हम जाते हुए किसी के साथ विदा लेते हुए कहते हैं ना कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मैं कहती हूँ कि देखिए मिलते रहे तो ही जिंदा रहेंगे। ये सफर, ये साथ आप सभी के साथ और खूबसूरत हो जाता है। दिल से दिल तक सृजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर

फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपके साथ आरजे नीरजा और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज मैं बात करना चाहूंगी आपसे खेल की और खेल के साथ साथ दोस्ती की। अगर आपकी दोस्ती किसी खेल जैसी, किसी खेल से हो जाती, आप अपनी दोस्ती को किसी खेल से जोड़कर बताना चाहते तो वो कौन सा खेल होता और क्यों होता? क्या ऐसी ख़ास बात होती जिसको आप उसे जोड़कर बता पाते? बचपन में

बहुत सारे खेल आपने खेले होंगे, लेकिन उसके बाद भी जब आपके दोस्त मिलते हैं, जब आपके मित्र मिलते हैं, तो ऐसा लगता होगा कि आपकी दोस्ती है ना किसी खेल जैसी हो गई है। तो बताइए वो कौन सा खेल है और क्यों, सोचिए और जवाब दीजिए। और मैं भी बताने वाली हूँ मेरे लिए कौन सा खेल किस तरह का है और दोस्त हैं वो किस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। और आपको ये मैसेज बताने के लिए व्हाट्सएप करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। ये नंबर नहीं भूलना दोस्त, क्योंकि ये दोस्ती पक्की है और दोस्ती कैसी है ये ज़रूर बताना। क्रिकेट जैसी तो नहीं है, या फिर बैडमिंटन जैसी।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं नीरजा लेकर आ गई हूँ दोस्ती का मौसम, और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज दोस्ती की पिच पर एक मज़ेदार सवाल लेकर आई हूँ। अगर आपकी दोस्ती किसी खेल जैसी होती तो वो कौन सा खेल होता? सोचे सोचे ज़रा ध्यान से सोचिए, आपकी दोस्ती क्रिकेट जैसी होती, कबड्डी जैसी होती या फिर शतरंज जैसी? फिलहाल आपको ये बता दूं कि बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जवाब भी आ गए हैं। मोहम्मद सरफराज आलम का बिहार से मैसेज आया है, कहते हैं दोस्ती हमारी क्रिकेट जैसी है नीरजा जी, जहाँ भरोसा बैट बनता है और साथ क्रिकेट की तरह मजबूत रहता है। हार जीत तो जिंदगी का मैच है, मगर सच्चे दोस्त हर ओवर में साथ निभाते हैं। और एक पंक्ति में अगर कहूँ तो कुछ ऐसे कहूँगा कि दोस्ती की पिच पे ये रिश्ता कमाल होता है, दोस्ती की पिच पे ये रिश्ता कमाल होता है, हर मुश्किल में दोस्त ही ढाल होता है। जीत जाए तो ताली, हारे तो हौसला देते हैं, सच्चा यार ही जिंदगी का असली खेल होता है। कितना खूबसूरत संदेश है, मुझे तो लगता है प्रोग्राम की शुरुआत इतने प्यारे मैसेज के साथ हुई है, तो बस आप मेरे मन की बात तक बिल्कुल पहुंच गए हैं। आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से मैसेज आया है हमारे पास, कहते हैं पहले ही गाने राधा रानी के गीत बहुत पसंद आया और हम भी शामिल हो गए हैं, हमारी अटेंडेंस भी लगवा दीजिए। बिल्कुल अटेंडेंस लग गई है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और केशु। जो सवाल मेरा है ना उससे ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आगे तभी शामिल कर पाऊँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। और बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है जब आप इस तरह से जुड़ जाते हैं, जिस विषय से जुड़ी हों दोस्त उस पर ज़रूर आ जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश गिरी रामनगर है। सीरियसली? ओके, मतलब आकाश गिरी हैं और ये रामनगर से हैं। मेरी धर्मपत्नी ज्योति बहुत प्यारी हैं, लेकिन मैं जानबूझकर भी उसे गुस्सा दिलाता रहता हूँ, क्योंकि उसे मनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसे मनाना मुझे एक प्यारा सा खेल जैसा लगता है। आई लव माई वाइफ, क्या बात है, ऐसी भी दोस्ती होती है, देख लीजिए कितनी प्यारी दोस्ती है ना। अपना अपना अंदाज़ है प्यार करने का। चलिए, अनिल शर्मा जी वरिष्ठ कहते हैं सरिता विहार से, मेरी दोस्ती नीरजा शतरंज के खेल जैसी लगती है, कभी प्यार के साथ खेलते तो बाजी मार लेता हूँ, वैसी जिंदगी खुद एक खेल से कम नहीं है, फ़र्क इसमें सांसों के

खेलने का है, जब वे हावी हो जाती हैं तो इंसान बाजी हार जाता है, यही नसीब का खेल बड़ा ही रोचक लगता है। बिल्कुल अनिल जी, और यही तो बढ़िया बात है कि हर वक्त ना वो एक जोश सा बना रहता है, और अगले पल की जो खबर नहीं होती ना हमें कि क्या होने वाला है, वो बड़ा मज़ेदार होता है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं हाय म्याम नमस्ते, और ऑनलाइन माध्यम से ही हमें सुन रहे हैं और कहते हैं बैडमिंटन खेल मुझे बहुत पसंद है, करीब 25 साल से खेल रहा हूँ और मेरी लाइफ में जो मेरे नज़दीकी दोस्त हैं मुझे ऐसा लगता है वो बैडमिंटन की तरह हैं। क्या बात है, मुझे तो बचपन से ही ना खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्या खेलना? आई स्पाइस। ओके, और हल्की लगता है था, और वक्त इसका प्रनंस, मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगता था और ये खेल आज तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रयागराज से निधि हमारे साथ जुड़ी हैं। निधि, अपना संदेश अगर हिंदी में लिख के भेजेंगी, हिंदी की बात, तो बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैं पूरा पढ़ पाऊँगी, बहुत लंबा मैसेज है, और अगर समय मिला तो दोबारा देखते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं गुड इवनिंग नीरजा जी, और कार्यक्रम में दोस्ती की बात की है तो मेरी दोस्ती मेरे दोस्त लूपा लुका छिपी खेल जैसी है, और मेरे दोस्त से बहुत दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाती। अरे अरे अरे अरे, ऐसा हमारा भी है, लुका छुपी खेल रहे हैं हम लोग भी, जैसे कि लुका छिपी का खेल चल रहा है ना, एक दूसरे को ढूंढते ही रहते हैं। अरे पंकज जी, वैसे भी आप तो पंकज हैं और मैं भी वहीं, मेरा नाम भी आपसे बड़ा जुड़ता हुआ सा लगता है ना, लेकिन और आपका और मेरा ना दोस्ती का रिश्ता भी एक जैसा ही चल रहा है, लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरुण दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं क्रिकेट मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा दोस्त है, जिसे हम बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों पर रहकर खेल सकते हैं। क्या बात है, मतलब जब मन में आया तब आप आगे आ गए और जब मन किया तो पीछे चले गए, लेकिन मैं आपको हमेशा आगे रखूंगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि दोस्त तू है कि नहीं, ये ज़रूर बता दीजिएगा और मैसेज के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आपको संदेश भेजना है, 9818 9868107070, ये वो नंबर है जहाँ हम जुड़ जाएंगे और ये बात करेंगे कि कुछ दोस्त क्रिकेट जैसे भी होते हैं, हर मुश्किल में टीम बनकर साथ निभाते हैं, और कुछ बैडमिंटन जैसे, बिना तालमेल के खेल ही नहीं चलता। आपकी दोस्ती किस खेल जैसी है, जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए दोस्त। अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये ट्रैक आपके लिए, ताकि आपका ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहे। सुनो, सुन रहे हो ना?

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां हम किसी ना किसी विषय से जुड़ते हैं और जानते हैं आपके दिल के जज्बात किस तरह से उसे नए नए मोड़ देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। कुछ दोस्त क्रिकेट जैसे होते हैं, हर मुश्किल में टीम बनाकर साथ चल देते हैं, है ना, मैं बात कर रही थी। और दोस्ती भी एक खेल जैसी ही तो है ना, कभी जीतते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मना लेते हैं, लेकिन असली दोस्त वो हैं जो हर वक्त साथ हों। बताइए, ऐसा कौन सा दोस्त है, ऐसा कौन सा खेल है जिसे आप अपने दोस्त के साथ जोड़कर बताना चाहेंगे? हमारे पास मैसेज आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से, मधु नायक। अरे वाह, ओके। आप लिखते हैं कि जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम ट्रेन में EMU में ये गाना सुनते हैं, और जब आप सवाल पूछते हैं तो कई बार हम वंचित रह जाते हैं। तो अगर कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर बार आपको अपना विषय जोड़कर बता रही हूँ। और अगर आप इस बार सुन पाए हों तो ज़रूर आप लिख के भेजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। हाय नीजा, आई एम आदर्श फ्रॉम बिहार। ओके, मैं अपनी दोस्ती को कबड्डी की तरह देखता हूँ, क्या बात है, और कबड्डी प्लेयर भी रह चुका हूँ, वेरी नाइस। दोस्ती बिल्कुल कबड्डी जैसी होती है, एक दोस्त हमेशा रेडार बनकर तुम्हारी लाइफ की टेंशन में घुसता है और तुम्हें टच करके परेशान करता है, और जब तक तुम उसे पकड़ के टांग ना खींचो उसकी, तो गेम पूरा ही नहीं होता। ज़िंदगी में कितनी भी लाइन पार कर लो, पीछे से टांग खींचने वाला दोस्त ही तुम्हें ज़मीन पे जोड़े रखता है। क्या बात है, कितनी पॉजिटिव तरीके से आपने इस बात को जोड़ा है। मुझे भी बचपन में खेला अपना कबड्डी का खेल याद आ गया और बहुत सारे दोस्त भी याद आ गए। कस्बा गुन्नौर UP से फारूक अली खान लिखते हैं कि हमने खेल तो बहुत कम खेले हैं, पतंग खूब उड़ाई है, और खेलों के मुकाबले पतंग उड़ाते समय रेडियो सुनने को मिल जाता था, और हमारा दोस्त तो शुरू से रेडियो ही रहा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और बिल्कुल जब आप इस तरह से लिखते हैं ना, एक अलग सा जुड़ाव सा महसूस होता है। जय श्री महाकाल। VG दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, आजकल हमारी दोस्ती छुपन छुपाई जैसी हो गई है, शादी के बाद सब छुप गए, कोई किसी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। क्या बात है, तो कोई बात नहीं, शुरुआत आप कीजिए, आप पहले जाके धप्पा कीजिए, है ना, और जब आप ऐसा करेंगे ना तो बात ज़रूर बनेगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड इवनिंग नीरजा मैम, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। वैसे तो ज़िंदगी अपनी अलग ही तरह चल रही है, जाने कब कौन सी कदम पे डस ले। अरे बाप रे, वैसे मेरी ज़िंदगी की जो सीढ़ी है, अच्छा सांप सीढ़ी की तरह है, ये मेरी जीवन साथी है जो 20 साल से मुझे संभाल रही हैं, और सबसे अच्छा दोस्त तो मैं कहूँगा वही है। क्या बात है, बहुत ही गज़ब तरीके से आप बात कर रहे हैं और मज़ा आ गया है ना। रिया उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं, मैम मेरी दोस्ती ना मेरे एक साथी के साथ ना टेबल टेनिस जैसी है, मैं बॉल दूं और वो टेनिस, और बॉन्ड ऐसा है कि नेट पर भी बार बार कोशिश ही करती रहती हूँ और वापस उसके पास मुझे ही जाना पड़ता है। ये खेल भी ना अलग ही होता है ना, कोई कोशिश ही करता रह जाता है और कोई बस एक तरफ ही रह जाता है। नमस्ते, गुड इवनिंग, मैं साहिल धवन दार्जिलिंग कुर्सियोंग से, और मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, और बिल्कुल क्रिकेट जैसी दोस्ती लगती है। हमारी दोस्ती शतरंज के खेल जैसी है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से मुझे बता रहे हैं, और फिलहाल मैं अपनी दोस्ती के लिए आपको एक ट्रैक सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये समय सफ़र का है। कोई ट्रेन में है, कोई बस में है, कोई गाड़ी में है, कोई ड्राइव कर रहा है, तो आपका सफ़र बहुत प्यारा होना चाहिए, है ना। और हाँ दोस्त, मैसेज

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और बातें हो रही हैं आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। और जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच आई हूं वो कैसा है भाई, मैं पूछ रही थी क्या आपका दोस्त कबड्डी जैसा है, मतलब हर मुसीबत में कहता हो मैं हूं ना और खींच लेता है आपको, बचा ले जाता है, या फिर शतरंज जैसा है जो कम बोलता है लेकिन हर चाल समझ कर चलता है। तो आपका दोस्त, आपकी दोस्ती किस खेल जैसी है और आपको अपने दोस्त के साथ कैसा लगता है बताइए हमें 9818610107070। बिल्कुल, नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 9868107070। ये वो नंबर है जहाँ संदेश आ रहे हैं मुझ तक, जिस तरह से निधि का प्रयास

रात से मैसेज आ गया है। कहती हैं कि मुझे बचपन में ना आइस पाइस खेलना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त लगता था कि जब लाइफ में सब कुछ ठीक ना हो तो गायब हो जाओ और जो अपना होगा वो ढूंढ ही लेगा। कभी कभी लगता है कि मुझे जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से डर लगता है और सिचुएशन से भाग जाती हूँ। हाँ, सच है ये। और FM रेनबो से तो रिश्ता ऐसा है।

भी हो सामने ज़रूर जाके सामना करना चाहिए। और कई बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें छूट जाती हैं, तो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। और इससे पहले कि गाड़ी छूट जाए दोस्त, जाकर बात कर लेनी चाहिए। बहुत ही प्यारी सी पंक्तियाँ लिखकर भेजी हैं। लिखा है नीरजा जी, 2 वर्ष पूर्व ये कविता लिखी थी और आज तो भाई टॉपिक से मैच कर गई। अच्छा जी, दोस्ती कभी क्रिकेट की तरह भरोसे का चौका लगाती है तो कभी फुटबॉल बनकर दूरियां दूरियों को भी पास ले आती है। बैडमिंटन सी हल्की बातें दिल को सुकून दे जाती हैं, हॉकी जैसे तेज़ यादें हर पल साथ निभाती हैं, शतरंज की चालों जैसी समझ सच्चा दोस्त रखता है, हर मुश्किल के मोहरे को हंसकर मात वो करता है, कबड्डी की पकड़ जैसी रिश्तों में मजबूती होती है और वॉलीबॉल सी उछलती खुशियों में दोस्ती की रोशनी होती है, टेनिस की गेंद सा वक्त चाहे कितनी बार पलट जाए, सच्चा यार हर हालत में अपनेपन से गले लगाए, कैरम की गोटी जैसे सपने मिलकर आगे बढ़ते हैं और दौड़ के खिलाड़ियों जैसे दोस्त मंजिल तक साथ चलते हैं, कुश्ती जैसा दम भी होता है, सच्चे रिश्तों की बाहों में हार नहीं मानते दोस्त कभी अपनों की राहों में, जिंदगी एक खेल सही पर सबसे प्यारा रिश्ता दोस्ती है, हर मैदान में जीत दिलाए वही असली हस्ती है। मोहम्मद सरफराज आलम, बहुत खूबसूरत रचना आपने लिखी और मानना पड़ेगा। बहुत सारे खेल जोड़ दिए और आपने दिल भी लोगों के जीत लिए। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ा गांव से कहते हैं कि हमारी दोस्ती खो खो के खेल जैसी है, खुद से दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखने वाली और ज़िंदगी की समस्या को आउट करने वाली। और गुड्डू जी, पता है आज मैंने सच में खो खो का खेल खेला और मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत टाइम बाद मैंने ये गेम खेला। हेलो, मैं भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से, और आज के टॉपिक पर यही कहना चाहता हूँ कि मेरी तो फ्रेंडशिप क्रिकेट से है, क्योंकि मेरी लाइफ के पिच पर मैं कई बार फेल हुआ और जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने सेंचुरी मार दी है। और साथ में मेरी फ्रेंडशिप बैडमिंटन से भी है, क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट के बिना मैं ये नहीं कर पाता। आखिर लाइफ भी तो एक टीम गेम जैसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और बहुत ही अच्छे अंदाज में कह रहे हैं। शांति नगर सोनीपत से मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जी का, और कहते हैं कि बचपन में हमारे दोस्त थे कॉमिक्स रीडिंग, चाचा चौधरी, मोटू पतलू, नंदन चंपक जैसे, और इंडोर गेम्स में हमारे दोस्त थे कैरम बोर्ड, लूडो, चिड़िया उड़, तोता उड़। और सच बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा गेम यही लगता है और बहुत बार खेलती हूँ और आज भी खेलती हूँ। गुड मॉर्निंग नीजा मैम, मेरी दोस्त का क्रिकेट ना बैडमिंटन की तरह खेल हो गया है। दोस्त तो मेरी ब्रीदिंग की तरह है और हर श्वास में हमेशा मेरे साथ है, ऐसा मीरा सिंह सिलचर आसाम से कह रही हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बहुत खास हैं दोस्त और हमेशा हमारे दिल के पास रहते हैं, इसलिए दोस्ती आपसे ज़रूर निभानी है। और दोस्ती की है तो जीवन भर के लिए है। हम भारतीय हैं, जब एक बार रिश्ता बनाते हैं तो बस बना लेते हैं और फिर बनाए रखते हैं, है ना। आप हमारे साथ हैं और साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे ऐसे ही। कैसे हो दोस्त, लिखकर भेजो कैसी है हमारी दोस्ती और आपकी दोस्ती।

बिल्कुल, आप ही हैं हमारे मीत और आप ही का मैसेज का इंतज़ार कर रही है नीरजा। और नंबर तो जानते हैं ना, आप भूले तो नहीं है ना, 9868107070। और कहना ये है कि आज मैसेज मसाला मिक्स में खेलेंगे दोस्ती का सबसे प्यारा जज्बा, सबसे प्यारा मैच। आपको बस इतना बताना है कि आपकी दोस्ती कौन सा खेल है और क्यों है। सबसे दिलचस्प जवाब, भाई मुझे तो लगता है एक से बढ़कर एक दिलचस्प जवाब आ रहे हैं। नियमित श्रोता हर्षवर्धन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, जानती हो 1976 में मैं कक्षा 5 में पढ़ता था और तब गुल्ली डंडा खेलता था और बहुत मज़ा आता था। सच में हर्षवर्धन जी, आपने मुझे बचपन याद दिला दिया और मैंने भी ये खेल खेला है और बहुत टाइम हो गया है, मौका मिला ना तो अब ज़रूर खेलूंगी फिर से। और कहते हैं कि अब जब घर में मैं बच्चों को बताता हूँ ना कि मैं बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था, तो सब कहते हैं भाई अब खेल के बताओ। लेकिन अब क्योंकि उम्र हो गई है तो दिखता भी कम है, इसलिए कई बार हो नहीं पाता। लेकिन हाँ, बचपन का दौर बहुत ही खूबसूरत था, सच में सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से, मधु नायक जी भी हैं और सच में इन्होंने मेरी बात सुन ली, थैंक यू। और लिखकर भेजा है कि जीवन में अच्छे दोस्त का होना भी ज़रूरी होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत। लेकिन जब कोई दोस्त बनकर दगा दे, दुखी मन से यही आह निकलती है कि लोग बन बहारों की बात करते हैं, कुछ तो चांद सितारों की बात करते हैं, जो हमारे हाथ थे हमारे ना रहे, हम उन बेवफा यारों की बात करते हैं। अरे बिल्कुल नहीं है ऐसा, कई बार परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि बात नहीं बन पाती। हमें इस तरह से भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक वो वक्त था जब वो बहुत ख़ास था और किसी एक बात के लिए वो सारे इमोशंस ख़त्म तो नहीं हो सकते ना। रवि जोशी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, शुभ संध्या, मेरी दोस्ती हॉकी खेल जैसी है, छोटे छोटे पास से अपने साथियों के साथ गोल पा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय कुमार एमपी से। ओके अक्षय कुमार, सुन के ना अक्षय जी मुझे लगा बॉम्बे से, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश से आप मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कहते हैं कि उन्हें गाना बहुत अच्छा लग रहा है और ज़िंदगी भी अपने आप में किसी खेल से कम नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बात तो है ही। और अने

जी का मैसेज आया है सरिता विहार से, कहा है कि जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह देखता हूँ, सीढ़ी से करूँ तो सांप नजर नाराज देखता हूँ, नीचे सांप स्वार्थी दोस्त डसने तैयार देखता हूँ, आखिर खेल में विजय सुरक्षित और पूरे अंक की जीत देखता हूँ। और सबसे अच्छी जीत है कि जब हमारे दोस्त हमारे साथ हों, बाकी नहीं तो फिर उन अंकों का कोई मोल ही नहीं है। और हमारे पास अगला संदेश आया है गुन्नौर से, आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं, मेरा पसंदीदा खेल है कबड्डी, सामने वाले पार्टी में पहुंचे तो दुश्मन अपनी पार्टी में आ जाए तो दोस्त साबित करके ये गेम दिखा देता है। हाँ ये बात तो है। गुरुग्राम से कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं खुशी में सब साथ होते हैं पर दोस्त वही जो मुश्किल में हाथ थामे, और दोस्ती एक ऐसी मंजिल है जो साथ मिलकर ही हासिल हो सकती है। हाँ बिल्कुल दोस्त, तुमने अभी मैसेज नहीं किया है और मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। हमारा नंबर है 9868107070। मैं नवूल वरक और मलपण गुआ से मैं जुड़ा हूँ, और मैं दोस्ती को सुख और दुख की तरह देखता हूँ। और मैडम आज हमारे शादी है और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर में है, और शादी के गीत सुनवाए जा रहे हैं और आप FM रेनबो सुन रहे हैं। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये गीत आप ही के नाम करती हूँ, बहुत प्यारा है, अपने अपनों का है इसलिए। सारी गलियां कूचियां आप ही को याद कर रही हैं, बस संदेश भेज दीजिए।

राधे राधे जी, मुझे अपने पुराने दोस्तों के साथ पानी में स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा कह रहे हैं ईश्वर चंद प्रजापति दिल्ली बवाना से कह रहे हैं जी। बिल्कुल, स्विमिंग बहुत ही अच्छा खेल है और मुझे भी अपना बचपन याद आ गया आपकी बात सुनकर। और बहुत सारे श्रोता हैं जिनके मैसेजेस रह गए हैं, तो ज़रूर पढ़ती हूँ। शुभ संध्या नीरजा मैडम जी, ज़िंदगी सांप सीढ़ी की तरह है, जब अच्छे मौके और सहयोगी मिल जाएँ तो ऐसा लगता है खेल की सीढ़ी आ गई, पर जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो लगता है सांप ने डस लिया है, ये है जिंदगी। ऐसा कहते हैं राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकर खेड़ा से मेरठ।

निधि हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी हैं और कहती हैं, जानती हो मेरी दोस्ती लूडो जैसी नहीं है, बल्कि जो चांस मिले और चले, बल्कि मुझे तो लगता है चेस जैसी है, समझदारी, ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग मूव्स के साथ चलने वाली। क्या बात है निधि।

अररिया बिहार से दानिश का मैसेज आया, कहते हैं बचपन में तो मज़ा था, वो कहाँ है अभी, ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है क्या कहूँ। बचपन में हम लोग एक साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, अब भी क्रिकेट पसंद है लेकिन खेल हम लोगों की दोस्ती को तब भी जोड़ता था, वक्त मिला तो आज भी छोड़ेगा। रग्बी रेजा भी इनके साथ हैं।

शैलजा निमराना से कहती हैं, जानती हूँ सवाल का जवाब भेजने से अच्छा तो मुझे आंसर सुन के लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सच में शैलजा, मुझे भी। और दोस्तों चलते चलते आपसे यही कहना चाहती हूँ और कि दोस्ती के इस खूबसूरत से खेल में आपका जवाब अगर बाकी रह गया है तो बताइए उन्हें लिखकर, और मैं ले रही हूँ इजाज़त, लेकिन 8 बजे फिर से एक बार हाजिर हो जाऊँगी कार्यक्रम म्यूज़िक मस्ती लेकर। नमस्कार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स हैं, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आरजे नीरजा है आपके साथ लेकर म्यूजिक मस्ती। और दोस्तों, मस्ती भी भरपूर होनी चाहिए और म्यूजिक वो तो भाई लगातार होना चाहिए। बिल्कुल गुरु रंधावा और जोनिता गांधी की आवाज में सिमरन से ये गीत आपके लिए। और आप डांसिंग फ्लोर से बिल्कुल उतरना मत दोस्त।

सुखविंदर सिंह, मिका और आनंद राज आनंद की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए। और दोस्तों, जश्न की रात है, 12वीं का रिजल्ट आया है, तो बिल्कुल घर का माहौल समझ रहे हैं हम, और आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन तरह।

बिल्कुल, आपको संभालते हुए शिव रंजनी सिंह की आवाज में लिए चल रहे हैं अगले ट्रैक पर। ना दोस्तों, म्यूजिक मेरा कम होगा और ना मस्ती आपकी कम होनी चाहिए।

कविता कृष्णमूर्ति और शाशा तिरुपति की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए। दोस्त जितने डांसिंग फॉर्म्स आते हैं ना सारे ट्राई कीजिएगा, सब कुछ लेकर आऊंगी।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, जिसमें म्यूजिक और मस्ती बिल्कुल भरपूर है दोस्त। और अब जो ट्रैक लेकर आ रही हूं वो है ज्योति नूरन की आवाज में, और इसका कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि आपकी शाम बिल्कुल झूमती रहे और अपने अपनों के बीच आप इतने मस्त रहें कि सुबह से अभी तक की जितनी भी थकान थी ना सब उतर जाए।

बिल्कुल दोस्त, आप चांद को पकड़ने लग जाइए, और अगर कोई डांसिंग फ्लोर पे अभी तक ना आया है तो उससे पूछिए ना कि डू यू वांट टू डांस विद मी। मैं पूछ रही हूँ दोस्त आपकी तरफ से, पूछ लीजिए बड़े प्यार से, जाइए ना उनके पास, लेकर आइए डांसिंग फ्लोर पर अपने साथ, और जोड़ लीजिए म्यूजिक मस्ती में उन्हें भी हमारे साथ।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: म्यूजिक मस्ती।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और ये सफ़र 9 बजे तक है, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ेगा आपकी याद आती रही कार्यक्रम लेकर, जिसमें होंगी रेखा चौधरी हमारे साथ और फिर 10:05 पर वेस्टर्न म्यूज़िक में एक बार फिर से हम हरप्रीत कौर से मिलेंगे और फिर 11:05 पर रंगे महफिल रेखा चौधरी के साथ हम एंजॉय करेंगे। और फिलहाल रेखा तुम आ गई हो ये सोच कर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये लिस्ट सुन लीजिए, सब कुछ लेकर आना है आपको।

और आपसे रابطہ जोड़ रही हूँ दिलजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, प्रदीप सिंह सिरेन और रफ्तार के साथ। ए होना है जी साडा नेक्स्ट मूव।

मैं समझ रही हूँ, जन्नत से नीचे अब आप नहीं आने वाले, नशा जो चढ़ गया है आपको, है ना? बिल्कुल बरकरार रखूंगी इस जज्बे को।

0: आकाशवाणी रेनबो पर मैं नीरजा लेना चाहती हूँ आपसे इजाजत इसी वादे के साथ कि अगली शाम अगली बार भी इसी जोश के साथ मिलूंगी दोस्त। और फिलहाल मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त रेखा हमारे बीच आ गई हैं, तो लीजिए ये गाना उनके नाम करते हैं और आप अपनी शाम गुनगुनाइएगा अपने अपनों के साथ मुस्कुराते झूमते हुए। बाय बाय।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये जानती ही हूँ कि आप भी मेरी तरह बेताब बेचैन ज़रूर होंगे इस प्रोग्राम के लिए। जी हाँ, वैसे तो आप सब आवाज़ से पहचान ही गए होंगे, लेकिन किंतु परंतु फिर भी हमारे साथ रोज़ नए लिसनर्स जुड़ते हैं, तो उनको बता दूँ कि मैं हूँ आप सबकी वही पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपकी याद आती रही। और आपकी याद आती रही में और भी मस्ती आने वाली है, क्योंकि आज का मौसम बदल गया है। थोड़ी सी आंधी थी, तूफान था, लेकिन हाँ, बारिश की बूंदें भी मस्त मस्त थी। वैसे तो मेरी प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग नहीं था,

देखिए ना, अब आते ही जो मेरी ड्यूटी ऑफिसर है उन्होंने कहा कि रेखा जी आप आते हो तो भले ही चार बूंदे आए लेकिन बारिश जरूर आती है। तो मेरा मन किया कि आज मैं इसी बात पर एक सॉन्ग चलाने वाली हूँ, और देखिए मैंने चला भी दिया। आशा करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। यूँ तो यादों का पिटारा इतना बड़ा है दोस्तों, कि इसे खाली कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस पिटारे में कुछ यादें रुलाती हैं, कुछ हंसाती हैं, कुछ यादों में होता है पछतावा। कभी कभी इस पिटारे से निकलते हैं, कभी कभी जो निकलती है ना चीज़ें, वो दिल को बहुत ही उदास कर जाती हैं। हाँ, और कभी कभी नासूर बने जख्म भी उभर आते हैं, और वक्त के साथ साथ कुछ राहत तो मिल जाती है, पर दर्द का एहसास कभी कभी पहले जैसा ही महसूस होता है। और ये दर्द कभी कभी अपनों से बातें करके इतना ज़्यादा होता है कि बस लफ्ज़ों के ज़रिए बयां कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप सभी के जो मैसेजेस हैं मेरे पास तक पहुंचने लगे हैं, लेकिन किंतु परंतु मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मैं सॉन्ग आपको सुनवा दूँ, और फिर ये यादों के पन्ने तो पलटे ही जाएंगे। जी हाँ, जितनी कोशिश हो सकेगी उतने ज़्यादा पन्ने पलटेंगे हम और आप।

और इन जख्मों के साथ साथ कभी कभी इतने खूबसूरत पल याद आ जाते हैं कि बस क्या कहें, जी करता है यूं ही संगीत सुनते रहें और अपनी बातों को ना कहकर सिर्फ और सिर्फ सुनते रहें, सुनते रहें।

अरे अरे, मेरे कुछ लिसनर्स ने तो अपने दिल पे ले ली मेरी बात। देखिए, इस सॉन्ग से पहले जो मैंने कहा आप सबसे, वो सबकी जिंदगी से मेल खाता हो ये तो जरूरी नहीं है, है ना। पर बात भी छोटी नहीं है, क्योंकि इस पिटारे में बहुत बहुत बहुत सारी यादें होती हैं। और यादें कैसी, कब, कहाँ, किसकी जिंदगी में हो, ये हम में से कोई नहीं जानता है। तो चलिए, तो मैं आप सबको निराश करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो आप दिल पे कोई भी ऐसी बात मत लीजिए जो आपको परेशान करे। एक और मेरे पास मैसेज आया है, जो सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया उसको ले लेते हैं। तो ये मेरे पास पहला मैसेज आया है, वो लिखते हैं, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक सौरभ अनिजा गाजियाबाद से, ये लिखते हैं। एक और मैसेज मेरे पास, शुभ संध्या रेखा चौधरी मैडम जी, दिल्ली में आई होंगी आंधी बारिश लेकिन किंतु परंतु मेरठ में मेरठ में तो केवल हवा शीतल हुई है। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से लिखते हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। आदाब, आवाज और अंदाज से ही काफी है कि रेखा चौधरी साहिबा जी तशरीफ फरमा चुके हैं, किंतु परंतु आपका नाम तो याद है हमें। तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले लेते हैं। कुछ इस कद्र जिंदगी पे यादों की इनायत हुई, हर लम्हा मेरी

आंखों से बरसात हुई और इश्क इबादत थी मेरे लिए, कोई खेल नहीं थी। शायद यूं ही हर कदम पे मुझे मात हुई। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से। तो भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो मैंने पहले कहा ना, उसको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ना कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, आपकी याद आती रही मैं आपको प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज़ है। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली शुक्रिया धन्यवाद लिखते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन किंतु परंतु आप ही बताइए, अगर मैं आपके मैसेजेस लेती रहूँगी तो हमारा प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो हमारे बहुत से लिसनर्स हैं जो हर बार कहते हैं कि आप के साथ बहुत से लिसनर्स नए जुड़ते हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप पर जो भेजने वाला नंबर है वो क्यों नहीं शेयर करती हैं। तो चलिए बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं। आपकी बातें सराखों पर 9868107070 पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। एक बार फिर मैं ये नंबर बोल देती हूँ, 9868107070। तो चलिए एक और प्यारा सा सॉन्ग सुनने की तलब हुई है, तो ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और आवाज़, इस आवाज़ के तो मेरे साथ साथ बहुत से दीवाने हैं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों ज़िंदगी में ऐसा ऐसा दौर आ जाता है कि हमें कभी कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी का साथ चाहिए होता है, और जो हमारे सबसे करीब होता है बस हम ये बात उसी से कह सकते हैं।

जी दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ये बात हमसे कहता है और इसके बदले में हम जवाब भी वैसा ही देते हैं। तो चलिए, दिल की बातें, दिल के किस्से इतने इतने इतने होते हैं कि शायद ये जो हमें वक्त मिला है ना, वो भी कम पड़ जाए।

0: फिलहाल एक और मैसेज लेती हूँ। शुभ संध्या तेजपाल प्रजापति, यमुना नगर से लिखते हैं, और दोस्त कस्बा गुन्नौर यूपी से इन्होंने लिखा है कि आप हमारा नाम भूल गई, तो ऐसे कैसे कैसे हो सकता है कि मैं आपका नाम भूल जाऊँ। फारूक अली खान जी, आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन किंतु परंतु मुझे याद है आपका नाम। एक और मेरे पास मैसेज आया है, मेरा सॉन्ग ये इन्होंने कहा कि ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, आपको कैसे पता चला। तो भाई दिल के रिश्ते जो होते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी ना बनते हैं। और आप जानते ही हैं कि हर बार हम कहते हैं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल दिल से दिल तक, तो दिल से दिल तक के रिश्ते ना इतने मजबूत होते हैं कि दिल की बात दिल तक पहुँच ही जाती है। इकबाल का भी आया है मैसेज, वो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ थोड़ी आंधी आई थी और लाइट चली गई थी तो दोस्त ये बताइए लाइट अभी आई या नहीं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चंडीगढ़ से इंजॉय कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम, ग्रेट फन ऑफ योर शो एंड आरसीबी, होपफुली आरसीबी आरसीजी है मेरा नाम, विल विन द मैच टुडे एंड आल्सो द टूर्नामेंट दिस ईयर। तो भाई आपको बहुत बहुत बहुत मुबारक। एक और मेरे पास मैसेज मास्टर राधेश्याम का, वो भी हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और लिखते हैं आप कैसी हो, तो मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ दोस्त, और जब भी आप लोग याद करते हैं तो देखिए ना खिंची चली आती हूँ और अपने प्रोग्राम को एक नया रूप देना चाहती हूँ, आपको खुशियाँ देना चाहती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। अब इस कोशिश में कितनी कामयाब होती हूँ ये तो वक्त बताएगा। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन वो भी हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई अपना नाम तो लिखिए। मैडम मेरा नंबर है और मेरा नाम है भगवान दास भाटी, कोई सॉल्यूशन करो। भाई सॉल्यूशन किस बात का सॉल्यूशन, आपको कौन सी बात सता रही है, आपने आगे कुछ भी नहीं लिखा है। एक और मैसेज है देखिए अब आगे मैसेज लेने से पहले ना मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से मैसेजेस ऐसे हैं जिन्हें देख देख कर ना मुझे बहुत बहुत हंसी आ रही है। तो चलिए आपको याद दिला दूँ, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, और इस सफर में मैं हूँ आपके साथ आपकी वही पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। फिलहाल लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ आपके पास, बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: तो चलिए फिलहाल मैंने अपनी हंसी पर कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और एक और मैं मैसेज पढ़ने वाली हूँ। मेरा सॉन्ग आपने जो चलाया वो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये लिखा है वृंदा वीरेंद्र ने। तो भाई जो आपने तोड़ तोड़ के शब्द लिखे हैं ना, तो उसको अगर एक सार आप लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल मेरी बात को दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आगे आप

कोशिश कीजिएगा कि एक ही लाइन में लिखें, तोड़ तोड़ कर शब्दों को ना लिखें और छोटा मैसेज लिखें। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं आरजे रेखा जी, मैं यहाँ सऊदी अरब में अपने देश की सरजमी से आवाज़ को सुन रहा हूँ, गीत पसंद आ रहे हैं। सऊदी अरब रियाद से फैजी फारूक, पापा फारूक अली खान भी लिखा है उन्होंने, और मोहम्मद सईद अब्बासी जी को भी अपना मैसेज उन्होंने भेजा है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है आपने, तो बिल्कुल पढ़ूंगी दोस्त, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि किसी ने सही कहा है कि सभी नगमे साज में गाए नहीं जाते, सभी नगमे साज में गाए नहीं जाते, सभी लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कुछ पास रहकर भी दिल के करीब आते हैं तो कुछ दूर रहकर भी भुलाए नहीं जाते। जी हाँ, ये तो सही बात है कि अगर कोई पास आता है और आपके पास रहता है या आपसे कितनी भी बातें करता है, वो आपके दिल के करीब आ जाए ये ज़रूरी नहीं, और कई बार कोई कितना भी आपसे दूर हो, वो आपके दिल में हमेशा रहता है। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनवाने वाली हूँ आप को, क्योंकि कभी कभी ना जब हम अपने ये यादों का पिटारे को खोलते हैं या यादों के पन्नों को पलटते हैं, तो बहुत बहुत बहुत प्यारी यादें भी हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं, और जब ये यादें आती हैं ना आंखों के सामने, तो बस ऐसा लगता है हम उसी वक्त में उसी टाइम में पहुंच गए हैं। ये भूल जाते हैं कि अभी फिलहाल हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं।

बिल्कुल दोस्तों, जब इस तरीके के दिल पर दस्तक देते गीत हम सुनते हैं तो बहुत से चेहरे हमारी आंखों के आगे आने लगते हैं, और वो चेहरे कई बार हमारे पास होते हैं और कई बार कोसों दूर होते हैं। लेकिन किंतु परंतु यादों के पन्ने यूं ही पलटे जाते हैं और ऐसे ही याद की जाती हैं यादें। जी हाँ, वही भूली बिसरी यादें जिन पर हल्की सी धुंधली सी, जी हाँ, यादों की परत पे परत चढ़ जाती है और वो खूबसूरत यादें नई यादों के नीचे दब जाती हैं। उन्हीं को उभारने के लिए मैं आती हूँ स्टूडियो में आप सबको ये प्रोग्राम सुनवाने के लिए। एक मेरे पास मैसेज आया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, आरजे रेखा जी, वेलकम जी, आप जी कैसे हैं जी, आरजे जी रेखा जी कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं जब आपकी मधुर आवाज सुनी जाती है जी, आपकी बातचीत बहुत ही प्यारी और मधुर होती है जी, तो थैंक यू सो मच। लेकिन देखिए इतना जी जी ना मत लिखा करिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, आरसी आरसी आरसी, गुड इवनिंग जी, अजय ठाकुर का आया है, ये आया है फेस 5 से, मोहाली से लिखते हैं, मोहाली यानी आप लिख रहे हैं पंजाब से, तो उनको भी ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है और वो हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। हेलो मैम, आपकी वॉइस और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्लीज़ रीड माय मैसेज। तो बिल्कुल पढ़ रही हूँ, और वो अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहे हैं। ये लिखा है रणवीर फ्रॉम कौंडली से, तो रणवीर आपका मैसेज मैं रीड कर चुकी हूँ। एक और मेरे पास मैसेज आया है, देखिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप मैसेज को लिखें ना तो कम शब्दों में भी अपनी बहुत सी बातों को कहा जा सकता है, तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि कम शब्दों में अपने दिल का हाल, अपनी बात या फिर अपनी यादों को साझा कर सकें। ये लिखा है जहीद अहमद ने, मुजफ्फरनगर से आपकी याद आती रही, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज के सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं और आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है जी, कैसे ये तो गॉड गिफ्टेड है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही कार्यक्रम में शानदार आपका स्वागत और शानदार चल रहा है आपका प्रोग्राम, गीत संगीत बेहद पसंद आ रहा है, नाइस प्रेजेंटेशन। किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं। एक और मेरे पास मैसेज है, अब इतने सारे मैसेजेस आए हैं, पहले ही कह देती हूँ कि अगर मैं किसी का मैसेज नहीं ले पाती हूँ तो प्रोग्राम जो अगला है 11:05 पर, उसमें आप सभी के जो मैसेजेस हैं वो लिए जाएंगे। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग याद आ रहा है और ये भी खास देती है दिल पर

तस्तक आवाज। और ये आवाज भी ना जिस आवाज के साथ मिलकर, जी हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये जब बनता है तो वाकई अपने आप में और भी शानदार हो जाता है। कहते हैं ना कि कभी कभी अकेले चलें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन साथ में कोई साथ देने वाला हो तो बहुत बहुत बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा

0: जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे पास मैसेज आया है मौसम के लिए, उन्होंने लिखा है, शुभ स्वागत, धन्यवाद आरजे रेखा जी, मौसम ने फिर तेरी यादों का सफ़र छेड़ दिया, हल्की सी बारिश ने दिल को भी भिगो दिया। ये लिखा है सरफराज आलम ने अररिया बिहार से। एक और मेरे पास मैसेज, नमस्ते मैम, आपकी आवाज़ बहुत ही बढ़िया है, दिल्ली में तो बढ़िया बारिश हो रही है लेकिन हमारे यहाँ पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। तो ये लिखा है हरिओम शर्मा जी ने। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। भाई इतने से काम नहीं चलेगा, ये छोटा मैसेज करने के लिए कहा था, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए। एक और मैसेज मेरे पास, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं कि रेस्पेक्टेड आरसी जी, वेरी हैप्पी हेल्थ दी वेडनेसडे, गुड इवनिंग, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम बहुत ही एक्सीलेंट प्रोग्राम लगता है हमें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और मेरे पास मैसेज आया है, रेखा मैम आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़िए। तो चलिए आपका मैसेज पढ़ लेते हैं। वो लिखते हैं गुड़गांव से, जी हाँ यानी गुरुग्राम से लिखते हैं, कुछ ज़िंदगी में ऐसे पल भी होते हैं जिन्हें भुला पाना बहुत ही मुश्किल होता है, हर बार आंखों के आगे आ जाते हैं, बट ज़िंदगी से कोई नाराज़गी नहीं होती। तो और उन्होंने एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में एक सॉन्ग की भी फरमाइश कर दी है। तो दोस्त आप तो जानते ही हैं ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जो आप सॉन्ग सुनने वाले हैं ना, या सुनना चाहते हैं जो सॉन्ग आपने जिसकी फरमाइश की है, वो तो मैं वैसे भी आपको सुनवाने वाली नहीं थी। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आपको और ज़्यादा उन बेरुखी जो यादें हैं ना, उनमें और उलझाना नहीं चाहती हूँ। तो भाई जो आपको परेशान कर रही हैं यादें, उनसे बाहर निकलिए, बाहर आइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कभी गम तो कभी खुशी। जी हाँ, अब कौन सा पहलू आपके साथ आपके पास पहले आता है, वो ना तो आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। सोनम अरोरा लिखती हैं और साथ में राधे, माफ़ कीजिएगा, राधा शर्मा भी लिखती हैं, बेंगलोर से प्रोग्राम सुन रही हैं ऐप के ज़रिए हमारा, और वो लिखती हैं लाजवाब चल रहा है आपका प्रोग्राम, मज़ा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। जब दूर दूर से हमें इतनी प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं ना, तो दिल को बहुत बहुत बहुत खुशी होती है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, जी हाँ ये इंदौर से आया है, हर्ष भिंगवानी का, और माफ़ कीजिए, हर्ष मंगवानी का आया है मेरे पास मैसेज, और वो भी हमारा प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं। एक और मेरे पास मैसेज, हाय मैम, रितु बत्रा दिल्ली के गोपाल पार्क से हूँ, आप का प्रोग्राम सुन रही हूँ, मूड अच्छा हो जाता है आपका प्रोग्राम सुनकर। तो थैंक यू सो मच, आपका मूड तो अच्छा ही हो गया है, और क्या कहूँ, इसीलिए तो आती हूँ मैं यहाँ कि आप सबका मूड और भी अच्छा हो सके। कभी कभी ठीक है, ज़िंदगी है, दिन भर की थकान जो होती है ना, वो आपको और भी थका देती है, और कुछ ऐसी यादें आपके सामने आ जाती हैं जिन्हें आप याद करना ही नहीं चाहते। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी उन यादों के पन्नों को तो बिल्कुल मत पलटिए, या कोशिश भी कीजिए उन्हें पढ़ने की, जो आपको इस तरह से परेशान करें। तो चलिए एक और मैसेज ले लेती हूँ, लेकिन ये मैसेज कैसे पढ़ूँ, इन्होंने ना तो अपना नाम लिखा है, ना ही ये लिखा है कि इन्होंने ये मैसेज कहाँ से किया है। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास, और आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं

0: FM Rainbow.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: या दोस्तों, मैं यही कहना चाहती थी आप सभी से कि अगर मैं किसी का मैसेज नहीं ले पाई हूँ तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब ना मुझसे नाराज़ नहीं होते, है ना। चलिए एक और खूबसूरत सा सॉन्ग मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। उससे पहले बोल देती हूँ कि ठीक 11:05 पर हमारी मुलाकात होगी रंगे महफिल प्रोग्राम में। आप भी वहीं रहेंगे, मैं भी वहीं रहूँगी और बस प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज होगा और प्रोग्राम का नाम चेंज होगा और दिल पर देते दस्तक गीत और गज़लों का खूब खूब खूब जी हाँ आप मज़ा ले पाएंगे। और एक मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने लिखा कि आप 11 बजे जब आती हैं रंगे महफिल में तो सॉन्ग्स कौन से चलाती हैं। तो भाई अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये गज़लों और गीतों का प्रोग्राम है। फिलहाल ये प्यारा सा सॉन्ग सुनिए।

और इसी गीत के साथ आपकी दोस्त लेती है फिलहाल आपसे इजाजत, और अब मुलाकात होगी ठीक 11:05 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000

रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोरेला सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोरेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश के रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मिले। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: Hey friends, with this is time for me to take a short break. I'll be right back. You stay tuned to Akashvani Rainbow.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी

दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, वादे के मुताबिक हाजिर है आपकी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रंगे महफिल। आज फिर कोशिश होगी गीत और गजलों के जरिए आपकी नींदें उड़ाने की, दिल की धड़कनें बढ़ाने की, भीड़ में तन्हाई और तन्हाई में भी खुशी का एहसास जगाने की। और ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा और बताएंगे आप।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया है सौरभ अनेजा का। वो हमें लिखते हैं वेलकम बैक दोस्तों, थैंक यू सो मच सौरभ। एक और मैसेज मेरे पास देव का दिल्ली से आया है। वो लिखते हैं, हाय रेखा, गुड इवनिंग, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। एक और मेरे पास मैसेज है राजकुमार जी का, वो भी हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं। एक और मैसेज है मेरे पास, उन्होंने सिर्फ गुड इवनिंग लिखा है, तो दोस्त ये तो बात अच्छी नहीं है ना। तो चलिए अपने मैसेज को आप पूरा कीजिए और मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों अगर कहूँ दिल की बात, तो यही कहूँगी कि रात का वो पहर शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, रात का वो पहर शुरू हो चुका है जब रात धीमे धीमे जवान होती जाएगी। अंधियारा तो मानो किसी हसीना की जुल्फों की तरह घना होता नजर आएगा। चारों ओर खामोशियों के मेले मानो रात के सन्नाटे को बयां कर रहे होंगे। और ऐसे में गीत संगीत का साथ होना मानो सोने पे सुहागा होगा, है ना।

जी दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है। वो आया है पंकज जी का, अमरावती महाराष्ट्र से। शुभ रात्रि आरजे रेखा मैडम जी, कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। उन्हें ये गीत जो इससे पहले सुनाया, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, उन्होंने फिल्म का नाम भी लिखा है। दोस्त, अगर आपने गूगल देव का सहारा नहीं लिया है और खुद ब खुद पहचान लिया है फिल्म का नाम और गायक आपने बिल्कुल सही लिखे हैं, पंकज उदास जी की आवाज़ थी, तो अगर अपने आप से पहचाना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गूगल देव का सहारा लिया है तो क्या कह सकती हूँ, ठीक है, आपकी दोस्त हूँ, कुछ और तो नहीं कहूँगी। बस ये कहूँगी कि जितने भी संगीत प्रेमी होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि वो गायक की आवाज़ पहचान लेते हैं लेकिन फिल्म या एल्बम का नाम नहीं पहचान पाते हैं, या गज़ल किस फिल्म से ली गई है ये नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, जी हाँ, आपके भी ज़रूर आता होगा। मेरे ख्याल में ये ख्याल बहुत अच्छा है कि चलो आज फिर साथ साथ चलते हैं, चलो आज फिर साथ साथ चलते हैं, अपने जज्बातों की भी बारात लिए चलते हैं, कुछ तुम कहना अपने दिल की, कुछ मैं भी कहूँगी अपने मन की, क्योंकि क्योंकि अरसा हुआ अरमानों को शक्ल नहीं दी शब्दों की, आज कह ही देना लफ्जों के जरिए तुम भी अपने दिल की। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी दोस्तों, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, आरजे मैडम जी, गायक मनहर उधास जी का जन्मदिन है। पंकज उधास

0: जी के बड़े भाई का। जी हाँ, और आगे लिखा है उन्होंने, चलो चलो आज साथ साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ लिखी हैं आपने, थैंक यू सो मच। और कभी यादों में आऊँ, कभी ख्वाबों में आऊँ, गीतकार का नाम भी बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, अभिजीत भट्टाचार्य। और पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि आज मनहर उदास जी का जन्म दिन है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पंकज जी से तो मैं कभी मिल नहीं पाई, उनसे मिलने का सौभाग्य कभी भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मनहर जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो इंसान कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ के रहते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। और मनहर जी भी इसी तरीके के इंसान हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही पोलाइटली बोलने वाले इंसान हैं। मुझे 2 बार मिलने का उनसे मौका मिला और वाकई मुझे मिलकर बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा उनसे। एक और मेरे पास मैसेज आया है, जी हाँ, ये राजकुमार जी ने ही लिखा है कि उन्हें ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आ रहा है, और साथ में लिखा है वाह। एक और मैसेज मेरे पास, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से, उन्होंने लिखा है कि ये प्रोग्राम भी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और प्रस्तुतिकरण और भी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, तो थैंक यू सो मच। और ये लिखा है उन्होंने, कहाँ से लिखा है ये बता देती हूँ आपको, शांतिनगर सोनीपत से तो लिखा ही है, साथ में उन्होंने जो लास्ट में शब्द लिखा है ना, वो लिखा है कोटि कोटि धन्यवाद। तो भाई आपको भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उनको भी मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और उन्होंने एक गाने की फरमाइश कर डाली है। तो दोस्त, आप जानते ही हैं कि फिलहाल ये जो प्रोग्राम है वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि कानों के ज़रिए दिल में दस्तक दे सकूँ, अपनी गज़लों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए। तो चलिए एक और सॉन्ग सुनवाने वाली हूँ आपको, लेकिन किंतु परंतु सोच रही हूँ ये कि एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, क्या कहते हैं आप? तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी दोस्तों, वैसे तो मैं हर बार आपको बता देती हूँ कि क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें मिलती हैं, तो हमारे एक दोस्त हैं जो हमें मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। तो दोस्त, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है, और आपको ये बात बता दूं कि जब आप कॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें ये तो पता चलता है कि आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम उसका रिस्पांस नहीं दे सकते, और ये रिस्पांस देना हमारा काम भी नहीं है। और रही बात आपके कॉल लगने ना लगने की, तो समझ में आता है कि आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपकी कॉल को हम में से कोई भी, जी हाँ, सुन नहीं सकता। और वैसे भी कॉल तो जो कॉलिंग हमारा प्रोग्राम होता है, कॉल इन प्रोग्राम अलग होता है, दिन में होता है, तो जब भी फ़ोन इन प्रोग्राम हो तो उसमें आप बात कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि मैसेज करें, छोटा करें और प्यारा सा मैसेज करें, बहुत प्यारा सा करें, लेकिन कॉल बिल्कुल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉल लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम में सारी चीज़ें फीड होती हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। आरजे आरसी जी, गुड इवनिंग, नाइस सॉन्ग्स। जयंत लिखते हैं पटना से, नाइस शो, शुक्रिया। ये लिखा है प्रदीप जी ने मुंबई से, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, तो दोस्त इतना छोटा मैसेज भी नहीं करना है कि अपना नाम ही ना लिखें। एक और मेरे पास मैसेज है, इसको मैं पढ़ूंगी ज़रूर, लेकिन किंतु परंतु एक और प्यारे से सॉन्ग के बाद। और पता है आपको दोस्तों, जो ये आवाज़ मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना, ये सच में बहुत प्यारी आवाज़ है, और इनके जो भी सॉन्ग्स हैं, जो भी इनकी आवाज़ में सॉन्ग्स हैं, सभी दिल पर ख़ास दस्तक देते हैं। और क्या कहूँ, यही कहूँगी कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है, दिल की वादियों में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियाँ महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आदि सोई आदि जगी सी लगने लगी हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्यारी प्यारी बरसात में, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो ना, तो फिर इस तरह का गीत संगीत दिल को ज़्यादा भाता है।

जी हाँ दोस्तों, कहने को हर इंसान के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी हर इंसान यही चाहता है कि शब्दों पर आज लगाम लगा दी जाए, आज शब्दों को ना बोला जाए, सिर्फ और सिर्फ किसी को अपना चेहरा पढ़वाया जाए और दूसरे का चेहरा पढ़ा जाए। लेकिन इसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम है। वो ये कि अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान चेहरा और आंखें पढ़ना जानता है। ज़रूरी नहीं जिस तरह से आप किसी की आंखों को पढ़कर उसके दिल का अंदाज़ा लगा लेते हैं, दिल की बात जान लेते हैं, वो इंसान भी जो आपके सामने है या आप उसके सामने हैं, वो भी इसी तरह की टेलीपैथी जानता हो कि किसी का चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया जाए कि वो क्या कहना चाहता है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सच सच बात प्यार मोहब्बत और शिकवे शिकायतों की चले तो एक घंटा तो क्या पूरी रात भी कम पड़ जाए। टिक टिक करती घड़ी कुछ जताने की कोशिश कर रही है, कुछ तो इशारा कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। तो जनाब, जब चेहरा पढ़कर हम दिल की बात जान लेते हैं तो फिर टिक टिक करती घड़ी तो बिल्कुल हमारे सामने है और साफ साफ बहुत कुछ कह रही है। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ एक और सॉन्ग। सच में ये सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, दिल पर दस्तक ज़रूर देगा, ये मेरा वादा है आपसे।

जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो अगला मैसेज आया है वो आया है इंदौर से। ये इंदौर से जो मैसेज आया वो वरुण का है। और वरुण जी, शायद आपने मेरा पहला प्रोग्राम नहीं सुना है, आप थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा क्या लगता है, बहुत लेट हो गए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली में बारिश हो चुकी है और फिलहाल हल्की फुल्की बूंदे तो चल भी रही हैं। तो उनका कहना था कि ये बीच में मौसम का गाना कहाँ से आ गया। तो भाई देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंस्टेंट हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ देखना पड़ता है। एक और मैसेज मेरे पास आया है। ये मैसेज देखकर पढ़कर मैं बहुत बहुत बहुत खुश हूँ। चलिए, आपका पैचअप तो हुआ। तुम्पा आगे लिखती हैं, नमस्कार रेखा मैम, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, सॉन्ग्स आर वेरी गुड, प्लीज़ पास ऑन माई मैसेज टू आकाश, प्लीज़ टेक रेस्ट फूड। इन्होंने ये पहले लिखा था और अभी जो लिखा है उसे पढ़कर भी मज़ा आ गया। यो मैम फॉर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल प्रोग्राम, प्लीज़ पास ऑन माई मैसेज। तो आगे उन्होंने ये भी लिख दिया है कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल लीजिए। और उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है मुझे, और सबसे बड़ी बात उनका पैचअप हो गया है। तो चलिए, ये तो सबसे सबसे सबसे खुशी की बात है, भले ही वो पैचअप मेरी वजह से हुआ हो या किसी और वजह से। एक और मेरे पास मैसेज आया है ऋतु का। वो लिखती हैं, गोपाल पार्क में रहती हूँ और आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा है, और आते रहिए, आपके चलाए हुए गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं, लवली सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो उन्होंने पंकज जी के बारे में ही लिखा है। जी हाँ, तो जानती हूँ कि पंकज जी की आवाज़ भी ना एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन आवाज़ रही। हाँ, इस बात का गम ज़रूर है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं वो हमारे बीच

कुछ हो ना हो, उनकी आवाज़ें, उनकी यादें हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। तो चाहे वो गीतों के ज़रिए हो, चिट्ठियों के ज़रिए हो, या फिर फिल्मों के ज़रिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: चलते चलते एक और मैसेज ले लेते हैं। प्रकाश तिर सूनिया का, भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से, वो लिखते हैं कि बारिश का गाना सुनकर बारिश का एहसास होने लगा। कब होगी बारिश, हमें इंतजार है। अगली बारिश में गुलमोहर और पीपल के पेड़ भी लगाएंगे और सुनने वाले सभी सुन ले, वो भी तैयार हो जाएं। तो बिल्कुल, पेड़ तो हमें लगाने ही चाहिए दोस्तों। और हाँ, जहाँ तक बारिश का सवाल है तो आप जानते ही हैं जी हाँ, दिल्ली में बारिश हो चुकी है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ भी बारिश हो जाए, तो चलिए आपको भी राहत मिलेगी गर्मी से। फिलहाल अपने दोस्त RJ RC को दीजिए इजाज़त, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। और कोशिश रहेगी, आप जानते ही हैं मैं वादा नहीं करती, क्योंकि वादे अक्सर टूटकर बिखर जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं। तो चलिए, अगले बुधवार यानी कि वेडनेसडे को फिर मुलाकात ज़रूर होगी। इसी वादे के साथ दीजिए इजाजत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहमा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये मिशन कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कल ये मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसी ना किसी के साथ अगर आपका एक बेजोड़ सा जो जोड़ है ना वो अगर मिल जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जीवन साथी या जीवन संगिनी के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसा है कहीं भी आप खेल में देखें, आप सियासत में देखें, आप नौकरी में, शिक्षा में, कहीं भी आपको अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो कई बार आपकी खुद की जो मुश्किलें होती हैं अंदरूनी वो आसान हो जाती हैं, थोड़ी सी सहज हो जाती हैं। देखिए कुल मिलाकर तो हमें अपने आप ही अपने सामने आई मुसीबतों से जूझना होता है, लेकिन जो एक अच्छी दोस्ती होती है ना, एक अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग्स का जो ताना बाना, आपसी समझ का जो लेखा जोखा हम इसके इर्द गिर्द बुनते हैं, वो बहुत से मुश्किलों को सरल कर देता है और उनसे लड़ने में, उनका सामना करने में कमोबेश कुछ ना कुछ कमी आती है, आसानी होती है बल्कि कहना ये चाहिए, और लड़ाई आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, उससे जीतने के कई रास्ते सुगम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि चिंताओं का साथ छोड़ें और चिंतन का साथ पकड़ें। वैसे भी ये जो वक्त है ना, जो हो चला है अब 12:16 करीब करीब मध्य रात्रि के, इस वक्त हमने देखा है कि कई लोग चिंतन और मनन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिंतन के ज़रिए, मनन के ज़रिए अपनी समस्याओं के हल खोजने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है हम यानी आकाशवाणी रेनबो 102.6 जो हर घड़ी, हर पगडंडी, हर सड़क पर आपके साथ है, हर मोड़ पर आपके साथ है और कहीं ना कहीं आपको लिए चलते हैं हर उस खूबसूरत दौर में जो कभी ना कभी आज समेत हमारी ज़िंदगी का, हमारे किसी ना किसी पड़ाव का कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं, उसका साझेदारी किए हैं, उन्होंने उसके साझे रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों को अपना मित्र बनाएं, फिर देखें कैसे कैसे मुसीबतें आप पर हावी होना कम कर देंगी या फिर बंद ही कर देंगी। हमारा जो साथ मिला हुआ है आपको आकाशवाणी रेनबो का, वो खूबसूरत दौर में आपको ले जाने का होता है। इस वक्त मेरी कोशिश यही रहती है कि उन हसीन गानों को आप तक पहुंचाऊं जिन्हें सुनकर कभी हम अपना मन हल्का किया करते थे। तो आप आ जाइए इस मुहिम में हमारे साथ, हो जाइए हमारे साथ शुमार इस अभियान में जिसे हम कहते हैं जीरो आवर शो। और जीरो आवर शो लेकर मैं हाजिर हूँ रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम हाजिर हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक भाई, तो आप जल्द ही कर डालें न्यूज़ ऑन एयर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। मैं हूँ रजत, आप सभी का स्वागत इस खूबसूरत महफिल में जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं जीरो आवर शो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक।

0: सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। CBI ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए

ये भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है आधी रात के 1:06 और बॉलीवुड के नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक आप सुनेंगे इस पूरे घंटे सुहानी रात शो में। तो शुरुआत करते हैं अंकित तिवारी की आवाज में द एक्सपोज मूवी के इस गाने के साथ। तो ऐसे ही नॉनस्टॉप गाने सुनते रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान दिल

0: फ्रेश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुहानी रात शो का अब ये लास्ट गाना और आधी रात के 2 बजे फिर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन बैक टू बैक म्यूजिक इसी तरह से जारी रहेगा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल।
1: जब नजरें मिली बेवजह पहली बार, जब इत्तेफाक से मुलाकात हुई अगली बार, तो ढूंढने लगा बहाने मिलने को।

तेरी मुस्कान से रोशन हुई मेरी डगर, जब तेज हुई तुम्हारी सांसें और तेरे नैनों में था डर, तो संभाला था मैंने खुद को मगर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार

0: 2:10 रात के, और आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ। इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से आकाशवाणी से एफएम रेनबो से जुड़ने के लिए। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत खूबसूरत पहर है, बदली छाई है, कहीं कहीं बूंदा बांदी हुई है, ओले भी गिरे हैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, लेकिन अलग अलग हिस्सों में ऐसा हुआ है। सब जगह एक जैसा मौसम नहीं है, लेकिन मौसम है बड़ा खुशगवार। जिस तरह से गर्मी अपने जलवे पर है, वहीं कुदरत झमाझम भी कर देती है और आपको बता देती है कि देखिए तपती दोपहर के बाद सर्द शाम भी आती है। और इस मामले में अगर हम कहीं भी किसी भी तरह से उम्मीद ज़्यादा नहीं हो पाते, कहीं कहीं हमें लगता है कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं भी होता है, तो एक बार हमें बादलों की तरफ, आसमान की तरफ देख लेना चाहिए, जहाँ रात के अंधेरे से भी सफ़ेद बदलियाँ काली घटा के पंख ओढ़े कहीं ना कहीं उस आसमान के किसी ना किसी कोने से झांक रही होती हैं और हमें बता रही होती हैं कि भाई धूप के बाद अंधेरा, सर्द अंधेरा भी है, सर्द शाम भी है। तो चलते रहें, चलते हुए ये परवाह ना करें कि ज़मीन में कितनी तपिश है, फर्श से हमारे पांव चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि एक ना एक घंटे बाद, दो घंटे बाद कभी ना कभी शाम आती ही है और ठहरने का मौका देती है, सोचकर विचारने का अवसर देती है और एक ठंडक जो साथ लाती है ना, वो उसमें विचारशीलता की महक भी होती है। तो अपने आप को उम्मीद ज़्यादा रखिए, गिरने मत दीजिए, उठाए रखिए, आपका परचम एक ना एक दिन ज़रूर लहराएगा। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं रजत आपके साथ, और प्रोग्राम है भुलाए ना बने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत तहे दिल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आधी रात के 3:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड के हिट गाने। तो शुरुआत करते हैं अभय जोधपुर की आवाज में फ्रॉम द मूवी जीरो से इस गाने के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर।

0: दो बजे रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात नहीं, अब तो सुबह है और करीब करीब वो वक्त आने को है 30-40 मिनट के बाद, जब सूरज की पहली किरण प्रकाशमान करने के लिए बस कूद पड़ेगी धरती की तरफ और एक नए दिन, एक नई उम्मीद, नई सुबह की होगी शुरुआत। फिलहाल जो ये कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, ये भी उम्मीदों से भरा कार्यक्रम है। उमंगों तरंगों को लिए एक छटाओं को आमंत्रित करता कार्यक्रम है, जिसे हम बरसों से सारेगामा कहते आए हैं। जी हाँ, सारेगामा नई सुबह की, नए दिन की वो शुरुआत है

0: जिसे हिंदी फिल्मों के खूबसूरत एक और खूबसूरत और अजीम दौर के संकलन से हम शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं एक नई सुबह को एक नई खूबसूरती देने की, उसे नई नज़ाकत और नफासत देने की, एक नया शफाक देने की। और इसी शफाकत को हम कहते हैं सारेगामा। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने किया हुआ ट्यून इन, जिस पर आप जुड़े हैं मेरे साथ। और प्रोग्राम का नाम एक बार फिर बता दूँ, है सारे गामा। मिले जुले गीतों को लेकर हम हाजिर होते हैं हर सुबह इस कार्यक्रम में। फिलहाल मैं हूँ रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 102.6। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप NEWSONAIR ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं अगर अभी भी नहीं की है तो। इस ऐप के जरिए आप निर्बाध कहीं से भी कभी भी सुन सकते हैं आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के प्रोग्राम, ट्यून इन करके सर्च करके। फिलहाल चल रहा है, जारी है सारेगामा और मैं कर रहा हूं आपको सुप्रभात के साथ आमंत्रित इस प्रोग्राम में। स्वागत आप सभी का।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
11: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज ढोलेरा सेमी हाईस्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को

नाशिक से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार इस महीने की 26 तारीख को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे कल अबुधाबी पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कल से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसकी पुष्टि आज उनके कार्यालय ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि इस बैठक से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़े किसी विशेष विवरण का खुलासा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिंग टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शूल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप नॉनस्टॉप भजनों का आनंद ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत भजन के साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।